मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के बैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 46 सेकंड सो रहे हैं। आरंभ होती है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि चुपके से विदा ले चुकी है और प्रातः अपनी हथेली में रोशनी का जादू लिए धरती पर आ रहा है। फलक तक गुलाबी सुनहरी प्रभात बेला ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे आसमान खामोशी में कोई संगीत गुनगुना रहा हो। सूर्य की नई किरणों संग नई ऊर्जा लिए हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारे श्रोता जो अपना रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया की खबरों को जानने का, क्योंकि कुछ ही पलों में बजने वाले हैं प्रातः के 6। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई, जो मौसम कोई भी हो, सर्दी गर्मी बरसात, हर वक्त प्रातः उठकर ही अपने कार्य क्षेत्र की ओर निकल पड़ते हैं और हमारे लिए उगाते हैं तरह तरह के अनाज जो होते हैं मौसम के अनुकूल। तो आज की कृषि चर्चा में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी किसान भाइयों के लिए जानकारी लेकर आए हैं भूमि शोधन के जैविक उपाय। तो आइए सुनते हैं भूमि शोधन के जैविक उपाय विषय पर जानकारी डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से।
1: शुभ प्रभात। जैविक नियंत्रण या जैविक विधि से शोधन करना, चाहे बीज की बात हो या फिर जमीन की, ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैव कारकों का प्रयोग भूमि और बीज उपचार के लिए होता है। ये पहले भी होता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। अब वैज्ञानिकों द्वारा दी

0: की सलाह या उत्पादित किए गए रसायनों के आधार पर या जैविक विधि के द्वारा किया जाता है। पौधशाला में जैविक विधि की बात अगर करें तो ट्राइकोडर्मा की विभिन्न तरह की प्रजातियां अब आ गई हैं। इसमें एस्परजिलस नाइजर को बीज शोधन एवं भूमि में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके प्रयोग में बहुत सावधानियों की आवश्यकता भी रहती है। जैविक नियंत्रण का अच्छा उपयोग तभी संभव है जब खेत में सड़ी खाद या फिर हरी खाद मिलाई गई हो और साथ ही साथ उग्र मौसम से रक्षित किया गया हो। सर्वप्रथम जैव पदार्थ को उस मिट्टी या फिर क्षेत्र विशेष का होना चाहिए। पौधशाला में कंपोस्ट के साथ साथ अन्य कार्बनिक खाद की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए जिसमें जैव पदार्थ की अच्छी तरह से वृद्धि हो सके। जिस भी जैव नियंत्रक का प्रयोग करना है उसमें उसके जीवित विषाणु की पर्याप्त मात्रा भी होनी चाहिए। इसके प्रयोग करने के बाद कुछ दिन तक पौधशाला में तेज वर्षा एवं धूप से बचाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उस नर्सरी बेड में किसी भी रसायन का प्रयोग बिना तकनीकी जानकारी के नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ जैव नियंत्रक मिलाते समय पौधशाला की मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए यह सुनिश्चित कर लें। इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है। पौधशाला को अच्छी तरह तैयार करके उसमें तैयार जैव नियंत्रक पदार्थ 15 से 25 ग्राम प्रति मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। उसके एक दो दिन बाद बीज की बुआई कर सकते हैं। जैव नियंत्रक पदार्थ से बीज का शोधन भी किया जाता है। इसके लिए 6 से 10 ग्राम तैयार मिश्रित जैव पदार्थ प्रति किलो बीज की दर से इस तरह बीज में लपेटें कि पूरा उसकी सतह पर ही चिपक जाए। जैविक बीज उपचार बीज के ऊपर परत चढ़ाकर बीज को भिगोकर पौध को भिगोकर सूखे चूर्ण के साथ किया जा सकता है जो कि जैविक नियंत्रकों के स्वरूप पर निर्भर करता है। उस बीज को ठंडे में सुखाकर लगाएं। बीज को शुद्ध जैव पदार्थ से भी शोधित किया जाता है, लेकिन यह प्रयोगशाला में किसी तकनीकी विशेषज्ञ या फिर तकनीकी जानकार व्यक्ति से ही करवाना चाहिए। इस तरह से शोधित करने पर 10 से 12 जीवाणु प्रति मिलीलीटर घोल की आवश्यकता होती है। ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है 0.5% उसका अगर ले रहे हैं तो उससे बीज के उपचार के साथ 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के दर से पौधशाला की बीमारियों कुछ कीड़ों तथा सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए अच्छा है। जहरीले रसायनों की बजाय सब्जियों में वानस्पतिक तेलों एवं खनिज तेलों का कीट नियंत्रण के लिए उपयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। पौधशाला में ट्राइकोडर्मा की विभिन्न प्रजातियां सुडोमोनोस फ्लोरेसेंस और साथ ही साथ एस्परजिलस नाइजर का प्रयोग बीज शोधन एवं भूमि में प्रयोग किया जाता है, परंतु जैव पदार्थ के उपयोग करने पर कई सावधानियों की जरूरत पड़ती है। इसलिए जैव नियंत्रक मिलाते समय पौधशाला की मिट्टी में पर्याप्त नमी, जिसे हम ओट कहते हैं, वह होनी चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि मिट्टी गीली अवस्था में भी न रहे। जैविक विधि से भूमि शोधन करने पर पौधों की बढ़वार हो जाती है। बीज बुआई करने के बाद पौधशाला को अधिक तापक्रम, अधिक वर्षा और अन्य बाह्य प्रतिकूल प्रभावों से भी बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए आप उसे भी बचाएं। यह ध्यान रखें कि जैविक नियंत्रण की ये विधियां जो अब हम अपना रहे हैं उसमें हमारे जो अवशेष हैं फसलों के उसका भी बृहत्तर स्वरूप में प्रयोग किया जा सकता है मल्चिंग और अन्य विधियों के तहत। जो लोग केले की खेती कर रहे हैं उनके जो केले के तने होते हैं उनकी भी मल्चिंग उस खेत में कर देने से काफी कुछ लाभ बढ़ जाता है।
1: भूमि शोधन के जैविक उपाय, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। पवित्रता का प्रवाह और वीरों का आभूषण है क्षमा। क्षमा मांगने से कहते हैं अहंकार ढलता है और क्षमा करने से सुसंस्कार पलता है और आजीवन चलता है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
2: क्षमा का महत्व। भारतीय संस्कृति सर्व कल्याणकारिणी है। इसके द्वारा न केवल अपने अनुयायियों के लिए ही अपितु समस्त ब्रह्मांड के लिए विश्व पोषक मंगलकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। भारतीय संस्कृति की इस विशेषता का रहस्य हृदयंगम हो जाने पर उसकी समस्त विशेषताओं को समझने के लिए एक आधार प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को मानव विकास के

0: उच्चतम शिखर पर पहुंचकर जीवन मुक्त की अवस्था में प्रतिष्ठित करा देना भारतीय संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है। मानव जीवन को समुन्नत बनाने में क्षमा का विशेष महत्व है। हम नित्य प्रातःकाल बिस्तर से उठकर पृथ्वी माँ के ऊपर पांव रखते ही उससे क्षमा मांगते हुए कहते हैं, समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे। अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, अर्थात पृथ्वी मेरी माँ है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। यह पृथ्वी सभी रत्नों की खान है। आजकल स्वार्थी लोगों द्वारा इसका इतना दोहन किया जा रहा है जो मानव जीवन के लिए ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। क्षमा भारतीय संस्कृत की ऐसी संजीवनी है जिसकी शक्ति से मानव विकास के द्वार खुल जाते हैं। क्षमा ऐसा दैवी गुण है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक बार की बात है कि ऋषियों ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे अधिक विनम्र या क्षमाशील है इसकी परीक्षा करानी चाहिए। इस परीक्षा के परीक्षक के रूप में महर्षि भृगु से अनुरोध किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए महर्षि भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद वे भगवान शिव के पास गए और वहां से भी वापस आ गए। बाद में वे श्री विष्णु के पास पहुंचे। श्रीहरि उस समय शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर जोर से चरण प्रहार किया। भगवान विष्णु उठकर बैठ गए और महर्षि भृगु के पैर पकड़कर बोले, ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? इसी प्रसंग को कबीर रहीम ने अपने इस दोहे में इस प्रकार व्यक्त किया है, क्षमा वरण को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। सीता जी की खोज में लंका गए श्री हनुमान को मेघनाद रावण की सभा में उपस्थित करता है। रावण से वार्तालाप करते हुए श्री हनुमान कहते हैं कि भगवान श्री राम विशाल एवं संवेदनशील हृदय वाले हैं, तुम माँ सीता जी को प्रभु राम के हवाले कर दो, वे तुम्हारे सब अपराध भूलकर तुम्हें क्षमादान दे देंगे। किंतु रावण नहीं माना और जो परिणाम हुआ उससे आप लोग भलीभांति अवगत हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यस्य पार्श्वे क्षमा शस्त्रम वशगाः सर्वसिद्धयः, अर्थात जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है सभी सिद्धियां उसके वश में हो जाती हैं। क्षमा की भी एक सीमा होती है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को अनगिनत कष्ट दिए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका स्वयं जल गई किंतु प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। अंत में श्रीहरि स्तंभ से प्रकट होकर नृसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। जब भक्त पर विपत्ति आती है तब भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। वह श्री कृष्ण से वैमनस्य करता था। वह भगवान श्री कृष्ण को गाली देता था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करना चाहा। उनकी बुआ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बेटा तुम शिशुपाल का वध न करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मैं तुम्हारी बात मानकर वचन देता हूँ कि मैं शिशुपाल के 99 अपराध क्षमा कर दूंगा, किंतु 100वें अपराध पर उसका वध कर दूंगा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को लगातार गाली देता जा रहा था और श्री कृष्ण उनकी गाली को गिन रहे थे। जैसे ही 100वीं गाली पूरी हुई, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। भारतीय संस्कृत में अनेक उदाहरण हैं जो क्षमा की महत्ता को रेखांकित करते हैं।
1: क्षमा प्रेम का परिधान है और विश्वास का विधान है, सृजन का सम्मान है, नफरत का निदान है। सच ही कहा जाता है, क्षमा बराबर तप नहीं। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, विषय था क्षमा। वाचन स्वर डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रभु से पूर्ण समर्पण तक की यात्रा ही आराधना है। यही भक्ति की सच्ची परिभाषा है, जहां संगीत साधना बन जाता है और प्रभु के लिए हमारे जो शब्द हैं वो प्रार्थना।

माँ की गोद में ही सारा जग सुकून पाता है। ममता की छांव है माँ, दुआओं का गांव है माँ, जितना कहें उतना कम है, अनमोल वरदान है माँ। आइए माँ के दरबार में ज्योत जलाएं।

सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का दूसरा नाम है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी के स्मरण मात्र से ही समस्त संकट दूर हो जाते हैं।

मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 167 में प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीताजी निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग और त्रिवेणी के दर्शन तथा स्नान पूजन के पश्चात भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचने का प्रसंग।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषाद राज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए, वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र आप सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झाः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नव निर्मितस्य ध्यान मंदिरस्य ध्यान कक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां संबोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमंत्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृतमहोत्सवे

0: उत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिमबङ्गालस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिमबङ्गाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं सङ्घटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये 9 मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतनसर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ शतविधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्डवृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। श्रोताओं, समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। दिन भर थक कर भी जो परिवार की सेहत का ध्यान रखे, निस्वार्थ प्रेम का दूसरा नाम ही माँ है। माँ स्वस्थ रहे तो घर घर लगता है, है ना? और माँ की दुआओं में ही परिवार का स्वास्थ्य पलता है, ये तो सच है। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हैं। आइए सुन लेते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है। आज है मदर्स डे, वो दिन जब हम उस शख्स के लिए कुछ पल निकालते हैं जिसकी वजह से हम हैं, जो हमें बिना थके बिना शिकायत के जीवन भर देती जाती है। लेकिन आज का विषय केवल माँ को धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, यानी कि माँ का स्वास्थ्य। हमारे समाज में माँ को त्याग की मूरत माना जाता है। वो सबका ध्यान रखती है, पति का ध्यान, बच्चों का ध्यान, बुजुर्गों का ध्यान, पूरे घर परिवार का ध्यान। लेकिन इन सब के बीच वो अक्सर खुद को भूल जाती है, शायद इसलिए कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि एक अच्छी माँ वही है जो पहले दूसरों का सोचे। पर आज जब हम स्वस्थ जीवन की बात करते हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि माँ अगर स्वस्थ नहीं होगी तो परिवार भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकता। शरीर के स्तर पर देखें तो महिलाओं में हर उम्र पर स्वास्थ्य की अलग अलग चुनौतियां होती हैं। किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव, शादी और मां बनने के बाद शारीरिक तनाव और बाद में हड्डियों की

कमजोरी, थायराइड, मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याएं, ये सब बिना देखभाल के और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन माँ अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज करती है। एक हल्का बुखार भी हो तो कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। ये बस थोड़ी सी थकान ही अक्सर बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। माँ को पोषण युक्त भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित जाँच की जरूरत होती है, लेकिन वो अपने लिए समय ही नहीं निकालती। जबकि सही मायनों में माँ की देखभाल करना सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अब मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो माँ चाहे वो गृहिणी हो या कामकाजी, दिन भर भावनात्मक रूप से थकी रहती है। एक तरफ घर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ काम का तनाव, बच्चों की चिंता और कहीं ना कहीं अपने लिए गिल्ट कि अगर खुद पर ध्यान दे लिया तो कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं बन रही, और ये सोच उसे मानसिक रूप से थका देती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम उन्हें समझाएं कि स्वस्थ रहना स्वार्थ नहीं बल्कि कर्तव्य है। श्रोताओं, माँ को केवल अद्भुत, त्यागमयी और आदर्श कहकर पूजने से बेहतर है कि हम उन्हें मनुष्य समझें, जिन्हें पोषण, विश्राम, आत्मसम्मान और ध्यान उतना ही चाहिए जितना कि किसी और को। माँ की सेहत को लेकर हमारा छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है, जैसे कि रोज उन्हें समय पर भोजन देना, डॉक्टर से नियमित जांच के लिए ले जाना या सिर्फ ये पूछ लेना कि माँ आप कैसी हैं। ये बातें उनके दिल को राहत देती है और ये भावनात्मक स्वास्थ्य का भी एक बड़ा हिस्सा है। मातृत्व एक यात्रा है, प्रेम, संघर्ष और निरंतर देने की, लेकिन ये यात्रा तब और सुंदर होती है जब माँ खुद को भी उतना ही महत्व देती है जितना कि दूसरों को देती है। आज मदर्स डे पर आइए हम सब एक वादा करें कि हम माँ को सुपर वुमन नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखेंगे जो थक सकती है, जिन्हें प्यार चाहिए, जिनके लिए भी आराम जरूरी है। श्रोताओं, माँ की मुस्कान ही घर का सच्चा प्रकाश है और अगर वो मुस्कान थकी हुई हो तो हमें जाग जाना चाहिए, क्योंकि माँ की सेहत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक माँ से पूछिए, क्या आपने आज खाना समय पर खाया? क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? और हाँ, बस इतना कहिए, माँ आप हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, इसलिए अब आपका भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

मदर्स डे, ये विषय था आज की स्वास्थ्य चर्चा का और इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ और अब वक्त है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। आज रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से ओम अवस्थी की बातचीत। सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा खसूसी उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ के कमरुल साहब, सना खातून, एजाजुर रहमान और मंतशा खातून। मेजबानी की है शमशुल आरफीन ने। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 7:31 पर। प्रस्तुति होगी सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर की। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनना ना भूलें डॉक्टर प्रवीण कुमार का हास्य।

सदस्य काव्या पाठ। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विषय है कैसा हो हमारा आहार और कैसी हो हमारी थाली। विशेषज्ञ होंगी मृदुल विभा, वरिष्ठ डाइटिशियन KGMU लखनऊ। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। संस्कृत कार्यक्रम में दिन में 3:15 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर प्रेरणा माथुर की वार्ता रामायणे आयुर्वेदा। सुबह 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का राग गावती में वीणा वादन। बाल मंच कार्यक्रम में दोपहर 12:00 हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे सेफ्टी टिप्स, सड़क पर सुरक्षित चलने के नियम। इस विषय पर यातायात उपनिरीक्षक विकास सिंह से ममता उपाध्याय की बातचीत प्रसारित की जाएगी। इसके अलावा उभरते बाल सितारे क्रम में बच्चे सुनेंगे अमेया सिंह का सितार वादन और उनसे ममता उपाध्याय की बातचीत। आज इतवार है, मैं दिन में 1:15 पर सुनिएगा प्रतिभा त्रिपाठी की लिखी झलकी सफाई के कमाल। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर आप सुनेंगे मातृत्व एक अक्षत शक्ति। इस विषय पर रचना गोविल, अर्जुन अवार्डी सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण से डॉक्टर अलका चौधरी की बातचीत। भिंडी की फसल में कीट रोग प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर आशीष कुमार पांडे से की गई भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4:00 संकल्प कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, रक्त रोग विशेषज्ञ KGMU लखनऊ से की गई भेंट वार्ता। विषय होगा जानिए क्या है अदृश्य दिव्यांगता हीमोफीलिया। भेंट करता होंगे मनीष कुमार। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ कहूं कम कहूं ज्यादा। कहानीकार होंगे लायक राम मानव। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे मेंथा उत्पादन विषय पर हरक चंद वर्मा से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी लखनऊ से। इसके अलावा आप आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए। आप घर से निकले, आसमान साफ है, पेड़ झुके हुए हैं, खामोश हैं, पंछी चुप हैं, छाया ढूंढी नहीं मिली, पानी पिया वो भी गर्म। सुबह 8 बजे से ही सूरज ऐसे चमक रहा है जैसे आग के गोले धरती पर फेंक रहा हो। आपने भी महसूस किया होगा, आजकल दोपहर होते होते दीवारें जलने लगती हैं, रात को भी राहत नहीं और पंखा गर्म हवा देता है, कूलर भी हार मान गया और हम परेशान हो ये कह उठते हैं कैसी गर्मी है। दोस्तों, ये है हीट डोम, एक ऐसा अदृश्य कैद खाना जिसमें शहर, गांव, खेत, जंगल सब फंस जाते हैं। तो आज की विविधा में बात, बचाएं सृष्टि को हीट डोम से। हीट डोम है क्या, ये क्यों बनता है, कितना खतरनाक है और सबसे जरूरी, हम सृष्टि को इससे कैसे बचा सकते हैं? दोस्तों, हीट डोम का मतलब है गर्मी का गुंबद। सोचिए, धरती के ऊपर वायुमंडल का एक बड़ा सा कमरा है। सामान्य दिनों में इस कमरे की खिड़कियां खुली रहती हैं, हवाएं आती जाती हैं, गर्मी बाहर निकलती है। लेकिन जब उच्च वायु दाब का एक विशाल ब्लॉक किसी क्षेत्र के ऊपर जम जाता है तो इस कमरे की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। अब सूरज की गर्मी नीचे तो आती है लेकिन ऊपर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि गर्म हवा अंदर ही अंदर फंसती रहती है। हर दिन तापमान बढ़ता जाता है और धरती तंदूर बन जाती है। नीचे से गर्म हवा ऊपर उठती है लेकिन ये

उच्च दाब उसे वापस दबा देता है। नतीजा, हवा गर्म होती चली जाती है और धरती पर हीट डोम बनता है। ये डोम कभी कभी तो कई कई दिनों तक टिका रह सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हीट डोम पहले भी तो आते थे, तो अब इतना खतरनाक क्यों? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। कभी सोचा है सृष्टि ने हमें कितना कुछ दिया? हवा, पानी, मिट्टी, आसमान, फसल, जंगल और हम? हमने उसे बदले में क्या दिया? जंगल काटे अपने चंद स्वार्थों के लिए, आज भी अंधाधुंध पेड़ों को काटने से हम जरा भी नहीं चूकते। नदियां दूषित की, कंक्रीट के जंगल बनाए, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से धुआं छोड़ा, एसी चलाकर बाहर और गर्मी फैलाई। धरती बार बार चेतावनी दे रही है दोस्तों, लेकिन इंसान अब भी भाग दौड़ में लगा है। भारत के कई शहरों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में गर्म हवाएं जानलेवा बन रही हैं। अगर समय रहते हम नहीं संभले तो आने वाले सालों में हीट डोम आम बात बन सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा CO2 हम छोड़ेंगे, उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, उतना ज्यादा आर्कटिक पिघलेगा, उतनी कमजोर जेट स्ट्रीम और उतने लंबे भयावह हीट डोम। ये एक दुष्चक्र है दोस्तों। हीट डोम सिर्फ गर्मी नहीं लाता, ये एक पूरी आपदा की चेन शुरू करता है और इसका पहला असर हम इंसानों पर पड़ता है। हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग, बच्चे, मजदूर और जो एसी का खर्च नहीं उठा सकते ना, उन पर पड़ता है। और दूसरा असर पड़ता है खेती पर। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान में गेहूं, धान, दाल सब झुलस जाते हैं, फूल नहीं खिलते, परागण नहीं होता, फसल नहीं आती। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए कह सकते हैं कि ये सीधा अन्न संकट है। तीसरा असर इसका जंगलों पर पड़ता है। सूखी गर्मी में जंगल टिंडर बॉक्स बन जाते हैं। और चौथा असर पड़ता है पानी पर। नदियां सूखती हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र गर्म होता है। गर्म समुद्र मतलब ज्यादा तूफान, ज्यादा बाढ़ और फिर उसी के बाद ज्यादा सूखा। हीट डोम अकेला नहीं आता, पूरी सृष्टि को हिला देता है। अब सवाल ये कि हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे जरूरी है शहरों को ठंडा करें। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम करने के लिए छतों को ठंडा बनाइए, सफेद पेंट करें, ग्रीन रूफ बनाएं। याद रखें, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करने में एक पेड़ की भूमिका 10 AC के बराबर होती है। पेड़ धरती का प्राकृतिक कूलर है दोस्तों। वर्षा जल संचयन करें, छोटी दूरी पैदल जाएं, सार्वजनिक वाहन अपनाएं, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अगर हर घर की छत पर सोलर पैनल हो तो हम बिजली भी बनाएंगे और धरती को भी बचाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम 2030 तक कार्बन उत्सर्जन आधा कर दें तो धरती के ताप को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोका जा सकता है और उसके बाद हीट डोम कम आएंगे, कम रुकेंगे, कम तबाही मचाएंगे। तो आइए मिलकर संकल्प लें कि पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे और सृष्टि को हीट डोम से बचाएंगे। याद रखिए, अगर धरती बचेगी तभी जिंदगी बचेगी।

फितूर जब चढ़ा। तो आज की विविधा में बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोता, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगी परीक्षा का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
4: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को

0: रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्वजनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये दिन जरूरी कार्यक्रम है। आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराए और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मजबूर करें।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
3: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में 1-1 प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर

संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें तीनों लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में दो अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। आईटीएफ जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने कल आईटीएफ जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक वाद विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मोहन वीणा वादन। कलाकार हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। राग है गावती।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग गावती में मोहन वीणा वादन, कलाकार थे पंडित विश्वमोहन भट्ट। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी लखनऊ है, आप सुन रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, जिसे वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। तो आप सभी को नमस्कार, श्रोताओं बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुनते रहिए 747 किलोहर्ट्ज़। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वारंगल में PM मित्र

0: टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
3: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
4: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का

0: उत्खनन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
4: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक

0: समाप्त। अभिनेता से राजनेता, टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल, पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी, पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the 4-laning of National Highway 170-67, I mean,

0: China affairs experts, Lieutenant General Raja Subramani, picked up as next CDS, Swaminathan named Navy Chief. Hindustan Times headline states, Vinesh gets WFI notice, returns set get delayed, while the Indian Express headlines, Vinesh comeback hits a hurdle, WFI bars her from competing until June 26th. In a Mother's Day special piece titled, Giving Them Roots, the Indian Express mentions inspiring stories of motherhood, pointing motherhood may not give you awards, but it certainly gives you battle scars and memories. And finally, Indian tourism waking up to its floral power, the Financial Express writes, the demand for flower-centric travel is witnessing strong growth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes four labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And nine Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के क्याम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक चार जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौरानिए के तजुर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और नौ भारतीय मुक्केबाज ताशकंद में 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वजीर आजम बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के क्याम के 45वें साल के तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीर शुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और अहाते में नए तामीर करदा ध्यान मंदिर या मेडिटेशन हॉल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी दिमागी सेहतमंदी, देही तरक्यात, फितरत के तहफ़ और समाजी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मजकूरा फाउंडेशन के साल भर तक जारी रहने वाले प्रोजेक्टों का भी आगाज़ करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर जाने से कबल वज़ीर आज़म HAL हवाई अड्डे पर BJP के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करेंगे। बंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना होंगे, जहां वो दोपहर तकरीबन 3 बजे लगभग 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु वेत्री कशगम TVK के बानी सी जोसेफ विजय आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात आज सुबह 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: चेन्नई सुपर किंग्स का शहर आज 51

0: साला जोसेफ विजे के लिए बिगुल बजाएगा, जो इस तकरीब की मरकजी शख्सियत होंगे। आज रियासत की राजधानी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ नए वजीर आला का खैर मकदम कर रहा है। 34% से ज़्यादा मैंडेट हासिल करने वाले नीज कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब वजीर आला बनने जा रहे हैं। उनके वालिद S.A. चंद्रशेखर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जिनमें सियासी मुकालमे भी शामिल थे। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली TVK ने कांग्रेस, VC के बाएं बाजू की पार्टियों और IUML की हिमायत से अक्सरियत हासिल की है। हुकूमत की तश्कील के लिए उन्हें 5 दिन तक मुसलसल बातचीत और मीटिंगें करनी पड़ी। अपनी मकबूलियत और करिश्माती शख्सियत के बायस विजय ने पहली ही कोशिश में तारीख रकम करते हुए वजीर आला का ओहदा हासिल कर लिया। उंगा विजय नान वारेन उनका इंतखाबी नारा था, जिसके जरिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब इस नई हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा अवाम लेंगे, जिन्होंने उन्हें मैंडेट दिया है। तमिलनाडु से जो आय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगा सामी को पुदुचेरी के वजीर आला के तौर पर मुकर्रर किया है। इस तकरीरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने रंगा सामी को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। 13 मई को जनाब रंगा सामी वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। गुजश्ता 9 अप्रैल को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हुए इंतखाब में AINRC की क्यादत वाले NDA की आसान जीत हासिल करने के बाद जनाब रंगासामी 5वीं मुद्दत कार के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया गया था। आसाम बीजेपी कानून साज पार्टी आज गुवाहाटी में अपने रहनुमा का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेगी। बीजेपी के 9 मुंतखब अरकाने असेंबली आज सुबह 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मीटिंग करेंगे। इस दौरान आसाम में NDA सरकार की मुसलसल तीसरी मुद्दत कार के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग बीजेपी के मरकजी मुशाहिदीन जगन प्रकाश नड्डा और उनके साथी मुशाहिद नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। मीटिंग के बाद NDA कानून साज पार्टी की मीटिंग भी इसी मकाम पर होगी। इसके बाद NDA कानून साज पार्टी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगी। इस दौरान 12 मई को मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब के लिए खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में तेज़ी से तैयारियां जारी हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन ज़िला इंतजामिया ने इस दिन के लिए शहर में ट्रैफिक के जाब्ते भी जारी कर दिए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने की तवक्को है। इसके अलावा बीजेपी के इकतदार वाली मुख्तलिफ रियासतों के कई वज़राए आला और मरकजी वज़रा को भी इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: कांग्रेस पार्टी की आला क्यादत ने कल नई दिल्ली में केरला में हुकूमत की तश्कील पर तबादले ख्याल के लिए एक मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर बुलाई गई थी, जिसमें सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश जैनीथाला और VD सतीसन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs में काम करने वाले आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तहफ़ को नुमाया तौर पर मजबूत करने के लिए इकदाम किए हैं। लेबर कोड्स की तामील को सरकारी खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया गया है, ताकि उजरतों की अदायगी में ताखीर और कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी जैसे मसाइल को रोका जा सके। इन हिदायत में इस बात का अदा किया गया है कि पेशे से मुतालिक तहफ़ हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के सेक्शन 55(3) के तहत ये प्रिंसिपल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ठेकेदार बर वक्त उजरत अदा करे। इन हिदायत में

0: कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 17(1) का भी हवाला दिया गया है, जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नया फ्रेमवर्क चार लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ्फुज़ के तस्वुर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बरवक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों महकमों आइनी व खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि वो सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रर वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोज़ाना की उजरत शिफ्ट के अख्तिताम तक हफ्तावार उजरत हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोज़ा उजरत 15 दिन ख़त्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मज़ीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने हैदराबाद में अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का तवील दौरानिए का एक जामी टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वजारत दिफा ने बताया कि इस तजुर्बे के दौरान 1200 सेकेंड से जायद का रन टाइम हासिल किया गया, जो रवा साल जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के पिछले टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरोस्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज सफे अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनती शराकत दारों के तआवुन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा माई हाइड्रोकार्बन ईंधन, जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क़यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है, जिसका मकसद कार्बन के सिफर अखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बारिश के पानी को जखीरा करने के निज़ाम और मियावाकी जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेज़ी से कार्बन के सिफर अखराज की तरफ बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद ना सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बैन अक्वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस मुकद्दस मंदिर में हर साल 97 लाख से ज़्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तआवुन से गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन मेट काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है, जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौमरों के फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडेड एंड टोबेगो में वाके नेल्सन आइलैंड का दौरा किया, जहां उनके हमराह वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार ट्रिनिडेड एंड टोबेगो पहुंचे थे। अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमात हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज़ पेश की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज

संबलपुर कांकेर से मेल भेजा है फगुराम ज्योति ओजस्वी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने, और इन्होंने नमस्कार भी लिखा है। और ये जो मेल है भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सैयद मसरूर, शाइना, नाजिया, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, और इनके साथ में इब्राहिम और परिवार के और भी सदस्य हैं। इन्होंने मेल भेजा है और अपना पसंदीदा गीत भी लिख भेजा है, और ये हैं खंडवा मध्य प्रदेश से शालिया, बेबी हलीमा, जिक्रा, आयशा। ज़िला धार धर्मपुरी से मेल भेजा है मूसा जी, ईशा जी और जाकिर खत्री ने, और अपनी फरमाइश भी इन्होंने लिख भेजी है, और इन्हें कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं आकाशवाणी लखनऊ से जो प्रसारित होते हैं। और ये हैं महाराज कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, टिम्पल, ट्वेंकल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, इन्होंने मेल भेजा है और अपनी फरमाइश भी लिख भेजी है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू, बबिता, सुभाष योगी, इन्होंने लिखा है नमस्कार जी, हैप्पी मदर्स डे, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, और इन्होंने अपने पसंदीदा गीत को सुनना चाहा है। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से मेल है दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का, और आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया लोफर फिल्म का प्यारा सा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। ग्राम पंचायत कालेगांव से मेल भेजा है सुधाकर, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, कुमारी सानवी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने, और इन्होंने नमस्कार लिखा है। आपको भी प्यार भरा हमारी तरफ से नमस्कार। और ये हैं जो भेजने वाले श्रोता हैं, मारहरा दरवाजा एटा से मेल भेजा है शहनाज, सुहेल, रसीद, अनम, यशव और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्य। सिकंदरा राव से मेल है मुबीन और इशरत परवीन का। और अगला मेल जो हमने लिया है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। आपको बता दें ये मेल आया है इन्होंने नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, और ये हैं तलहत, फरहत, नुजहत, शाजिया, नाजिया और इनके घर परिवार के बहुत सारे सदस्य और इनके मित्र बंधु सभी ने मेल भेजा है। और

अपनी फरमाइश लिख भेजी है। और अगला जो मेल है ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने भेजा है कोथरूड पुणे महाराष्ट्र से। दिव्यानी, स्वस्तिक, शशांक, तनु, तान्या, शिक्षा और इनके बहुत सारे मित्र बंधु, इन्होंने मेल भेजा है और आप सभी की फरमाइश है, सुनना चाहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा का, और इन्होंने नमस्कार के साथ साथ मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं भी लिख भेजी हैं। और ये जो मेल है हमारे श्रोता हैं ग्राम बा पोस्ट ललहवा जिला खीरी से विजयपाल जी, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार, विजय पांडे जी का। और इन्होंने लिखा है, माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि जीवन के हर पहलू में सहारा और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और माँ का प्यार, समर्थन और समर्पण हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा।

आपके इस तरह के विचार और जो भी आपने हमें संदेश लिख भेजा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मातृत्व दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को एक बार फिर से शुभकामनाएं। और अब जो मेल है ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिख भेजा है, ये हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियाउल और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन और पायल जोशी जी का इन्होंने आदाब लिखा है और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया है। और ये है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुकेश, शीतल, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर और उनके बहुत सारे मित्र बंधुओं का। और इन्होंने सुनना चाहा है किशोर कुमार का गाया अनुरोध फिल्म का ये गीत।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी ना
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना
0: और ये मेरी गुड़िया थी ना।
2: पर दादी
0: हाँ
2: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: जलालाबाद वेस्ट से हमें ईमेल लिख भेजा है सुरेश पूनम विशाल निमित दिशानी और उनके बहुत सारे मित्र बंधुओं का। और ये जो मेल आया है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने मेल लिख भेजा है और ये है आदर्श नगर मलोट पंजाब से। राज शर्मा, मीना, योगेश शर्मा, निवान, मैंडी और इनके बहुत सारे मित्र बंधु, इन्होंने मेल भेजा है और अपनी फरमाइश भी हमें लिख भेजी है। ज़रूर हम आपका पसंदीदा गीत सुनवाएंगे। और अब जो मेल है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने भी प्यारा सा संदेश लिखा है और लिखा है कि आप मदर्स डे की सभी को शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हैं फुले नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद, गीतांजलि, आकाश, आकांक्षा और इनके बहुत सारे परिवार के सदस्य। एक मेल है इन्होंने नमस्कार लिखा है और ये है बाजार रोड मुंगीसापुर से कमरुन निशा, शबिस्ता, नसीब, पलक, लुबना और यश जी, इन्होंने मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। और आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं दादी माँ फिल्म का गीत जिसे गाया है मन्ना डे महेंद्र कपूर ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है कि हम आपसे अनुमति लें कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत से। तो एक बार फिर से आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां, और कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार। 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
2: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना दो चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
3: धन्यवाद ओम जी।
2: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
3: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं, जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं। और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण, जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का, उसका कार्य संपन्न किया जाना है। और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए। और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें यह भी आशा है, बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर नहीं मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं, तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर, जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं, वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है। और उसको एक यूनिक कोड, उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद, आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
2: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
3: हम लोगों ने 3 जनपदों में, जिसमें से 2 जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच हमारे ग्राम

0: इन क्षेत्रों में प्रीटेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहींपुरवा, वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था, तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं। और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था, बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है, सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की, उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके आएगा, उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
1: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
0: मैं आपके प्रश्न को दो भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है, तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है, तो स्लम ब्लॉक्स के गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं, बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन, जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को शाम के 5 बजे के बाद, जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, उनकी भी गणना की जाती है और ये भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
1: ये जो डेटा संकलन हो रहा है तो नागरिकों की डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
0: पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेंसस एक्ट में ही गोपनीयता का प्रोविजन है, वो निहित है। एक बार जब प्रश्नावली भर दिया जाता है तो वो गोपनीय हो जाता है और वो इतना गोपनीय समझा जाता है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी उस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। सेंसस हमेशा एक स्टेटिस्टिक जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस आपको ये बता सकता है कि एक राजस्व ग्राम है उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट सेंसस आपको कभी ये नहीं बताता है कि वो कौन से परिवार हैं और उनका नाम क्या है। तो सेंसस इज अ स्टेटिस्टिक एक्सरसाइज, वो आपको स्टेटिस्टिक्स जनरेट करके दे देता है। जो डेटा आप अपने एन्यूमरेटर को बताते हैं वो हमेशा गोपनीय रहता है। जब हम अपने चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, अर्थात तहसीलदार और हमारे नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी जिनको ये कार्य फील्ड पर कराना है, उनको बार बार ये बताया जाता है कि किसी भी दशा में किसी के भी पूछने पर आप प्रगणक से भी नहीं पूछोगे और आपको भी यदि किसी स्रोत से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप किसी को ये नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है या उस व्यक्ति ने क्या रिस्पांस दिया। यही प्रगणक की भी मुख्य भूमिका है, ये हमारे चार्ज ऑफिसर की भी मुख्य भूमिका है और ऐसा करना तो एक्ट का वायलेशन भी है, इस पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। और वो जो हमारी प्रश्नावली भरी जाती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना,

0: कई बार कह रहे हैं हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप इसको यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पॉन्स फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया, तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं
1: जी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं आप?
0: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है, वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी, और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए, और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कंप्लीट करे। तो ऐसा डेटाबेस बना पाना भी हमारे लिए, खासकर जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ आबादी बहुत अधिक है परंतु उतने कार्मिक नहीं है, तो हमें कार्मिकों के लिए आसपास से भी आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी उनकी सर्विसेज प्राप्त करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग, और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं, और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने एक माह के अवधि के दौरान, और आप उसको घर पर नहीं मिले, और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ प्रगणक आया नहीं और उसने हमारा डेटा संग्रहण नहीं किया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वयंगणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें, या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोगों के जिलाधिकारियों ने की है, उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए। और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल साधन है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी गणना ब्लॉकों का गठन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात हम गूगल मैप जैसे एक्चुअल मैप के ऊपर उसका गठन कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी प्रगणक को वो क्षेत्र आवंटित नहीं है और जहां पर शायद हमारी जनसंख्या छूट सकती है। तो सभी चीजों के क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं
1: जी। क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे, और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे, यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े, क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें, बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहां पे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा 2 स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से, और ग्रामीण जो हमारे

कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके माध्यम से होगा। और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है, तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वयंगणना अधिक से अधिक लोग करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनेयर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए। तो स्वयंगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहाँ के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15

0: अगर निगमों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहाँ के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कम्प्लीट कर ले।
1: जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
0: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे। अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे। और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे। और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खुसूसी उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी। कार्यक्रम में शिरकत की है मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ के कमरुल साहब, सना खातून, एजाजुर रहमान और मंतशा खातून ने, और मेजबानी शमशुल आरफीन की है।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाए। सामईन, आज का उर्दू प्रोग्राम बेहद दिलचस्प और लुत्फ अंदोज होने जा रहा है, क्योंकि आज का उर्दू प्रोग्राम अपने आप में एक खुशबू समेटे हुए है, और उस खुशबू को अगर कोई नाम दूं तो बैतबाजी से बेहतर मेरे जहन में कोई दूसरा नाम नहीं है। तो चलिए आज का उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी के सुपुर्द करते हैं और आपको बताते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ के उर्दू प्रोग्राम में सबसे पहली बैतबाजी में हमारे साथ शरीक सफर कौन है। तो चलिए हम ही बता देते हैं। दरअसल आज की बैतबाजी में दो टीमें हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं, जिनका ताल्लुक मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ से है। इन दो टीमों में जिन्होंने शिरकत की है, टीम ए में है मोहतरम जनाब मोहम्मद कमरुल साहब और मोहतरमा सना खातून साहिबा, और टीम बी में है मोहतरम जनाब एजाजुर रहमान साहब और मोहतरमा मंतशा खातून साहिबा। आप दोनों टीमों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: शुक्रिया।
0: तो चलिए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं टीम ए के लिए अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ता हूँ कि गमजा नहीं होता कि इशारा नहीं होता, आंख उनसे जो मिल जाए तो क्या क्या नहीं होता, और हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अलिफ टीम ए के लिए।
2: इधर जो डूब गया तो मैं उधर निकलूंगा,
0: इधर जो डूब गया तो मैं उधर निकलूंगा,
2: खिलूंगा शम्स के मानिंद जिधर निकलूंगा।
0: वाह।
2: मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करें, मुझे न गांव गली शहर में ढूंढा करें, अपने दिलों में ढूंढिए मैं उधर निकलूंगा,
0: उधर निकलूंगा भाई। वाह अलिफ।
3: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा,
0: अरे रे क्या बात है, बहुत खूब।
3: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या उस पर मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा,
0: तो मैं तुम्हारा। अलिफ टीम ए के लिए।
4: उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमार ये दिल ने आखिर काम तमाम किया,
0: आखिर काम तमाम किया। अलिफ।
4: अंदाज बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात,
0: शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, ते
4: तू जफ

0: इश्क ही ठहरा, राहे ढूंढे मुश्किल मुश्किल, जब भी वो नज़दीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जब भी वो नज़दीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जैसे नैया डगमग डगमग, जैसे दीपक झिलमिल झिलमिल
1: झिलमिल झिलमिल। लाम
2: लोग तो लोग हैं लोगों की तरह देखते हैं, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं, लोगों ने तो हमको लकड़हारा समझ रखा है।
1: वाह।
2: लोगों ने तो हमको लकड़हारा समझ रखा है, एक हम हैं कि पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं।
1: बहुत खूब।
0: न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली,
1: कहां मिली।
0: न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरा अफ़्व बंदा नवाज में।
1: वाह। नून।
2: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहां जाते,
1: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते,
2: न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर ये दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते,
1: बेगाने कहाँ जाते। ये
3: वसल की रात है खुदारा, नकाब चेहरे से मत हटाओ। ये वसल की रात है खुदारा, नकाब चेहरे से मत हटाओ, तुम्हारे चेहरे का ये उजाला सहर से पहले सहर न कर दे।
1: बहुत खूब। सहर न कर दे।
3: ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता,
1: जो न बादा ख्वार होता। बड़ा मुस्करा रही हैं आप, क्या बात है, इसके शेर पे अच्छा लग रहा ना।
0: अब अपना किस्सा गम क्या कहूँ यूँ समझ लीजिए, अब अपना किस्सा गम क्या कहूँ यूँ समझ लीजिए, मुझे धोखा दिया है दोस्तों ने आप ही जैसे, मेरी आंखों में कुछ इस तरह उसने डाल दी आंखें, मेरी आंखों में कुछ इस तरह उसने डाल दी आंखें, कि रख दे सामने कोई किताबे जिंदगी जैसे,
1: कि रख दे सामने कोई किताबे जिंदगी जैसे। ये
3: यूं ही बेसबब न फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो।
1: वाह।
3: यूं ही बेसबब न फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो।
1: हाँ।
3: वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।
1: वाह।
3: वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तो उसी को प्यार करे है क्यों, ए कलीम तुझको हुआ है क्या।
1: क्या
2: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको, मैं जो काटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं जो कांटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन, मैं जो फूल हूँ तो फिर जूड़े में सजा ले मुझको,
1: सजा लो मुझको। वाह।
0: वो कोई गुस्ताख पागल मन चला था मैं न था, वो कोई गुस्ताख पागल मन चला था मैं न था, आपको छेड़ा था जिसने दूसरा था मैं न था,
1: मैं न था।
0: मैंने दानिश्ता हटाई कब तेरे रुख से निकाब, मैंने दानिश्ता हटाई कब तेरे रुख से निकाब, वो तो मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा था मैं न था, हाथ टूटे मैंने जो छेड़ी हो जुल्फे आपकी, हाथ टूटे मैंने जो छेड़ी हो जुल्फे आपकी, आपके सर की कसम दस्ते सबा था मैं न था,
1: मैं न था। वाह बहुत खूब।
3: उम्मीदें हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, ये हजरत देखने में सीधे साधे भोले भाले हैं।
1: सामिन आखिर के दो दो शेर और इस राउंड में, उसके बाद हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। जी पढ़े।
0: निगह की बर्छियाँ जो सह सके सीना उसी का है, निगह की बर्छियाँ जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है।
1: ये
2: यूँ मुझसे वो ताल्लुक छुपाता भी नहीं, पर हाल जिगर खुल के बताता भी नहीं, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और बातों के सिवा उसे कुछ आता भी नहीं,
1: आता भी नहीं। सामिन हमारी बैतबाजी का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और हमारी दोनों टीमों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। अब हम अगला राउंड करते हैं और ये लफ्जी राउंड होगा जिसमें हम दोनों टीमों को दो दो वर्ड देंगे, दो दो हर्फ देंगे, आपको उस पर शेर कहना है। तो आप लोग तैयार है ना। चलिए हम टीम ए के लिए पहला लफ्ज है दश्त।
3: दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने,
1: वाह।
3: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने,
1: बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहुत ही खूब। शायद अल्लामा इकबाल का ये शेर है।

0: जी, टीम बी के लिए पहला लफ्ज है चमन।
1: उड़ाली कमरियों ने तोतियों ने अंधलीबों ने,
0: हाँ
1: उड़ाली कमरियों ने तोतियों ने अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी।
0: वाह बहुत खूब। एक बार फिर से हम टीम ए की तरफ चलते हैं और इनको जो लफ्ज़ देते हैं वो है खंजर।
2: दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो।
0: तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, बहुत खूब। टीम बी के लिए अगला लफ्ज है बरसात।
1: धूप कहें जब धूप नहीं, रात कहें जब रात नहीं, दीवानों की बात समझना सबके बस की बात नहीं। मैं खाने पर जब भी देखो बादल छाए रहते हैं, मैं खाने पर जब भी देखो बादल छाए रहते हैं, जिनके घर में आग लगी है उनके घर बरसात नहीं।
0: बरसात नहीं, बहुत खूब एजाजुर रहमान साहब, बहुत ही अच्छा। आप दोनों ने दो दो लफ्ज से अपने अशार कहे और बहुत ही अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा है। हम अब तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं, जो एक मिसरा हम देंगे किसी मशहूर शायर का, एक मशहूर शेर, आपको वो शेर मुकम्मल करना है। दो दो मिसरे हम आप दोनों को देंगे। पहले टीम ए के लिए मिसरा है, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता।
2: ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता।
0: जो नबादा खार होता, बहुत ही खूब। टीम बी के लिए है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर।
1: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
0: बहुत खूब बहुत खूब। टीम ए के लिए है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है।
2: पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है।
0: बाग तो सारा जाने है। टीम बी की तरफ एक बार फिर से बॉल करते हैं और देखते हैं क्या सोच के लाते हैं। मिसरा है आपके लिए दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें।
1: तर दामनी पे शेख हमारी न जाइए, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें।
0: वाह क्या खूब है, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ख्वाजा मीर दर्द का गालिबन ये शेर है। सामिन ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, अभी आप समाअत फरमा रहे थे बैतबाजी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छे अशार कहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब इन दोनों टीमों के बारे में अपने तासुरात पेश करें।
3: सामईन आसिफ इकबाल का आदाब कबूल फरमाएं। सामईन आपने आज का उर्दू प्रोग्राम सुना बैतबाजी। आज के इस प्रोग्राम के बारे में हम आपको कुछ बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में हमारी टीम की यह एक चाहत थी कि हम लोगों के एक कैंपस में जाएं, हम यूथ से नौजवानों से स्टूडेंट से रابطہ कायम करें, उनके साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करें। इसी सिलसिले में हमने जो पहला प्रोग्राम शुरू किया था वो था कैंपस डायरी। इसमें हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से हम बात करते हैं। और दूसरी ज़रूरत हमको ये महसूस हुई कि उन स्टूडेंट्स को हम अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में बुलाएं, इसलिए हमने ये बैतबाजी का प्रोग्राम शुरू किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज की दोनों टीमों के जो अफराद हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं और इनके आने वाली ज़िंदगी के लिए इनको हम मुबारकबाद पेश करेंगे और बहुत सारी दुआएँ देंगे इनको।
4: शुक्रिया।
3: तो सामईन, आज के प्रोग्राम के लिए अगर आपको जो पसंद आए तो इसके लिए आप अपने तासुरात हमको ज़रूर लिखें, हमको ज़रूर बताएं। तो शमसुल जी, हमारा पता ज़रा इनको बता दें, हमारे सामईन को।
0: सामईन, बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम था और हम अपनी दोनों टीमों के बहुत मशकूर हैं। आप दोनों ने हमारे उर्दू प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सामईन, ये था हमारा आज का खसूसी उर्दू प्रोग्राम बैतबाजी, जिसमें शिरकत करने वाली टीमों का ताल्लुक था मुमताज़ पीजी कॉलेज लखनऊ से। हमारे साथ शरीके महफिल थे जनाब कमरुल साहब, सना खातून साहिबा, जनाब एजाजुर रहमान साहब और मंतशा खातून साहिबा। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? आप अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। सुन लीजिए फिर से,

नौ नौ एक सात सात आठ एक पाँच सात। सामिन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से अभी आप समात फरमा रहे थे खसूसी उर्दू प्रोग्राम बैदबाजी। कार्यक्रम में शिरकत की थी मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ के कमरुल साहब, सना खातून, एजाजुर रहमान और मंतशा खातून ने। मेजबानी थी शमशुल आरफीन की और पेशकश आसिफ इकबाल की थी। इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे रेणु शर्मा के गाए अवधि लोकगीत। रेणु शर्मा के स्वर में पहले सुनते हैं देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे रेणु शर्मा के स्वर में सोहर। इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आपको बता दें, रेणु शर्मा के गाए अवधि लोकगीतों का आप आनंद ले सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 KHz पर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सबसे पहले सुनेंगे डॉक्टर रंजना अग्रहरि के स्वर में देवी गीत। इसे सुनना चाहा है ग्राम अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, बाबू, रेयांश और उनके घर परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।

धीरे धीरे चलो मोरी मैया अम्बे। अभी आपने डॉक्टर रंजना अग्रहरि के स्वर में देवी गीत सुना और अब आइए सुनते हैं शक्ति श्रीवास्तव के स्वर में मुंडन गीत। इसे सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, शीतल तरंग श्रीवास्तव, शिवबक सिंह, गोविंद सिंह और इनके परिवार के सदस्यों ने। ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से।

अभी आप शक्ति श्रीवास्तव के स्वर में मुंडन गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः सुन सकेंगे आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम सुबह 10:20 से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कंबस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण ट्रिनिडाड में कृषि प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमित सभी क्रूज जहाज यात्रियों की 42 दिन तक निगरानी करने की सलाह दी। अमेरिका ने H-1B वीजा पर काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण पर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
1: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को नई गति देगा। उन्होंने ट्रिनिडाड टोबैगो के पेनाल में एक स्थायी कृत्रिम अंग केंद्र का भी उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि एक केंद्र देश और व्यापक कैरिकॉम क्षेत्र के लिए उपहार है। उन्होंने दत्तात्रेय मंदिर में दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की और भारत तथा ट्रिनिडाड टोबैगो के बीच संबंध निरंतर सुदृढ़ होने की कामना की। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने कहा है कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका के साथ मतभेद सामने आने के बाद भी यूरोप नाटो गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करना चाहता है। स्टॉकहोम में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ श्री मर्ट्स ने भविष्य में इस गठबंधन को सक्रिय रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ने गठबंधन के यूरोपीय स्तंभ को मजबूत किया है। श्री मर्ट्स ने कहा कि यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद अब भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों पक्षों का एक ही रणनीतिक उद्देश्य है, ईरान के साथ संघर्ष को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सक्षम न हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के यूरोपीय सदस्यों के बीच तनाव ने गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों ने फरवरी के अंत में

0: शुरू हुए अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। होर्मुज, जलडमरू, मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है। 28 फरवरी से ईरान के होर्मुज, जलडमरू, मध्य पर नियंत्रण के लिए इसराइल और अमरीका से संबंधित जहाजों की आवाजाही इस जलमार्ग से रुकी हुई है। अमरीका ने भी इस क्षेत्र की नौसैनिक नाकाबंदी कर ईरानी जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर ब्रिटेन होर्मुज, जलडमरू, मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत एचएमएस ड्रैगन तैनात कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने ईरान युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद साइप्रस की सहायता के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत तैनात किया था। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस युद्धपोत की तैनाती का उद्देश्य होर्मुज, जलडमरू, मध्य की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन में भाग लेना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले खराब रूस संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी बातचीत के लिए उनके पसंदीदा नेता हैं जर्मनी के पूर्व गेरहार्ड श्रोडर। श्री पुतिन ने कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच रूस और वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमण की आशंका वाले एमवी होंडियस क्रूज पर सवार सभी लोगों को 42 दिन तक निगरानी में रखने को कहा है। संगठन के वैश्विक महामारी रोकथाम निदेशक डॉ. वैन किरखोव ने कहा कि वर्तमान में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने 42 दिन के दौरान जहाज से उतरने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि आम जनता और कैनरी द्वीप समूह के निवासियों के लिए जोखिम कम है, जहां एमवी होंडुरस क्रूज आज पहुंच रहा है। इससे पहले एमवी होंडुरस क्रूज पर हंता वायरस के संक्रमण की सूचना मिली थी, जो अर्जेंटीना से पश्चिमी अफ्रीकी तट स्थित केप वर्डे जा रहा था। अमेरिका ने H-1B वीजा कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहले से तय न्यूनतम वेतन में 30% वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन ने कहा है कि कम वेतन पर विदेशी कर्मी उपलब्ध न होने से अमेरिकी नागरिकों के वेतन में कटौती पर रोक लगेगी।
1: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता है। शंघाई में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की भारतीय टीम ने मेजबान चीन को रोमांचक मुकाबले में शूट ऑफ में हराया। भारत ने पहला सेट जीता, लेकिन चीन ने वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर लिया। निर्धारित 4 सेट के बाद स्कोर बराबर रहने के कारण शूट ऑफ कराया गया। भारतीय तिकड़ी ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इससे पहले साहिल जाधव ने पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना

0: ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण त्रिनिदाद में कृषि प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमित सभी क्रूज जहाज यात्रियों के 42 दिन तक निगरानी करने की सलाह दी। अमेरिका ने H-1B वीजा पर काम करने वालों के न्यूनतम वेतन में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। 747 किलोहर्ट्ज़ पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब आइए आपको पुनः लिए चलते हैं आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम की ओर। सुनेंगे प्रेमलता श्रीवास्तव और पुष्पलता श्रीवास्तव के स्वर में सुहाग गीत। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है कटकहा जिला पन्ना मध्य प्रदेश से प्रताप सेन, सविता, प्रशांत, अम्बेश, कृष्ण, प्रांशी सेन ने।

प्रियंका पांडे के स्वर में आइए सुनते हैं सोहर। इसे सुनना चाहा है हमारे श्रोता। ये पत्र भेजा है इन्होंने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से शिव शरठा, शकील अहमद, वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, डॉक्टर शहबाज और सलीम अहमद ने।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हम ओम नारायण जी इटावा से बोल रहे हैं। ओम नारायण कुशवाहा जी इटावा से। अच्छा,
0: जी, आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है।
1: हाँ, रिपीट हो रही है, रिजल्ट बात सही है आपकी।
0: आप अपने रेडियो सेट से थोड़ा सा दूर हो जाइए।
1: हाँ ठीक है, हो गए साहब।
0: जी, खुशवाहा जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। कहाँ रहते हैं आप?
1: हम
0: कहाँ से?
1: इटावा में रहते हैं, यही फरताबाद फाटक के पास, गांधीनगर के पास।
0: अच्छा, और क्या करते हैं आप?
1: हम वही है, खेती किसानी अपनी। अभी
0: जी, और ये बताइए कि क्या लगा रखा है अभी आपने खेत में?
1: इसमें तोरई है, भिंडी है, और वो है मिर्च है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है।
1: जी,
0: ये बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: और गाना वो ये है 100 दिन सास के लिए।
0: अरे वाह, क्या गाने की चॉइस है
1: वो
0: आपकी। 100 दिन सास
1: जा कह रहे
0: की।
1: 2-3 मिनट हैं मैडम, मात्र
0: जी जी
1: 3 ही हैं।
0: जी जी

0: किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल।
0: ले लीजिए नाम।
1: हाँ, औरैया से दीप कमल है, और लाल फुलाए टावा से राहुल जी है, और मांगी लाल चंदेल जी है, वास्तव मैडम।
0: जी, चलिए सबको डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। नमस्कार।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं
1: जी। यूपी हरदोई खसौरा से बोल रहे हैं।
0: जी? नाम बताइए
1: हमारा नाम गिरिजा शंकर कुशवाहा।
0: जी। खुशवाहा जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। खेती
0: बढ़िया हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: करते हैं,
0: किस चीज़ की?
1: यही टमाटर, परिमल, गेहूं, मक्का।
0: अच्छा
1: इसमें मक्का भी लगा हुआ है, परमल भी है, टमाटर भी है, मिर्चा भी है, तुरई है। गाना
0: अच्छा अच्छा ये बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: सुनेंगे, नदियां चले चले रे धारा। फिल्म
0: अच्छा, फिल्म का नाम?
1: का नाम तो नहीं ध्यान नहीं।
0: चलिए हम बता देते हैं आपको, फिल्म का नाम है सफ़र। मन्ना डे की आवाज़ में आपने सुनना चाहा है ये गाना, किसी को
1: अच्छा
0: डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
1: जी, हमारे फरुखाबाद के सतीश जी हैं और जो लाइव सुन रहे हैं उन सभी के लिए।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: और हम ये लगभग हम दानिश्तर सुन रहे हैं, लगभग 1999 जब हमारा पाकिस्तान के साथ वार चला तब से।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत पुराने श्रोता हैं आप
1: उस
0: हमारे।
1: समय पे और जैसे कोई सुविधा नहीं थी समाचार की, तो यही तभी से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट हुआ है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सुनते रहिए और ऐसे ही आकाशवाणी को अपना प्रेम देते रहिए। चलिए,
1: जी, हमारा सुबह
0: नमस्कार
1: से ही इसका प्रोग्राम शुरू हो जाता है।
0: जी। चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो दीदी, नमस्ते। जी
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, मैं श्रीचंद निषाद, ग्राम जलालपुर, जिला बांदा से बोल रहा हूँ। दीदी ठीक
0: जी, कैसे हैं आप?
1: ठाक है दीदी? बहुत बढ़िया
0: ठीक ठाक हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी। दीदी किराने
0: क्या करते हैं?
1: की दुकान है अपने पास दीदी।
0: किराने की दुकान है? तो अभी दुकान पे ही हैं आप?
1: जी
0: कितने बजे खोलते हैं दुकान?
1: वही 6 बजे खुल जाती है।
0: 6 बजे सुबह खुल जाती है। अच्छा, और रात में कब बंद करते हैं?
1: क्या दीदी?
0: रात में बंद कब करते हैं?
1: रात में वही 9 बजे के बाद।
0: 9 बजे के बाद बंद कर देते हैं। तो घर के पास ही है आपकी दुकान?
1: आवाज कर रही जी?
0: हम पूछ रहे हैं, घर के पास ही है आपकी दुकान?
1: जी घर ही में दुकान।
0: अच्छा, घर में ही दुकान है, तब तो बढ़िया है। ये बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: तो कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी हसीना जब।
0: फिल्म शोले से।
1: जी,
0: चलिए, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: वही से तो सभी लोगों को रह गए, दूसरे का नाम एक दो रह जाएंगे तो क्या।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आइए, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आइए देखते हैं हमारी अगली कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो जी, कौन बोल रही हैं? हेलो
1: शांति बोल रहे हैं, ग्राम भड़ियाई मौजारा सिंह, जिला चित्रकूट से।
0: जी। शांति जी, कैसी हैं आप?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं
0: बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा अपने रेडियो सेट से दूर हो जाइए क्योंकि आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है
1: जी मैम।
0: जी। जी शांति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी मैं घर पे रहती हूँ और थोड़ा मतलब लोकगीत गाती हूँ।
0: लोकगीत गाती हैं आप? अरे वाह, क्या बात है।
1: जी
0: तो कहाँ पे गाती हैं, किस प्लेटफॉर्म पे गाती हैं?
1: जी छतरपुर पे। जी
0: अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। कुछ ज़रा गुनगुना के सुना दीजिए
1: मैम।
0: अगर आप कंफर्टेबल हों तो,
1: जी मैम।
0: जल्दी से।
1: जी मैम एक गीत है, ठाड़े बाबुल मोरे सोचे करते हैं, ठाड़े बाबुल मोरे सोचे करते हैं, बेटी न गईयो परदेस भले जू।
0: क्या बात
1: नहीं
0: है,
1: मैम ये गलत हो रहा है
0: अरे
1: जितना
0: कोई बात नहीं, बड़ी ही खूबसूरत सी आवाज़ है आपकी, इतना मीठा आपने
1: लगे
0: गाया। नहीं बस बस
1: इठा।

0: भेजू।
1: क्या बात है, अब ये
0: ये
1: भी
0: बात
1: बता दे कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं हमसे।
0: जी, एक
1: एक फूल दो माली,
0: दो माली
1: इस फिल्म का
0: फिल्म
1: गाना, गाने के बोल बता दीजिए।
0: का भी। सजना सजना वो सजना, मैं तेरे प्यारे में गई खो सजना
1: जी, आशा भोसले की आवाज़ में। चलिए,
0: जी।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, ठीक है?
0: जी मैम
1: ओके,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: और आइए देखते हैं हमारी आज की आखिरी कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रही
1: अस्सलाम
0: हैं?
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही
1: और
0: हैं?
1: बताइए मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, पहले अपना नाम तो बताइए। अंसारी
1: जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास से अंसारी बात कर रहे हैं मैम।
0: एक बार नाम फिर से बताइए। हेलो
1: जी मैम, शमा परवीन बात कर रहे हैं।
0: जी, शमा परवीन जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए, पर आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आज आप?
1: गाना सुनना है मुझे, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम।
0: अच्छा, और क्या करती हैं आप?
1: आरजे बनने की तैयारी।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात ये बता दी आपने
1: मुझे आरजे बनने का मैम बहुत शौक है।
0: तो कहीं आपने अप्लाई किया फिर?
1: अभी तो नहीं किया है,
0: अभी
1: सोच रहे
0: नहीं
1: हैं।
0: किया, अभी सोच रही हैं। चलिए फिर जल्दी से कोई
1: हाँ
0: डिसीजन पे आप आ जाइए, सोच विचार खत्म हो जाए आपका
1: बिल्कुल
0: तो कोई काम करिए फिर आगे, ठीक है? चलिए सुनवाते
1: मैम,
0: हैं आप।
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं।
0: थैंक यू सो मच। और आइए आपको
1: आपसे
0: सुनवाते
1: बात
0: हैं।
1: करके मैम बहुत अच्छा लगा और
0: जी
1: हम अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, ले लीजिए बिल्कुल।
1: सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं
0: थैंक यू।
1: रिंकी पिंकी जो जगदीशपुर में रहती हैं, आरजे पूनम जो कानपुर में रहती हैं, और बाबू
0: जी
1: और
0: जी
1: शबनम अब्बासी हैं, और जितने सुन रहे हैं उन सभी
0: जी
1: सुनने
0: जी
1: वालों को। ओके,
0: चलिए थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
1: अल्लाह
0: गाना।
1: हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज़।

मीडियम वेव 401.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंच।

0: प्यारे बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद दीदी, सभी को हमारा भी जय हिंद। मेरी मम्मी कितनी प्यारी, सारी दुनिया से वो न्यारी। कभी डांटती, गुस्सा करती, अगले पल ही लाड़ है करती। कहती गुड़िया राजकुमारी, मेरी मम्मी सबसे प्यारी। बड़े प्यार से मुझे खिलाती, ड्रेस पहनाती, बाल बनाती। मैं हूँ उनकी दुनिया सारी, सारी दुनिया से वो न्यारी।
0: वाह देविका, क्या बात है, आज तो मम्मी की बड़ी तारीफ हो रही है।
1: क्या दीदी, जैसे आपको तो पता ही नहीं है।
0: अरे बाबा माफ करो, लेकिन वैसे तो आप हमेशा मम्मा की शिकायत करती हो कि बात बात पर टोकती रहती हैं, दिन भर पढ़ो पढ़ो कहती रहती हैं।
1: वो तो मैं ऐसे ही कहती हूँ दीदी, सच में मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं।
0: वो तो सारी मम्मी अच्छी होती हैं, वो डांटती इसीलिए हैं जिससे हम अपने सारे काम ठीक से करें, अच्छे इंसान बने। वो हमें जिंदगी जीने का ढंग सिखाती हैं, वो चाहती हैं सभी हमारी तारीफ करें, इसीलिए तो हमें अच्छा बनाना चाहती हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं भी इसे समझती हूँ। इसीलिए तो आज मैं मम्मी को एक स्पेशल वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
0: आज ही क्यों?
1: क्योंकि आज मदर्स डे है।
0: ओह अच्छा, वैसे देविका माँ के लिए भी कोई दिन होना चाहिए क्या? उन्हें तो हमें हर रोज थैंक यू कहना चाहिए, वो हम सबसे बाद में सोती हैं, सबसे पहले उठ जाती हैं, हम सबकी जरूरतों का ध्यान रखती हैं, समय से खाना देना, स्कूल के लिए तैयार करना, घर को साफ सुथरा रखना और दादा दादी की सेवा करना, सबके लिए हर चीज का ध्यान रखना।
1: दीदी ये लिस्ट इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। एक दिन मम्मी ना हो तो हमारे घर में तो भूचाल आ जाता है, किसी को कोई भी चीज नहीं मिलती।
0: वही तो, हम तो अपना ही काम नहीं कर पाते, मम्मी तो घर बाहर दोनों जगह सारे काम कितने अच्छे ढंग से निभाती हैं। ये उनका काम है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। हमें एक पाठ याद करने में कितनी मुश्किलें होती हैं, और वो तो कितनी सारी बातें याद रखती हैं।
1: जी दीदी ये बात तो है, मम्मी से हमारी दुनिया शुरू होती है और मम्मी पे ही खत्म होती है।
0: हम उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें इस दुनिया में लाकर हमें जीने की कला सिखाई, हर पल मेरा साथ निभाने के लिए ए बिग थैंक यू टू यू मम्मा।

0: देविका, आज मदर्स डे है, ऐसे परिवार के सभी सदस्यों में स्नेह बना रहे और सभी एक दूसरे के साथ शांति से रहें। इन्हीं बातों को बताने के लिए 15 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाएंगे।
1: ये दिवस हमें यही सिखाते हैं, हम अलग अलग सोच, अलग अलग ढंग से रहते हुए मिलजुल कर काम करें, एक साथ प्रेम से रहें।
0: बिल्कुल, अलग मत होते हुए भी दूसरों को सुनना, उनकी बात का, विचारों का सम्मान करना, ये दिवस हमें यही सिखाते हैं। अगर हम सभी मिलजुल कर स्नेह के साथ रहेंगे तो पूरी दुनिया में शांति सद्भाव बढ़ेगा, संघर्ष कम होंगे, आपसी समझ, विश्वास, सहयोग से काम करते हुए हम दुनिया को सुरक्षित और खूबसूरत बना सकते हैं।
1: बिल्कुल दीदी, हम सभी आपस में प्रेम से रहें तो कितना अच्छा रहेगा, फिर कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी, सब शांति और सुरक्षा से अपना जीवन बिता पाएंगे।
0: सही कहा देविका, जीवन की राह में ये रूल्स बहुत ही उपयोगी हैं। ऐसे ही सड़क पर चलते समय भी हमें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।
1: दीदी, कुछ नियम तो हमें मालूम है, लेकिन अगर आप विस्तार से बता दीजिए तो और अच्छा रहेगा।
0: देविका, आप तो जानती ही हो, 8 से 12 मई तक हम यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में भी अपने बाल साथियों को बताया था।

0: तो इसी विषय पर विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हैं विकास सिंह भैया। भैया यातायात उप निरीक्षक हैं, तो इन्हीं से जानते हैं सड़क पर सुरक्षित चलने के नियम।
1: अरे बच्चों, जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ममता दीदी आज ये क्या कर रही है, गाना क्यों गा रही है। भाई मैं जो गाना गा रही हूँ ना, इसका मतलब इसका अर्थ समझाने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में एक भैया आए हुए हैं। वो भैया कौन हैं? वो खुद बता रहे हैं और आपको ढेर सारी टिप्स देने वाले हैं। तो जरा सुनिए उनको, वो कौन है।
2: नमस्कार बच्चों, मेरा नाम विकास सिंह है और मैं सब इंस्पेक्टर हूं और यहां पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं लखनऊ में। ट्रैफिक नियमों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, और आज मैं ट्रैफिक नियमों की जानकारी साझा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बच्चे सुपर हीरो बनना चाहते हैं तो आज बारी है बच्चों अपने जीवन में खुद सुपर हीरो बनने की। तो आप सुपर हीरो कैसे बन सकते हैं? आप सुपर हीरो बन सकते हैं समझदारी से और ट्रैफिक नियमों के पालन से। सुपर हीरो कौन कौन है? जैसा कि आप देखते होंगे, आपका सुपर हीरो बैटमैन है या आपका आयरन मैन है, या हम लोग जब बचपन में थे मैम तो हम लोगों का शक्तिमान सुपर हीरो थे। और सुपर हीरो की खास बात होती है कि वो लोग एक तो सच्चाई का पालन करते हैं, दूसरा रूल्स फॉलो करते हैं, तीसरा उनके अंदर सुपर पावर होती है।
1: अच्छा,
2: तो क्या आप सुपर पावर लेना चाहते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप से लेना चाहेंगे भी बच्चे।
2: बिल्कुल, मैं सुपर पावर के बारे में बताऊं तो आप यदि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, यातायात नियमों का पालन करते हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, देखिए छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए, रोड पर चलते समय अगर आप अपने माँ बाप के साथ हैं, पेरेंट के साथ हैं, तो आप कभी भी उनका हाथ ना छोड़ें। आप हमेशा बाईं तरफ ही रहें, दाहिनी तरफ ना जाएं, क्योंकि दाहिनी तरफ गाड़ियां रहेंगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और कोशिश ये करें कि गाड़ियों के बीच में से कभी भी ना निकलें। छोटे बच्चे मैम अक्सर क्या करते हैं कि वो अपने माँ बाप का हाथ छोड़ करके दूसरी तरफ भागने लगते हैं, जिससे समस्या होती है और दुर्घटना कारित हो सकती है। तो दुर्घटना से बचना है तो मेरे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़कर ही चलें और जो वो रास्ता दिखा रहे हैं उसको फॉलो करें।
1: जी, तो विकास भैया ने कितनी अच्छी टिप्स दी उन छोटे बच्चों को। अच्छा विकास भैया, वो बच्चे जो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, अकेले स्कूल जाने लगे हैं अपने दोस्तों के साथ और पैदल जा रहे हैं मान लीजिए, तो उन बच्चों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
2: इन बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप पैदल जा रहे हैं तो सबसे जरूरी होती है कि जब आप रोड की साइड में चल रहे हैं तो आप बाएं लेन का प्रयोग करें, और जब आप रोड क्रॉस कर रहे हों तो आप जरूर देखें कि जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है। अगर आपने जेब्रा क्रॉसिंग नहीं देखा और आप सोच रहे हैं कि रोड क्रॉस कर दें तो ये तो बड़ा नादानी होगा। जब भी आप रोड क्रॉस करो, रोड क्रॉस करते समय हमेशा सबसे पहले दाहिने देखना है, फिर उसके बाद बाएं देखना है, और फिर उसके बाद फिर दाहिने देखना है।
1: अच्छा।
2: फिर उसके बाद जब आपको दिखे कि गाड़ी नहीं है तब आपको सावधानी से रोड को क्रॉस करना है।
1: अच्छा भैया, सड़क पे जब बच्चे चलते हैं ना तो अक्सर दोस्तों के साथ बातें करते हुए चलते हैं, या भाई आजकल तो छोटे बच्चों के पास भी फोन दे दिया जाता है कि मम्मी पापा से आपको संपर्क करना है तो आपके पास फोन रहे, तो बच्चे रास्ते में फोन भी अपना सुनने लगते हैं, कान में एयरफोन लगा देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों?
2: देखो बच्चों, आज के समय में जो भी सोशल मीडिया गैजेट्स आपके पास में है, अगर आपके पास मोबाइल फोन है, ईयरफोन है, इसको आप एकांत में जब आप खाली समय है तब यूज करें। रोड पर चलते समय गैजेट्स यूज करना अर्थात मोबाइल फोन का प्रयोग करना, ईयरफोन लगा करके रोड पर चलना, ये आपके लिए दुर्घटना कारित कर सकता है और आपको इससे अवॉइड करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी बात होती है जब आपने ईयरफोन कान में लगा लिया तो आपका मन अब किस तरफ है, वो जो म्यूजिक बज रही है उसको सुन रहे हैं।
1: जी जी,
2: डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है।
1: हाँ।
2: और जहाँ डिस्ट्रैक्शन हुआ, रोड पर डिस्ट्रैक्शन दुर्घटना को दावत देता है।
1: जी, आपको सुनाई भी नहीं पड़ता है कि
2: सुनाई नहीं पड़ेगा, अगला आदमी हॉर्न बजा रहा है या अचानक गाड़ी लेकर के आ गया और आपको सुनाई नहीं पड़ा और आप मस्त है और इसी में दुर्घटना हो जाती है।
1: और बातें करते हुए बच्चे बहुत चलते हैं।
2: बच्चों में क्या होता है मैम कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और जब छुट्टी का समय होता है या स्कूल जाते समय इनके पास समय यही रहता है तो सोचते हैं कि चलो इसी में अपने दोस्तों से बात कर लें। तो देखो, दोस्तों से बात करना है तो आप थोड़ा सा खाली समय निकालिए, रुक जाइए, कहीं बात कर लीजिए, उसके बाद जब रोड पर चलिए तो कतई बातें मत करिए, क्योंकि बातें करना भी डिस्ट्रैक्शन को पैदा करता है, मतलब आपको भटकाव पैदा करेगा। आप रास्ते पे इधर उधर चले जाओगे, अचानक आपको पता भी नहीं चलेगा बात करते करते

0: कब आप दाहिनी लेन में चले गए और उस तरफ से गाड़ी आ रही थी और
1: दुर्घटना हो
0: सकती है, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ये चीजें जो है अगर हम समझदारी रखेंगे तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं
1: जी। अच्छा विकास भैया ये बताइए कि वो बच्चे जो अब थोड़े और बड़े हो गए और पापा मम्मी ने दे दी उनको साइकिल कि अब साइकिल से स्कूल जाओ आओ, अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब तो उनको पर मिल गए हैं, अपने साइकिल पे सवार होके चल देते हैं, कभी हाथ छोड़ के चलाते हैं साइकिल, और कभी कभी भैया ऐसा करते हैं कि तीन चार जो बच्चे होते हैं ना एक साथ लाइन बनाकर चलते हैं सड़क पे, पीछे आने वालों को दिक्कत होती है और वो भी इतने बात करते हुए चलते हैं ना कि वो भी शायद नियमों का पालन नहीं करते होंगे, तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को आप?
0: जी मैम आपने सही प्रश्न उठाया है और सचमुच में ये जो बच्चे होते हैं ये जय वीरू की दोस्ती होती है।
1: अच्छा, ये दोस्ती
0: हम नहीं तोड़ेंगे। तो क्या होता है कि रास्ते में चलते वक्त ये लोग आपस में हाथ पकड़ कर, कभी कभी एक हाथ छोड़ दिए दूसरे के हाथ पकड़ करके साइकिल चला रहे, लेकिन बच्चों ये सबसे खतरनाक होता है, रोड पर चलते समय कभी भी आप दो लाइन तीन लाइन बनाकर ना चलें, इससे जो है पीछे वालों को बाधा उत्पन्न होती है, तथा कभी कभी रैश ड्राइविंग करता हुआ कोई व्यक्ति आया, वो रैश ड्राइविंग कर रहा है अपने धुन में मस्त है और उसने जो है दुर्घटना कारित कर दी, तो ये हमारे लिए खतरनाक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि दोस्ती तो हम नहीं तोड़ेंगे लेकिन यातायात नियमों का पालन करेंगे, सिंगल लाइन में चलेंगे, बाएं लेन को आप कवर करें, दाहिने लेन पे जाने की कोशिश ना करें, दाहिना लेन आपको खतरा कर सकता है, आप बाएं लेन में हमेशा रहें, सिंगल लेन में रहें, और जब भी बात करने का मूड करें ना तो थोड़ा सा जब लंच होता है या टाइम मिलता है तो स्कूल के टाइम में या बाहर समय जब खाली समय है तो एकांत में कहीं रुक करके बातें करें।
1: अच्छा भैया अब बच्चे 14 साल तक के हो गए, हमारे जो कार्यक्रम बच्चों का है ना, तो 14 साल तक आते आते भी किशोरावस्था टीनेज आ जाती है, बच्चों को अब साइकिल छोड़ के ना बाइक चलाने का मन करता है, स्कूटी चलाने का मन करता है, और मौका पाकर वो बड़े भाई बहनों की पापा मम्मी की जो बाइक या स्कूटी होती है उसकी चाबी लेके चल देते हैं, अब उनकी एज भी नहीं है ना उनके पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो आप बताइए क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को?
0: ऐसे बच्चों को तो हम यही कहेंगे कि अगर आपकी एक नादानी आपके पिताजी को जेल पहुंचा सकती है, आपकी एक नादानी एक व्यक्ति की जान ले सकती है, आपकी नादानी आपके जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकती है, तो मेरे छोटे बच्चों जो अभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैं जो है बाइक चला लूं, आप अभी मत उसको छुइए, क्योंकि ये उनके लिए है जब आप टीन एज पार करके जब आपकी रियल एज होती है अर्थात 18 साल जब आप क्रॉस करते हैं उसके बाद ही आप प्रॉपर जब आप ड्राइविंग सीख लें और ड्राइविंग सीखने के बाद ही अपने वाहन को चलाएं। अगर आपने बिना ड्राइविंग सीखे वाहन लिया तो वो पुलिस वाले अंकल का डंडा भी चलेगा और परिवार वालों को भी समस्या होगी। मैम बच्चों के माता पिता को 3 साल की सजा है, 25,000 का जुर्माना है।
1: अरे बाप रे।
0: और आप ये जान लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस भी बच्चे का बनेगा नहीं, तो भविष्य में इनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
1: हाँ।
0: जुर्माना है, आर्थिक रूप से दंड मिला। दूसरा इनके माता पिता को पेरेंट्स को जेल जाना पड़ेगा, ये अच्छा है?
1: बिल्कुल नहीं।
0: अच्छा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप समझदारी को चुने, अगर आपको दिख भी रहा है कि हमारे घर में कोई नहीं है तो आप कतई भी स्कूटी बाइक कभी भी अपने पेरेंट्स का ना लें, 18 साल की एज पूरा होने पर ड्राइविंग सीखें और सुरक्षित बाइक लें स्कूटी लें और एंजॉय करें।
1: जी अच्छा भैया चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे आपसे, चाहे हम पैदल चल रहे हों साइकिल से चल रहे हों, अब ये बताइए कि जो ये लाइट्स है ना, रेड लाइट येलो लाइट ग्रीन लाइट, इसका मतलब भी बच्चों को बताते चलिए।
0: बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने, और सचमुच में अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आपको सिग्नल के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बच्चों जब आप रोड पर चल रहे होते हैं तो कुछ लाइटें आपको दिखेंगी जिसे ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं, और ये ट्रैफिक सिग्नल 3 कलर के होते हैं, और ये कलर क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा अलग अंदाज से।
1: बताइए।
0: लाल बत्ती कहती है मैं जल चुकी हूँ अब आपको रुक जाना चाहिए, लाल बत्ती थोड़ा सा आपको रोक रही है, तो बच्चों अगर लाल बत्ती जल रही है तो क्या करना चाहिए,
1: रुक जाना है।
0: यस। और अगर येलो बत्ती जल रही है तो येलो अर्थात पीली बत्ती जलने पर बच्चों को कहती है कि आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए अर्थात लाल बत्ती के बाद येलो बत्ती जले तो अर्थात आप जाने के लिए

0: तैयार हो जाइए, और हरी बत्ती के बाद येलो बत्ती जले, पीली बत्ती जले, तो अर्थात रुकने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको तैयार होना है, ठीक है, इसमें चलना नहीं है। अब चलना किस में है? जब हरी बत्ती, हरी बत्ती कहती है जब मैं जलूं तो आप चले और मुस्कुराते हुए अपने सफर पर आगे बढ़े। आप ट्रैफिक के सुपर हीरो हैं। सुपर हीरो तभी है मेरे बच्चों जब आप यातायात नियमों का पालन करेंगे, और यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंजॉय करते रहें, अपने लाइफ को जिए, अपनी सफलता को ग्रैब करें, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें।
1: तो अब हम समय का पालन करते हैं और विकास सिंह भैया को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे बच्चों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
2: दीदी, विकास सिंह भैया ने तो सड़क पर सुरक्षित चलने के अमूल्य नियम हमें बताए, इसके लिए भैया को ढेर सारा धन्यवाद।
3: हमारे सारे बाल साथी इन बातों का ध्यान रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे। देविका, ये तो हो गई बात हमारी सुरक्षा की। ऐसे ही हमारी धरती पर हमारे साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे भी रहते हैं, हमें इनकी देखभाल भी करनी चाहिए।
2: जी दीदी, बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे हमें स्वस्थ और सुरक्षित रहने का अधिकार है, वैसे ही इन्हें भी है।
3: इसी बात पर हम आपको बताते चलें कि पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया जाता है। आप लोग जानते हो हम जो खाना खाते हैं उसमें 80% हमें पौधों से मिलता है, और ऑक्सीजन भी।
2: जी दीदी, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे।
3: इसीलिए 2026 में इस दिवस की थीम है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा, मतलब हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी है, उन्हें बीमारियों से बचाना है, जैव विविधता की रक्षा करनी है। स्वस्थ पौधे हमारे लिए सुरक्षित पर्यावरण तो बनाते ही हैं, साथ ही हमें पोषण देते हैं, प्राणवायु देते हैं।
2: अगर हमें हेल्दी और सेफ रहना है तो पौधों को भी हेल्दी और सेफ रखना होगा।
3: बिल्कुल, और ऐसी ही जानकारियों के लिए सुनते रहना है आकाशवाणी, जो 90 सालों से आपका साथ हर पल निभा रही है।
2: तो अब चलते हैं नॉलेज बैंक की ओर।
3: नॉलेज बैंक से आज हमने निकाली है ये जानकारी, ये आकाशवाणी है।

0: बच्चों, भारत में रेडियो का सफर 23 जुलाई 1927 से शुरू होकर आज भी देश के 99% लोगों तक अपनी पहुंच बनाए हुए है। तब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से इसका प्रसारण शुरू किया था। 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो हुआ। आकाशवाणी को ये नाम 1956 में मिला। आकाशवाणी का अर्थ होता है आसमान से आवाज। स्टूडियो से निकलकर हमारी आवाज रेडियो तरंगों पर सवार होकर आपके रेडियो और मोबाइल तक पहुंचती है, तो हुई ना आसमान से आवाज। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग मैसूर रेडियो स्टेशन ने किया था। उसने अपना ये नाम बदलकर आकाशवाणी रखा था। 1930 के दशक में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता शॉर्टवेव सेवा के उद्घाटन के लिए एक कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया था आकाशवाणी। आज पूरे देश में लगभग 591 आकाशवाणी प्रसारण केंद्र काम कर रहे हैं। इनमें 230 केंद्रों में कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण होता है, जबकि 361 रिले स्टेशन हैं। अब बात करते हैं आकाशवाणी के मुख्यालय की। ये स्थित है नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती के द्वारा संचालित होता है। 23 भाषाओं और 182 बोलियों में आकाशवाणी देश के 82% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का साधन आकाशवाणी हर वर्ग के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आज डिजिटल युग है, तो आकाशवाणी की 24 घंटे की इंटरनेट आधारित रेडियो सेवा और डीटीएच के माध्यम से भी ये श्रोताओं तक अपनी पहुंच बनाए हुए है। साथ ही विदेश सेवा का प्रसारण भी 27 भाषाओं में चल रहा है। तो ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी, आकाशवाणी, आकाशवाणी।
2: क्या बात है दीदी, आकाशवाणी स्टूडियो में बैठकर आकाशवाणी के बारे में जानना बेहद रोमांचक।

0: रोमांचकारी रहा।
1: आशा है रेडियो सुन रहे हमारे बाल दोस्त भी ऐसे ही रोमांचित हुए होंगे। देविका, हमारा जीवन रोमांचों से भरा रहता है।
0: जी दीदी, पहाड़ पर घूमने का रोमांच, बारिश के पानी में भीगने का रोमांच, एग्जाम का रोमांच वगैरह वगैरह।
1: हाँ, ऐसे ही हमारे वैज्ञानिकों को नई नई खोज करने का रोमांच रहता है। 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेनन ने एक अनोखी खोज की थी, जिसका इस्तेमाल आप लोग खेल में भी करते हो। बताओ बताओ।
0: खेलने में करते हैं, बैट
1: नहीं,
0: बॉल
1: नहीं,
0: फिर क्या दीदी, आप ही बता दीजिए।
1: लेजर लाइट। आपके पास भी मैंने छोटी सी लेजर टॉर्च देखी है, जिससे लाल लाल रोशनी निकलती है।
0: जी दीदी, वो तो है मेरे पास अभी भी, ये देखिए।
1: हाँ यही, पता है लेजर का मतलब क्या होता है?
0: लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड रेडिएशन।
1: बिल्कुल सही, मतलब उत्तेजित विकिरण द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। इसकी खोज की याद में हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और इसे 2018 से मनाया जा रहा है।
0: अच्छा दीदी।
1: हाँ देविका, लेजर का प्रयोग सर्जरी करने में, हीरा या मोटी धातु काटने में, संचार, टीवी, इंटरनेट सिग्नल में, लेजर प्रिंटर, बारकोड स्कैन, डीवीडी और स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है।
0: इसके तो बहुत सारे उपयोग हैं दीदी, इतना सारा ज्ञान लेते लेते दिमाग थोड़ा थक गया है, तो कुछ उसके लिए वार्म अप हो जाए।
1: बिल्कुल, आज हमारे साथ उभरते बाल सितारे अमेया सिंह है। ये बहुत अच्छा सितार बजाती है, तो सुनना है इनका सितार वादन।
0: जी दीदी बिल्कुल।
2: बाल दोस्तों, आज इस स्टूडियो में हमारे साथ में है एक नन्ही प्यारी सी बच्ची, और वो जितनी बड़ी है उससे बड़ा उनका वाद्य यंत्र है, यानी वो है छोटी सी और जो वाद्य यंत्र है वो सितार। नाम हम उनका बता देते हैं, उनका नाम है अमेया सिंह। तो अमेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: अमेया, ये बताइए हमारे दोस्तों को कि आप अभी बहुत छोटी हैं और सितार बजा रही हैं, कितने सालों से सीख रही हैं आप सितार बजाना?
3: जी, मैं जब मैं छोटी थी, 3 साल की थी, तभी से मैं कथक करती थी और मैं वोकल्स भी सीखती थी। फिर मैंने एक दीदी को देखा हमारी एकेडमी में, फिर मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी सितार सीखना है। जब मैं 4-5 साल की हुई, तब मैम ने बोला कि 6 साल की जब तुम होगी तब मैं तुम्हें सिखाऊंगी।
2: तो तुम 6 साल की उम्र से सीख रही हो और आपको कथक में और गायन में भी शौक है, अभी भी आप करती हैं नृत्य और गायन की, अब पूरा ध्यान आपका सितार पर है?
3: अभी तो मैं नृत्य और वादन करती हूँ, गायन थोड़ा छूट गया है।
2: अच्छा, तो आज तो हम बात आपके नृत्य पर नहीं करेंगे या सितार वादन पे आपसे बात करेंगे। तो अभी आप किस क्लास में पढ़ रही हैं?
3: मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ।
2: अच्छा, तो 6 साल की उम्र से आपने विधिवत सीखना शुरू किया है, कहाँ पे सीखती हैं आप अमेया?
3: अभी तो मैं नवीन मिश्रा जी से सीखती हूँ, डॉक्टर नवीन मिश्रा जी।
2: अच्छा, वो आपके गुरु हैं?
3: हाँ।
2: अच्छा, तो अमेया ये बताइए कि जब आप सितार बजाना शुरू किया आपने और आप 6वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, तो पढ़ने और सितार प्रैक्टिस के बीच में थोड़ा समय निकालना पड़ता होगा आपको ना?
3: जी।
2: तो कैसे निकालती हैं समय आप?
3: तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा टाइम मैं पढ़ाई को देती हूँ और बाकी थोड़ा टाइम मैं सितार को देती हूँ। जैसे 10 से 12 मैं पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं थोड़ा टाइम 3 से 4 ऐसे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जब कहीं परफॉर्मेंस या कंपटीशन होता है तब 2 से 3 घंटे भी प्रैक्टिस करती हूँ।
2: तो आप परफॉर्म भी करती हैं स्टेज पे और कॉम्पिटिशन में पार्ट करती हैं, तो बताइए अब तक आपने किसी खास स्टेज पे परफॉर्म किया हो या कॉम्पिटिशन जीता हो, ये हमारे दोस्तों को बताइए।
3: जी, मैं पहले तो कथक में भी जीत चुकी हूँ, पर सितार में मैंने इसी साल शताब्दी वर्ष हुआ था प्रयाग संगीत समिति में प्रयागराज, तो मैं वहाँ पर प्रथम स्थान आया था मेरा।
2: वाह वाह, बहुत बधाई।
3: उसमें मैंने किया था और लखनऊ में ही संगीत नाटक अकादमी है, उसमें भी मैं द्वितीय स्थान ला चुकी हूँ।
2: अमेया, पुरस्कार जीतना अच्छी बात है, वो आपको एक तरह से प्रोत्साहित करता है, लेकिन यदि कभी सेकंड, थर्ड या नहीं भी जीता तो भी हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपकी उम्र तो सीखने की है ना? तो सीखने की बात पे ये बताइए, क्या सुनाएंगी आप हमारे बाल दोस्तों को सितार पे?
3: मैं मीराबाई जी के द्वारा लिखा हुआ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भजन आप सभी के सामने पेश करना चाह रही हूँ।
2: चलिए हम सब मिलके सुनते हैं।

0: तो अभी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीराबाई जी का लिखा ये भजन हमें सितार पर सुनाया अमेया ने। अमेया जो संगीत का धन है वो सभी को नहीं मिलता, क्योंकि सभी के पास इतना धैर्य नहीं होता, इतनी मतलब उनके अंदर ना लगन नहीं होती, और आपके पास है। तो इसके पीछे बताइए कि पापा मम्मी का कितना सहयोग है।
1: मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सहयोग करते हैं कि मैं जिस प्रोग्राम में जाना चाहूँ, जिस कंपटीशन में, तो उसमें मेरे मम्मी पापा मेरे को हर तरह से सहयोग करते हैं। कंपटीशन में कभी सितार में, कभी नृत्य में, बाकी कभी किसी और चीज में।
0: तो पापा मम्मी का पूरा सहयोग रहता है ना। अच्छा अमेया, आपके बहुत सारे शौक हैं, पढ़ाई में भी आपका मन लगता है?
1: जी।
0: नंबर अच्छे आते?
1: जी।
0: तो आपको बड़े होकर क्या बनना है, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना है कि जो आपकी कला का क्षेत्र है ना, चाहे कथक हो चाहे आपका सितार वादन हो, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं?
1: जी मैं पढ़ाई के क्षेत्र में ही जाना चाहती हूँ, पर साथ साथ मैं अपना वादन ये सब भी
0: कंटिन्यू रखोगी है ना, एज ए शौक पैशन, एज ए कला के रूप में इसको जीवित रखोगी। ठीक है, बनना क्या चाहती हो बड़ी होके तुम?
1: जी मैं तो IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ बड़े होकर।
0: जी, तो उसके लिए पढ़ाई खूब कर रही हो?
1: जी।
0: बहुत अच्छी बात है। चलते चलते हमें क्या सुनाओगी दोस्तों को?
1: जैसे बड़ा मंगल चल रहा है तो मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां हनुमान चालीसा की प्रस्तुत करने जा रही हूँ
0: सितार पर, है ना?
1: सितार पर।
0: तो चलिए सुनते हैं।

0: अमे, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप हमारे स्टूडियो में आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बच्चों, अभी आपने अमेया सिंह से उनका सितार वादन सुना।
2: दीदी, सच संगीत कानों और दिमाग को कितनी शांति देता है। बहुत ही कर्ण प्रिय सितार बजाया अमेया ने, इसके लिए इनको ढेर सारा धन्यवाद।
1: देविका, अब तो चलने की बेला आ गई।
2: आज हमारे दोस्तों ने जो जो बातें सुनी है उन्हें कैसी लगी हमें जरूर बताइए। तो उसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल एड्रेस bmbg.airlko@gmail.com।
1: इस ईमेल पर हमें अपने विचार जरूर लिख भेजिए, हमें इंतजार रहेगा। और अब आज का कार्यक्रम वाइंड अप करने का समय हो गया। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति
2: देविका श्री शुक्ला को
1: और राजलक्ष्मी दीदी को। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मंच। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब पेशो खिदमत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

और भी तरोताज़ा हो जाते हैं। इन गानों की खुशबू जैसे गुलाब की पंखुड़ियों से निकलती हूँ, जो दिल में बस जाती हैं और कभी भी नहीं मिटती। कार्यक्रम में पहला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आराधना से किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत बद्ध किया है SD बर्मन ने।

कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म यादों की बारात से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दो चोर से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दीवार से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म शागिर्द से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नक में अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं और अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।

0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। महेश प्रसाद शर्मा, गोकुल ग्राम योजना आवास विकास, बीबी खेड़ा, थाना पारा, जनपद लखनऊ से हमें सूचित करते हैं कि खुशी देवी, जिनकी आयु 18

0: फर्श है, ऊंचाई 5 फुट, शरीर इकहरा, रंग सांवला और चेहरा गोल है। वो दिनांक 21 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। गुमशुदगी के समय खुशी देवी ने स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग पहना हुआ था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9198465745। नंबर एक बार पुनः सुन ले, 9198465745। विशाल उर्फ बिट्टू, जिनकी आयु 14 वर्ष है, लंबाई 4 फिट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। वो दिनांक 21 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। विशाल उर्फ बिट्टू के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9456001246। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9456001246। इनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पता है राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ। और इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब यहीं समाप्त होती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर, हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522-4530-207।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं और अब से बस कुछ ही देर में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीभा हाशमी से। मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर के इकदामात में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के तहफ्फुज को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के

0: खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातहीन का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे। वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक़द किया जाएगा। वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। दरियसना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फेहरिस्त में शामिल है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ नौवुजरा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफबरदारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजामात को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैरकानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर तजावजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजों के कुल 624 ओहदों के लिए 2 रोजा तहरीरी इम्तिहान कल से शुरू हो गया। पहले रोज इम्तिहान 2 मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजों का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और आर्ट समेत 4 मौजों का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 1 बच्चा और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया, जिसमें 3 अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 2 दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज इतवार है, जिसमें आज की झलकी का शीर्षक है सफाई के कमाल। आलेख प्रतिभा त्रिपाठी का है और निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता हैं आतिश कुमार श्रीवास्तव।

0: अजी सुनते हो?
1: अरे ऊपर वाले ने मुझे श्रवण शक्ति से नवाजा तो है, पर विश्वास नहीं होता कि मैं सुन भी सकता हूँ।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि तुमने तो ये कुछ सुनते ही नहीं कह कह कर मुझे विश्वास दिला दिया है कि मैं बहरा हूँ, और एक बहरे इंसान को भी तुम सुना ही देती हो। बस इसी से डरा हुआ हूँ।
0: ओफो, तुम्हारी तो खोपड़ी उल्टी है। मैं यहाँ कितनी जरूरी बात लेकर आई हूँ और तुम शुरू हो गए मैं डरा हुआ बहरे इंसान का रोना लेकर। और हाँ, तुम अकेले ही डरे हुए बहरे पुरुष नहीं हो।
1: सही कह रही हो। बढ़ती हुई जनसंख्या से इतना तो पता चलता है कि डरे हुए बहरे पुरुषों की संख्या अच्छी खासी है।
0: क्या जनगणना रिपोर्ट में ये भी बताते हैं कि डरे हुए पुरुषों की संख्या कितनी है, बहरे पुरुषों की संख्या कितनी है?
1: अरे जनगणना में तो नहीं बताते, लेकिन इसका सीधा साधा फार्मूला है।
0: वो कौन सा फार्मूला है, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: देखो भगवान, बढ़ती जनसंख्या इज इक्वल टू बढ़ती जन्म दर, और जब जन्म दर बढ़ रही है मतलब शादीशुदा महिला पुरुषों की संख्या भी बढ़ रही है, और शादीशुदा हर पुरुष डरा हुआ बहरा है, तो हुआ कि नहीं बढ़ती जनसंख्या इज इक्वल टू बहरे और डरे हुए पुरुषों की संख्या।
0: बच्चों को गणित पढ़ाते पढ़ाते तुम हर जगह अंगणित के फॉर्मूले लगाने लगते हो।
1: वैसे मैं शब्दों की गणित भी लगाता हूँ।
0: क्या मतलब शब्दों की गणित?
1: अरे वो समय आने पर बताऊंगा, फिलहाल तो तुम्हारा अंकगणित प्रमाण के साथ तुम्हें समझा दूं।
0: ये क्या अंकगणित शब्दों की गणित लगा रखी है?
1: देखो, जब मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था तब तुम कुल 40 किलो 200 ग्राम की थी, और अब पूरे 80 किलो 800 ग्राम, मतलब सीधे सीधे 2 गुने की वृद्धि।
0: तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरे वजन पर हंसने का। और सुनो, ये वजन बड़े ऐशो आराम में रहने से नहीं बढ़ा, रात दिन चक्की की तरह चलती रहती हूँ, वक्त बेवक्त का खाना पीना, न सोना न चैन।
1: मेरी ही जेब काट काट कर 4-4 सोने की चैन बनवा रखी है, और कह रही है न सोना न चैन। भले ही मेरी जेब कटी है कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी तो चोरी चोरी ही चोरी पकड़ी है। कह दूंगा तो उल्टा मुझ पर ही जासूसी का इल्जाम लग जाएगा। करे भी तो क्या करे बेचारा डरा हुआ पुरुष।
0: ऊपर से 100 बीमारियों ने घेर लिया है, बस वजन बढ़ता जा रहा है। कितनी तकलीफ है ये तो किसी को समझ में नहीं आता।
1: अरे नहीं भगवान, तुम क्यों दुखी होती हो, मैं समझता हूँ। 100 बीमारियों ने घेर रखा है तुम्हें। 100 बीमारियां मतलब सुख रोग।
0: क्या कहा, बड़े सुख दे रहे हो मुझे, सारा दिन खटती रहती हूँ वो नहीं दिखता।
2: मैम साहब, काम हो गया, मैं जा रही। और हाँ मैम साहब, कल जरा मैं देर से आएगी, बार बार फोन करके मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का।
0: क्यों री रानी, अब कल क्या है जो लेट आएगी, अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने छुट्टी ली थी। क्या बोला था, मैम साहब शॉपिंग करने जाना है, अब फिर तुझे शॉपिंग करना है?
2: नहीं मैम साहब, कल मेरे को ना बच्चों के पीटीएम में जाने का है।
0: पीटीएम?
2: पीटीएम बोले तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मैम साहब।
0: अरे वाह रानी, तुझे तो अंग्रेजी भी आती है।
2: हाँ मैम साहब, वो मैं रेडियो में सुनती हूँ ना कि बच्चा लोगों को स्कूल जरूर भेजने का, उनको पढ़ाने से बहुत फायदा होता मेरे को। बच्चा लोगों को सुन सुन के मैं भी सीख रही है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, अब जा, कल देर से ही सही, मगर आज जरूर जाना, छुट्टी ना कर लेना।
2: हाँ मैम साहब, थैंक यू मैम साहब।
0: ठीक है अब जा। और सुन, जाते जाते ये पंखा बंद कर दे, ठंड सी लग रही, पर उठकर बंद करने में आलस आ रहा है।
1: बंद कर दे रानी, तेरी मैम साहब लेटे लेटे थक गई है।
2: मैं चलती है अभी।
0: तुम्हारी नजर तो बस मेरे आराम पर रहती है, लगा दी ना नजर, अब रानी कल देर से आएगी। हे राम, सुबह कितना काम होता है, बाहर गेट से दूध की थैली लाना, पेपर लाना, खिड़कियाँ खोलना, पर्दे हटाना, चिड़ियों को दाना पानी डालना, हे राम कितने काम है। रानी भी ना काम चोर है एक नंबर की, अरे स्कूल अपने पति को भी तो भेज सकती थी।
1: सही कह रही हो, रानी एक नंबर की काम चोर है। क्या खूब पहचाना भाई, भाई ने भाई को जाना।
0: क्या मतलब, तुम मुझे कामचोर बोल रहे हो?
1: अरे नहीं भगवान, मैं तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमता की दाद दे रहा हूँ कि रानी की कामचोरी को तुमने कितनी आसानी से पकड़ लिया।
0: चलो बातें ना बनाओ, मैं सब समझती हूँ, मुझसे अच्छी तो ये रानी है, कम से कम रोज घर से निकलती तो है, और एक मैं हूँ सुबह से शाम इस 4 दीवारी में मेरा दम घुटता है।
1: ये तो सच कहा तुमने, रानी तुमसे तो अच्छी है।
0: क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो, रानी मुझसे अच्छी है?
1: भाई बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी बात को सही कहूँ तो भी मारा जाऊँ, गलत कहूँ तो भी। वैसे गलत कह

0: ने की तो हिम्मत ही कहाँ है हम डरे हुए पुरुषों में।
1: मैं सब समझती हूँ, तुम्हें तो बस मुझे छोड़कर दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है।
2: अभी पूरे मोहल्ले की देवियों के दर्शन तो कर नहीं पाया, ये देश दुनिया की बातें कर रही है। डरा हुआ, बेबस, बहरा, अब तो अंधा भी नहीं नहीं भयंगा पुरुष, क्योंकि तुम कितनी भी नजर रखो मैं भी लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली तकनीक अपना कर देवी दर्शन कर ही लेता हूँ।
0: अच्छा छोड़ो ये सब, मैं अभी तुम्हें चार दीवारी से बाहर निकालता हूँ और देश दुनिया की सैर करवाता हूँ।
1: उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है, पहले से पैसे खर्च होते हैं तब देश दुनिया की सैर होती है।
0: हाँ, और कमरे से बाहर निकलना होता है,
2: मगर मेरी प्यारी बीवी तो गेट तक जाकर अखबार लाने में ही थक जाती है।
0: ऐसा करता हूँ कि देश दुनिया को यहीं पर ले आता हूँ।
1: देश दुनिया को कमरे में ले आओगे?
0: लोग आसमान से तारे तोड़ लाते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए देश दुनिया को इस कमरे में नहीं ला सकता? तुम भी कैसी बातें करती हो
1: भाई, कमाल है डरे हुए बेबस पुरुष जी।
0: हाँ हाँ, माना कि मैं बेबस हूँ, डरा हुआ हूँ, पर सिर्फ तुमसे, दुनिया से नहीं। बस तुम देखो, अभी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया हाजिर है।
3: ये देखो, अब इसमें ईरान, तुरान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान सब की जानकारी ले लो।
1: तुम्हारी बकवास सुनने से बेहतर यही है कि रेडियो सुना जाए।
4: बच्चों, डेंगू के क्या लक्षण हैं?
5: मास्टर जी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, आँखों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते।
4: शाबाश।
5: इसके अलावा मास्टर जी, कभी कभी उल्टी, पेट दर्द, मसूड़ों व नाक से खून भी निकलता है।
4: अरे वाह, पिंकी तो बड़ी होशियार है।
6: जी हाँ, डेंगू के लक्षणों को पहचाने, अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो तो घबराए नहीं, डॉक्टर की सलाह ले।
7: मच्छर मुक्त हो घर परिवार, डेंगू कर न पाए वार।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब शहरों में पहले से ही कम आफत थी क्या, जो ये डेंगू के मच्छर भी शहर में धावा बोल दिए हैं?
0: अब इसमें मच्छरों का तो कोई दोष नहीं।
1: अजी कैसे नहीं है?
0: अब डेंगू के नर एडिस मच्छर तो बेचारे कहीं भी शांति से रह लें, और ये नर मच्छर डेंगू भी नहीं फैलाते, लेकिन इनकी मादा को शहरी जीवन पसंद है, तो अपनी मादा मच्छर की खुशी के आगे ये नर मच्छर भी हमारी तरह बेबस डरे हुए हैं, क्या करें। और ये डेंगू मादा एडिस के काटने से ही होता है, नर एडिस तो बेचारा।
1: अच्छा बंद भी करो अपने बेचारगी का रोना, और अब देखो कि कैसे डेंगू फैलाने वाली मादा मच्छर का खात्मा भी महिला ही करेगी, तुम पुरुषों से ना होगा, तुम तो बस डरे हुए बेबस बेचारे ही बने रहो।
8: मैम साहब।
1: हाँ आ गई तू। अच्छा चल, आज पूरे घर की सफाई करनी है, ऊपर कबाड़ और रद्दी भी बहुत हो गए हैं।
8: क्या मैम साहब, अचानक से आपको पूरे घर की सफाई का क्या फितूर चढ़ गया?
1: अरे फितूर नहीं, बहुत जरूरी है। वो डेंगू के बारे में सुना ना, डेंगू का बुखार, फैलाने वाले मच्छर इसी कबाड़ में पनपते हैं।
8: पर मैम साहब, इतनी ऊंची ऊंची अलमारी, दो छत्ती में भला हम औरतें कैसे सफाई करेंगी?
1: कर दी ना छोटी बात, आज औरतें चांद पर पहुँच गई है, हवाई जहाज उड़ा रही, और तू अलमारी और दो छत्ती तक पहुँचने से डर रही। और तो और, मच्छर समाज की महिलाएं, मेरा मतलब है मादा मच्छर, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैला रही हैं, तो इनके सफाई के लिए हम महिलाओं को ही तो आगे आना होगा।
8: हाँ सही कहा मैम साहब, वो कहते हैं ना, लोहाई लोहे को काटता है।
1: हाँ एक महिला अगर दूसरे महिला की मदद करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।
8: समझ गई मैम साहब।
1: तो समझ गई तो चल अब शुरू कर। रानी तू भी अपनी नाक और मुंह को इस दुपट्टे से अच्छे से बांध ले, ताकि धूल नाक में ना जाए, नहीं तो ये धूल यहाँ से हटकर फेफड़ों में जमा हो जाएगी और फिर तुझे बीमार कर देगी।
8: सही बोल रही हो मैम साहब, और ये साहब की किताबों में तो बहुत धूल है।
1: ला मुझे दे, मैं पोंछ कर देती हूँ, फिर तू लगा देना।
8: ये पकड़ो मैम साहब। अरे मैम साहब अभी क्या पढ़ने लग गई, मैं कब से खड़ी हूँ इधर, पोंछ के दो ना, जल्दी अलमारी में लगाऊं, अभी बहुत काम बाकी है।
1: हाँ रानी काम तो मुझे भी बहुत करना है, काफी पेंडिंग मामले पड़े हैं इन डायरियों में।
8: क्या बोल रही हो मैम साहब।
1: कुछ नहीं, तू जा मेरे लिए चाय बना ला, बाकी की सफाई हम कल करेंगे।
8: अभी ना मैम साहब, पहले कुछ बोलते हो फिर कुछ बोलती हो, पता नहीं क्या पढ़ने बैठ गई इतनी पुरानी किताबों में, मेरे को

0: क्या है, मैं तो चाय बनाकर चली जाएगी।
1: हाँ ठीक है।
0: मैम साहब आपकी चाय, और अब मेरे को टाइम नहीं, मैं जा रही।
1: हाँ हाँ ठीक है, तू जा। तो ये है डरे हुए बेबस पति की असलियत। आने दो शाम को, खबर लेती हूँ। वे तो अच्छा हुआ आज साफ सफाई करने बैठ गई, तो इनकी इश्क की बीमारी का पता चला, नहीं तो न जाने कब से इश्क फरमा रहे हैं साहब।
2: अरे भगवान, कहाँ हो? और ये क्या, पूरा कमरा बिखरा रखा है?
1: कमरा बिखरा रहने दीजिए, और ये बताइए कि दिल में किसको समेट कर रखा है?
2: क्या क्या मतलब?
1: मतलब तो आप बताइए, इस डायरी में रखे इन प्रेम पत्रों का।
2: कौन सा प्रेम पत्र?
1: आपका चेहरा तो एकदम लाल हो गया, ठीक वैसे ही जैसे डेंगू के मच्छर काटने के बाद लाल लाल चकत्ते उभरते हैं।
2: तुम किसी मादा मच्छर से कम हो क्या जाने मन? तुम भी तो मेरा खून ही पीती हो।
1: अब बातें ना बनाओ, सच सच बताओ, किसको लिखे थे ये सारे प्रेम पत्र?
2: आओ आओ बैठो, बताता हूँ। ये सिर्फ खत नहीं, मेरे दिल के एहसास हैं, मेरे दिल की आवाज है, मेरा प्यार है।
1: वो तो दिख रहा है, आप तो बस इतना बताइए, ये प्यार ये एहसास किसके लिए?
2: उसके लिए जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ।
1: बस बस, मुझे कोयले की तरह जलाइए नहीं, बताइए कौन है वो खुशनसीब सुंदरी?
2: भाई मेरी नजर में तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई हो सकता है क्या?
1: अच्छा ये बात है, लेकिन कहीं ये डरा हुआ पुरुष डर कर तो नहीं बोल रहा?
2: तुम्हें एक राज की बात बताऊं?
1: हे भगवान, कोई और भी राज छुपा रखा है क्या? चलिए अब बता भी दीजिए।
2: तो सुनो, पुरुष कितना भी डरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी अर्धांगनी उसके साथ होती है ना, तो उस वक्त वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है, जैसे कि इस वक्त मैं। और मैं पूरी हिम्मत से कहता हूँ कि ये खत मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं।
1: अच्छा तो ये सारे खत आपने मेरे लिए लिखे थे? मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने ये खत मुझे दिए क्यों नहीं?
2: जाने मन, डर, बस डर के कारण। मुझे डर था कि तुम विश्वास नहीं करोगी, बल्कि तुम मुझ पर शक करोगी, जैसे कि आज कर रही हो।
1: किसी ने सच ही कहा है, शक का कीड़ा रिश्तों के प्यार को खा जाता है। ये मुझसे कितना प्यार करते हैं, और मैं, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना।
2: अब क्या सोचने लगी?
1: यही कि आप सच में मुझे कितना प्यार करते हैं।
2: भाई मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो गणित की भाषा में बताऊँ, शत प्रतिशत सच।
1: फिर तो मैं हर महीने दो महीने में आपकी अलमारी और किताबों की साफ सफाई क्या करूंगी?
2: अरे भाई आज तो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, अब ये मुसीबत हर महीने दो महीने पर खड़ी हो जाएगी।
1: क्या कह रहे हैं?
2: अरे मैं कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत क्यों करनी?
1: देखो जी, वो कहते हैं ना कि जो सोवत है वो खोवत है, इसलिए मुझे आलस नहीं करना। और साफ सफाई के कितने फायदे मिले, डेंगू मलेरिया से मुक्ति मिली, प्यार का खजाना मिला, और साथ ही एक और खजाना मिला।
2: कौन सा खजाना मिला?
1: और आप तो पसीने पसीने हो रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है?
2: अरे नहीं नहीं, ये तो सफाई के साइड इफेक्ट। हाँ तुम बताओ कौन सा खजाना मिला?
1: ये देखिए, ये जो आप जगह जगह पैसे रख कर भूल जाते हैं ना, ये मिला है।
2: हे भगवान, जिससे बचा कर मैं रखता था उसी को मिल गया। किसी ने सही कहा है, पुरुष का भाग्य और स्त्री का दिमाग का पलट जाए भगवान भी नहीं जानते।
1: क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गए?
2: नहीं नहीं, ये तो वो खुशी वाली उदासी है, तुम्हें प्यार और पैसा दोनों मिल गया। सफाई का देखो कमाल,
1: हम हो गए माला माल।

कार्यक्रम आज इतवार है में आज आपने सुनी झलकी सफाई के कमाल, आलेख प्रतिभा त्रिपाठी का था। भाग लेने वाले कलाकार थे वीरेंद्र तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव और आरती यादव। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता थे आतिश कुमार श्रीवास्तव।

0: अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर आज की भेंटवार्ता का विषय है मातृत्व एक अक्षत शक्ति। भेंटवार्ता में शामिल हैं अर्जुन अवार्डी, रचना गोविल, सेवानिवृत्त, कार्यकारी निर्देशक भारतीय खेल प्राधिकरण, और आपसे बातचीत की है डॉक्टर अलका चौधरी ने।
1: अक्षयवट परंपराओं

0: मंत्री ने।
1: अक्षयवट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षयवट।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर अलका चौधरी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का विशेष कार्यक्रम अक्षयवट। दोस्तों, वट वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं उसकी छाया उतनी ही शीतल होती है। हमारे जीवन में ठीक यही स्थान हमारी माँ का है, वो जड़ भी है, आधार भी, और हम सबकी शीतल छांव भी। श्रोताओं, आज मातृ दिवस है, पर क्या माँ को किसी एक दिन के दायरे में बांधा जा सकता है? माँ तो वह अक्षयवट है जो हर मौसम, हर धूप और हर तूफान में परिवार को संभाले रखती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे बीच एक ऐसी सुपर मॉम हैं जिन्होंने मैदान की चुनौतियों को भी जीता और मातृत्व की कोमलता को भी सहेजा। भारत की गौरव, खेल जगत की सशक्त हस्ताक्षर और एक ममता मई माँ, रचना गोविल जी। रचना जी, अक्षयवट की इस विशेष सभा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। रचना जी रिटायर्ड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही हैं और वो एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय शूटर और एथलीट रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी श्रोताओं कि रचना जी को अर्जुन अवार्ड और यश भारती से भी सम्मानित किया जा चुका है। रचना जी, आपको मातृ दिवस की दिली शुभकामनाएं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप अपनी माँ को आज के दिन कैसे याद करती हैं?
3: पहले तो सारे श्रोताओं को हैप्पी मदर्स डे। और आज मैं जो भी हूँ, जो भी मैंने किया है
2: जी,
3: उसमें मेरी माँ का बहुत अहम भूमिका रही है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, करियर के लिए हो
2: जी।
3: और उनकी एक बहुत अच्छी खास बात थी कि वो हम कुछ भी जैसे करना चाहते थे
2: जी जी,
3: तो उन्होंने हमें कभी डिस्करेज नहीं किया।
2: ओके।
3: उन्होंने हमेशा इनकरेज किया और उन्होंने बताया कि हाँ, तुम ये करोगे तो इससे ये नुकसान और ये फायदा है। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने मेरे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ के साथ डाल दी
2: जी,
3: कि तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और पाने के लिए हो सकता है कभी बेइज्जती भी मिले और कभी सक्सेस मिले, तो तुम्हें ये सब झेलना होगा।
2: मतलब तुम्हें दोनों ही अवस्थाओं के लिए तैयार रहना
3: पड़ेगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि घर से जब लड़की उन दिनों, आज से अब आप जो बात करें उन दिनों तो 45 साल हो गए, अब इसको उस समय में 20 साल की थी, तो घर से जब आप बाहर निकलते तो एक तो लड़कियों को निकलने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, और अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती, और घर से निकल करके वो भी स्पोर्ट्स जैसा करियर चुनना
2: बिल्कुल
3: बहुत मुश्किल चीज होती। वो हमेशा, बल्कि कई बार हमने जब कुछ गलत कमेंट किसी से सुना, क्योंकि हर लड़की जो स्पोर्ट्स करती है तो लोग ये सोचते ना, अरे इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, ये लड़कों से बात करती है, उन दिनों तो बात करना भी बहुत गलत माना जाता था। तो मेरी मदर कहती थी हमेशा मुझसे कि इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना कि जिस दिन तुमने कुछ अपनी लाइफ में कर लिया
2: जी,
3: तो तुम्हें दुनिया अप्रिशिएट करेगी, नहीं किया तो तुम्हें क्रिटिसिज्म होगा और उसको फेस करो।
2: मतलब उस जमाने के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत उन्नत सोच थी। आज की माएँ भी मेरे ख्याल से इतनी उन्नत उनकी सोच नहीं है, वो भी चाहती हैं कि मतलब बच्चे जो हैं वो एक ट्रेडिशनल करियर में जाएं, टू बी सेफ, कि मतलब सेफली आप अपना मुकाम हासिल कर लो, एक ठीक ठाक आप अर्न करने लगो, मतलब मदर्स का ये रहता है। लेकिन हर चीज में जिस तरीके से आपकी मदर ने आपका साथ दिया, वाकई काबिले तारीफ है।
3: और जब मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में
2: जी,
3: तो उस समय लखनऊ बहुत छोटा शहर था, 5 किलोमीटर के अंदर लखनऊ खत्म हो जाता था। तो हमारे घर में बहुत चर्चा हुई इस बात पे कि ये लखनऊ से दिल्ली जाएगी नौकरी करने के लिए, तो ऑलरेडी नौकरी करती है, क्यों छोड़ के जाना है। तो मेरी मदर ने इस बात पे मेरा बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, तुम जाओ, फेस द वर्ल्ड, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी हमको बोलना, लेकिन दुनिया के सामने जाओ, लड़ो, करो। तो मुझे शायद उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं घर उन दिनों ना छोड़ती, और वो भी बिल्कुल, हमारे दो भाई हैं, बहुत प्रोटेक्टेड रहे हैं हम
2: जी जी,
3: लेकिन उनके इतना इनकरेज करने पर
2: तभी आपने इतने मुकाम जो हासिल किए हैं, इतने झंडे आपने गाड़ दिए। बहुत अच्छा लगा। मैम, अब हम आपके बेटे के बारे में जानना चाहेंगे।

0: और उन्होंने भी एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है, मुझे जितना पता है। उनको इस मुकाम तक पहुंचाने में आपको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो अपने मातृत्व के सफर के बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए।
1: मेरे हस्बैंड की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मेरा बेटा उस
0: जी
1: समय 5.5 साल का था। मैंने अपने बेटे को जब ब्रॉटअप किया तो कई बार मैं माँ का रोल निभाती थी और कई बार फादर का रोल निभाती थी, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: फादर के जैसे आपको फर्म होना पड़ता है और माँ के जैसे कभी कोमलता भी होनी चाहिए, तो मैं
0: बिल्कुल
1: दोनों
0: बिल्कुल
1: रोल निभाने पड़ते थे। और मैंने भी उसको हमेशा एक टफ लाइफ जीने का एक वो रास्ता दिखाया, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आप धूप में अगर चल सकते हैं
0: जी,
1: तो एसी तो कंफर्टेबल सिचुएशन है ही।
0: सही बात है मैम।
1: तो हमने शुरू से उसको कभी भी इनकरेज नहीं किया कि जैसे कभी स्कूल जाना है तो कार से छोड़ के आए, या उसको जब ट्यूशन करने जाना होता था तो हम कहते थे नहीं तुम पैदल जाओ, वहां से बस लेना और तब जाना। इसलिए नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं, हम इसलिए करते थे कि हम चाहते थे कि जो टफ जिंदगी है ना
0: जी
1: वो
0: उसका
1: बच्चा जरूर जाने कि
0: जी
1: टफनेस क्या होती है लाइफ में। एक और चीज जो मैं हमेशा करती थी, मैं उसको एक हमेशा अपॉर्चुनिटी देती थी कि तुम अपने आप से करो। जो
0: अच्छा
1: अक्सर मैंने देखा था, जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता था काफी अमीर फैमिलीज थी, तो जब कोई प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता था तो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: देखा कि पेरेंट्स जो है बाजार में मिलते हैं प्रोजेक्ट्स, खरीद लाते हैं और फिर उसके बाद बच्चों को फर्स्ट प्राइज भी मिल जाता है,
0: नंबर भी आ जाते हैं।
1: नंबर भी आ जाते हैं। तो कई बार मेरे बच्चे ने मुझे बोला इस बात के लिए कि मैंने तो इतनी मेहनत करी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, पर मैं कहती थी तुमने जो किया है ना मेहनत, तुमने इस मेहनत से सीखा है, यही सीख तुम्हें आगे काम आएगी।
0: सही बात है।
1: और जो औरों के पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो खरीद खरीद के ला रहे हैं, उनका बच्चा सीख नहीं रहा,
0: एक तरीके से वो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद पंगु बना रहे हैं।
1: पंगू बना रहे हैं। तो खुद का करना बहुत जरूरी है,
0: जी
1: तो भले ही कोई बात नहीं तुम आज हारोगे ना लेकिन कल जीतोगे जरूर।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रचना जी, दुनिया आपको एक प्रशासक और एक खेल विशेषज्ञ के रूप में जानती है, लेकिन जब आप घर की दहलीज पार करती हैं तो आपने बताया भी कि आपने मिक्स्ड फॉर्म दिया है, पर ज्यादातर माँ का स्वरूप कैसा होता है और क्या वो कोच वाला अनुशासन मतलब हमेशा आप घर पे रखती हैं या लाड़ प्यार भी चलता है?
1: एक्चुअली देखिए, जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके
0: जी
1: लिए बहुत टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि एक तरफ उनको ऑफिस भी देखना होता है अपना और
0: बिल्कुल
1: दूसरी तरफ अपने बच्चे को भी देखना होता है, तो वो जो क्वालिटी टाइम जो बच्चे को देना चाहिए वो उतना वो दे नहीं पाती है, मैं मानती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं अपने बच्चे को क्रेश से उठाती थी
0: जी
1: और घर लेके जाती थी तब तक वो स्कूटर पे सो जाता था। उन दिन हमारे पास स्कूटर हुआ करती थी तो स्कूटर पे सो जाता था
0: जी जी
1: और 24 घंटे हो जाते थे, हमारी बात ही नहीं होती थी, बच्चा इतना छोटा था। फिर सुबह मैं उठाती थी उसको, बस में बिठाती थी और स्कूल चला जाता था, तो बात ही नहीं हो पाती थी। लेकिन जितना भी टाइम मिलता था
0: जी
1: हम कोशिश करते थे कि मैं उसको क्वालिटी टाइम दूं जितना भी मैं उसको बता सकती हूँ। बल्कि जिस बार मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था शूटिंग में,
0: जी जी
1: तो मेरा बेटा उस समय 7 साल का था, और क्योंकि ऑफिस से कई बार देर हो जाती थी तो हम घर में करीबन जब उसको पढ़ा देते थे, खाना खिला दिया और उसको सोने का टाइम कर दिया, जब उस स्टेज में मैं उसको बोलती थी कि अब तुम कमरे में रहना, अब मैं प्रैक्टिस करूंगी, तो मैंने अपना ड्राइंग रूम से बेडरूम तक एक 10 मीटर का एक बना रखा था,
0: अच्छा
1: तो मैं उसको बोलती थी बाहर मत निकलना क्योंकि अब मैं गोली चला रही हूँ। फिर वो सो जाता था और हम प्रैक्टिस करते थे। और बहुत शैतान भी था, जिस बार नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम शैतानी मत करना क्योंकि मेरा दिमाग भी तुम्हारे में ही लगा रहता है, तो मैं फोकस कैसे करूंगी शूटिंग पे। तो उसने उस हॉल के बाहर, छोटा सा बच्चा उस समय 7 इयर्स का था, वो वहां बैठा रहा 1.5-2 घंटे जितनी देर मेरा मैच चला। और उसने बिल्कुल भी, मतलब उसने बोला भी मुझे कि अम्मा मैं चाहता हूँ कि तुम ना आज कुछ अच्छा करना, अच्छा स्कोर लेके आना। तो मैंने कहा तो तुम शैतानी मत करना। और वो वहां पे बैठा रहा और मैंने जब मैच खत्म किया और मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया तो मैंने कहा देख लो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, तुमने किया मेरे लिए सब कुछ
0: क्या
1: ये।
0: बात है।
1: और उसके बाद फिर मैंने उसको शूटिंग कराई जब वो
0: अच्छा
1: थोड़ा बड़ा हो गया। तो कई बार लोगों का कहना होता था कि मदर्स जो है ना, वही जो लाड़ प्यार वाला होता
0: जी
1: है, कि
0: जी
1: मदर्स जो अपने बच्चे को जाके बैठ जाती हैं और फिर बच्चे का दिमाग हट जाता है या उसके ऊपर प्रेशर बहुत डाल देती हैं कि तुमने अच्छा क्यों नहीं किया, लोग कहते थे कि आप मत बैठिए पास में। मैंने कहा देखिए जितनी देर मैं घर में होती हूँ मैं उसकी माँ हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं उसकी टीचर होती हूँ, और अभी मैं उसको शूटिंग करा रही हूँ तो मैं उसकी कोच हूँ, तो मैं एज ए कोच उसको यहाँ पे बता रही हूँ। कई बार मदर्स ऐसा करती है, बच्चा, और ये बहुत जनरल बात है,

0: अगर आप देखिए बच्चे ने अच्छा
1: जी
0: नहीं किया,
1: जी जी
0: हम तुरंत अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करते हैं, देखो उनका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, और हम जब उसको शूटिंग करते हैं तो हम उसको, जब उसका शॉट खराब होता था तो हम उसको इशारे से बताते थे कि तुम अभी डीप ब्रीदिंग कर लो, या बैठ जाओ आराम कर लो, या हाथ को मसाज कर लो, इससे की चीजें मैं उसको इशारे से, हम कभी नहीं हमने उसको बोला कि ये क्या किया, ये कभी नहीं बच्चों को करना चाहिए। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है।
1: जी
0: बल्कि एक इंटरव्यू में उससे पूछा भी क्या, तो उसने बोला, और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, तो उसने बोला कि मेरी मदर ने कभी भी, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो और
1: जी
0: चाहे स्पोर्ट्स हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें नंबर खराब क्यों आए। कहने लगा हमेशा वो मुझे ये दिखाती हैं कि तुमको देखो इतने नंबर मिले, अगर तुमने ये गलती नहीं की, या तुम्हें इतना स्कोर आया शूटिंग में, तुमने अगर ये गलती नहीं की होती तो तुम्हारा इतना स्कोर आता। ये मैंने कभी भी अपने बेटे को कभी नहीं कहा। मैं बल्कि पेरेंट्स को ये बात बोलना चाहूंगी,
1: जी
0: अपने बच्चे को कभी कंपेयर मत करिए, किसी से भी मत करिए,
1: जी जी
0: और उस बच्चे को एक ओपन फील्ड दीजिए करने के लिए, उसको डिस्करेज मत करो, क्योंकि हर एक का अपना टैलेंट है। कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है,
1: जी
0: आप डॉक्टर है, मैं तो डॉक्टर नहीं
1: जी
0: हूं और मैं शायद नहीं बन पाती कभी भी, या मेरा बेटा इंजीनियरिंग किया
1: जी
0: तो मेरा तो मैथ्स में इतना तेज दिमाग नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती। तो आई
1: जी
0: थिंक हमें कभी भी इम्पोज नहीं करना चाहिए कुछ भी।
1: अभी आपके जो बेटे हैं वो कहाँ पे और क्या कर रहे हैं?
0: मेरे बेटे जर्मनी में फार्मास्यूटिकल कंपनी में है वो।
1: जी मैम, आपने अपने बेटे की परवरिश के दौरान उन्हें सफलता और हार को संभालने का पाठ कैसे पढ़ाया?
0: मेरे लिए चीज थोड़ी डिफिकल्ट थी,
1: जी
0: और वो डिफिकल्ट इसलिए थी कि मैं ऑलरेडी एक अचीवर थी,
1: जी
0: तो बच्चा जो है जब वो ये देखता है मेरी माँ एक अचीवर है, मैं कैसे हार जाऊं,
1: बिल्कुल
0: बच्चों की साइकोलॉजी होती है
1: जी
0: वो।
1: जी
0: तो मैंने देखा कि वो स्कूल में तो रूटीन में जा रहे हो, पढ़ने कर रहे हो, लेकिन स्पोर्ट्स में मैंने देखा कि वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि ये क्यों नहीं करना चाहते हो। बहुत मुश्किल से उसने दबी जबान में या इनडायरेक्टली मुझे ये पता चल गया कि इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं जीतती हूं और ये इसको हार मंजूर नहीं होगी, मैं हार गया।
1: हाँ
0: मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा तुम अगर ट्रैक पे खड़े हो, एक ट्रैक पे 8 लेन होती हैं, और उस 8 में तुम अगर 8th आते हो लास्ट, तो कम से कम तुम ये कह सकते हो मैं अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया, मैं 8th था। लेकिन तुम अगर भीड़ में खड़े हो, और खड़े हो तो भीड़ में तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, तुम भी खड़े हुए हो, कम से कम कुछ तो करो ऐसा कि तुम 8th नहीं 16th आए, 20th आए,
1: जी जी
0: आए ना कुछ, उस भीड़ में तो नहीं थे ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो कभी ये मत सोचो कि तुम्हें फर्स्ट आना है, हमेशा ये सोचो कि मुझे कुछ करना है और एक बहुत बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में मुझे कहीं पे खड़ा होना है,
1: क्या
0: वो
1: बात है
0: पहली जगह भी हो सकती है।
1: जी जी
0: और अगर मैं कहती हूँ 50 लोग की भीड़ और तुम 50th पोजीशन पे खड़े हो तो वो भी अच्छा है, पर लाखों की भीड़ में 50 तो हो ना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हमेशा ये टॉप पे जाने का मत सोचो, पर
1: जी
0: एक अटेम्प्ट हमेशा करते रहो। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर आप अटेम्प्ट करोगे, आप मेहनत करोगे, आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे जरूर।
1: सही बात है मैम। आज के बच्चे डिजिटल दुनिया में बहुत ज्यादा खोए हुए हैं मैम, तो एक माँ के तौर पर आप बच्चों और प्रकृति या खेलों के बीच उस लुप्त होते रिश्ते को कैसे देखती हैं? और आपने अपने बेटे को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या कुछ विशेष प्रयास किए थे?
0: ये तो बहुत आपने अच्छा सवाल किया है कि विशेष प्रयास किए
1: जी
0: थे, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है आजकल क्या हो गया, बहुत जॉइंट फैमिलीज इतनी नहीं रहती हैं, हम लोग अलग अलग सब रहने लग गए हैं, तो बच्चे कल्चर नहीं सीखते।
1: जी जी
0: मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि हमें बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने देना चाहिए।
1: जी जी
0: जब हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो
1: जी
0: बच्चा देखते देखते सीखता है, लेकिन जैसे हमारे केस में हमने अपने बच्चों को सिखाया
1: जी
0: कि ये तुम्हारे मामा है, इनके पैर छू, क्योंकि उसने देखा नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत यंग थी जब उनकी डेथ हो गई, तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 28 साल की थी, मदर की डेथ हुई तो मैं 33 ईयर्स की थी, तो बहुत जल्दी खो दिया, तो नेचुरली बेटे को मौका नहीं मिला। पर हमें ये चीज सिखानी चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि ये हमारे बहुत स्ट्रांग कल्चरल बैकग्राउंड है, और यही चीजें जो हमें जोड़ के रखती हैं जब हम
1: जी
0: एक दूसरे का पैर छूते हैं। बट ओवरऑल अब जो सिचुएशन हो गई है,
1: जी
0: अब सिचुएशन में एक बहुत खराबी भी आ गई है, पॉजिटिव भी है
1: जी
0: नेगेटिव भी
1: जी
0: है, कि बच्चे अब बहुत ही ज्यादा डिजिटल दुनिया में खोए हुए होते हैं। कई बार
1: बिल्कुल
0: मैं बहुत सारी फैमिलीज को देखती हूँ कि एक ही घर होगा, 5 लोग बैठे होंगे और सब
1: सब
0: अपने मोबाइल में बिजी होते हैं,
1: बिल्कुल
0: एंड आई रियली वंडर।

0: कि हम क्या कर रहे हैं इस जनरेशन के साथ और हम अपनों के साथ भी क्या कर रहे हैं।
1: सही बात है।
0: हम जाते हैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन वहां पे भी हम देख रहे होते हैं व्हाट्सएप में क्या लिखा है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों गए हम मिलने के लिए।
1: सही बात है।
0: तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एज अ पेरेंट बहुत स्ट्रांग रोल हमें प्ले करना पड़ेगा बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी, कितनी देर वो स्क्रीन को देखता है। और अगर हमने मानिए उसको स्पोर्ट्स या कोई भी आर्ट रिलेटेड कोई भी साधना जिसमें साधना होती है, चाहे म्यूजिक हो, अगर हम बच्चे को इन चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है
1: जी,
0: कि जैसे अभी मैं शूटिंग सिखाती हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चों का पढ़ाई पे बहुत असर पड़ गया, अच्छा करने लग गए, ये मुझे टीचर्स ने भी बताया।
1: जी, जी, जी, क्योंकि फोकस,
0: हाँ फोकस आ जाता है, आप डेडिकेटेड होना शुरू हो जाते हैं जब आपके खून में फोकस डेडिकेशन आने लग जाता है ना, वो आप अपनी लाइफ की हर एक चीज में आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हाल में अभी मैं अपने बेटे के पास ही थी तो वो अभी भी मुझसे बोलता है कि मैं कुछ भी करती हूँ ना मैं पूरे डेडिकेटेड एफर्ट से करती हूँ। तो ही सेज कि अम्मा तुम्हारा अभी भी आदत नहीं गया डेडिकेटेड होने। तो हमको लगता
1: है कि पर्सनैलिटी में शामिल है डेडिकेटेड होना।
0: तो आप बच्चों को इतना लगा के रखिए कि वो उनके खून में आ जाए, उनके जहन में अच्छे से बैठ जाए, आपको कहने की जरूरत ना पड़े, वो खुद अपने आप से कर रहा है। वो सोते जागते भी अगर वो मानिए एक म्यूजिक सीख रहा है या पेंटिंग सीख रहा है अदर देन पढ़ाई
1: जी,
0: या स्पोर्ट्स कर रहा है, तो वो बच्चा चलते फिरते भी उसके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा मैं उस शेड को अगर ऐसे डालूंगा तो क्या होगा, या म्यूजिक कर रहा है तो हम इस लय पे जाएंगे तो क्या होगा।
1: हम चलते चलते आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे वरिष्ठ श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं खुद अपनी एज बता देती हूँ, मैं अभी 64 इयर्स की हूँ।
1: और आपकी त्वचा से बिल्कुल आपकी उम्र का पता नहीं चलता।
0: और मैं रोज 1 घंटा वॉक करती हूँ।
1: क्या बात
0: मैं
1: है?
0: जिम जाती हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, और मैं जितने भी हमारे साथी हैं जो हमसे एजेड हैं या हमारे बराबर के हैं
1: जी,
0: और स्पेशली वुमन
1: जी,
0: मैं सबको ये बोलूंगी कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं
1: जी,
0: आप घर का काम जरूर करिए
1: जी,
0: ताकि जैसे आपके फिंगर्स चलती रहें, आप जब कुछ उठाएंगे तो आप थोड़ी ताकत आती रहेगी। और कभी भी मतलब फिटनेस बहुत जरूरी है, खास तौर से अगर आपने ग्रैंड चिल्ड्रन का कहते ना खुशी पाना चाहते हैं
1: जी जी,
0: तो आप अपने आप को जितना फिट रखोगे, जितना आप हेल्दी रहोगे, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उतना ही आप एंजॉय कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: मेरा ग्रैंड चाइल्ड अभी मुझसे कंपटीशन कर रहा था सिटअप्स लगाने के।
1: क्या बात है।
0: तो वो 5 साल का है और मैं 64 की हूँ, और उसको ये लगता है कोई नहीं कर सकता है, दादी करेंगी। और मतलब वो एक्सरसाइज मुझे स्कूल में जो एक्सरसाइज सीखेगा तो वो मुझे आके बताता है, उसको लगता है कि दादी समझती भी है एक्सरसाइज, करती भी है
1: और मेरे साथ कॉम्पीट भी करती है।
0: कॉम्पीट भी करती है। तो आई विल टेल टू ऑल दी ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली एंड ऑल दी एजेड पीपल कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि विद दी एज हमारा दिमाग भी थोड़ा कम काम करता है, हम मानते ही सब विद दी एज होता है
1: जी जी।
0: लेकिन अगर हम उसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज वॉक ये सब बहुत जरूरी है। आप स्लो चलो लेकिन चलो जरूर।
1: जी बहुत बढ़िया। और आज का जो आपसे बातचीत रही वो किसी पेरेंटिंग की कार्यशाला से कम नहीं थी मैम, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपसे आज, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ी और आपने आकाशवाणी को अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। ऊंचाइयों के हर शिखर पर नाम तुम्हारा है, ये सच है माँ कि हमें तेरा ही सहारा है, थक कर जब भी हम दुनिया की धूप से लौटे तेरे आंचल का अक्षयवट ही सबसे ठंडा किनारा है, तूने सींचा है हमें अपनी रातों की नींद देकर, तेरे आशीर्वाद से ही चमका हमारा हर सितारा है। आज अक्षयवट सुनने वाली हर माँ को, उनकी अटूट शक्ति को और उनके निस्वार्थ प्रेम को हमारा शत शत नमन। आप हैं तो घर में रौनक है, आप हैं तो हम हैं। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखिएगा। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम ने यकीनन आपकी पुरानी यादों को ताजा किया होगा। हमें बताइएगा कि आपको रचना गोविल जी से की गई ये बातचीत कैसी लगी। हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम अक्षयवट द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं pkldlko@gmail.com पर। आपकी हर चिट्ठी का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलते चलते

0: हैप्पी मदर्स डे आप सबको। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अक्षयवट की इसी शीतल छांव में। डॉक्टर अलका चौधरी का नमस्कार।
1: अक्षयवट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षयवट।
2: कार्यक्रम अक्षयवट में आज आपने मातृत्व एक अक्षत शक्ति विषय पर अर्जुन अवार्डी रचना गोविल से भेंटवार्ता सुनी। भेंटकर्ता थीं डॉक्टर अलका चौधरी।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये प्रोग्राम हमारा ईमेल और पत्र अनुरोध पर आधारित होता है।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जवानों के लिए में। फौजी भाइयों जय हिंद। स्वीकार करिए सुमैया सईद का नमस्कार। कार्यक्रम में पहला ईमेल हमें आया है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। ईमेल भेजने वाले हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रचना, वंदना, प्रिया और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आप सभी ने फरमाइश भेजी है सुनने के लिए फिल्म माँ से इस गाने को, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद अजीज़ ने, बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

प्रोग्राम में अगला ईमेल हमने शामिल करा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, चंडीगढ़ से। और आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है सुनने के लिए फ़िल्म परिणीता का ये गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरी ने और संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।

प्रोग्राम में अगला ईमेल आया है हमें। पीएस नहावकर, निर्मला विशाल, नारायण, राजकुमार, आशीष, इन सब का, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से। और आप सभी ने फरमाइश भेजी है फिल्म राजा और रंक, इस फिल्म के गाने की लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

प्रोग्राम में अगला ईमेल हमें आया है ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू भानु, राम शंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, मिर्ज़ा तुराब बेग, रिजवान भाई, और आप सभी ने फरमाइश भेजी है फिल्म छोटा भाई से लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गाने की।

प्रोग्राम में आखिरी ईमेल हमने शामिल किया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा का, और आपने फरमाइश भेजी है फिल्म जानवर से इस गाने की, जिसे आवाज़ दी है सुनिधि चौहान और अलका याग्निक ने।

इस आखिरी गीत के साथ ही कार्यक्रम जवानों के लिए अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फौजी भाइयों, जय हिंद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं और अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान

0: ओपन चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर

0: सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम के तहत सुनिए भिंडी की फसल में कीट रोग प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष कुमार पांडे और आपसे बातचीत की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जायद सब्जियों में भिंडी की फसल आपके खेत में खड़ी है। अलग अलग स्थिति है, जहां अगेती बुआई किया है आपने, फलत बाजार में जा रही है, कहीं कहीं पिछेती भी बुआई किया है आपने, तो अभी फसल बढ़वार की अवस्था में है। जहां भी भिंडी की फसल आपके खेत में है तो फसल सुरक्षा में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा से वैज्ञानिक पौध रक्षा डॉक्टर आशीष कुमार पांडे साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि भिंडी की फसल

0: फसल इस समय खेत में है तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
1: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। इस समय फसल तैयारी की तरफ है, तुड़ाई भी चल रही है, साथ ही साथ मौसम को देखते हुए विभिन्न तरह के कीट जिनमें माहू, जैसिड, सफ़ेद मक्खी, तना छेदक, फली छेदक अन्य का आक्रमण होता है, साथ ही साथ कई तरह के रोग जैसे पीत शिरा मोजैक वायरस, चूर्ण लास्ता, आद्र गलन एवं सूत्रकृमि का भी इसमें प्रकोप देखा जाता है। उसी पर यदि हम लगातार अपने खेत की निगरानी रखते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि कौन सा कीट किस समय हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है या प्राथमिक अवस्था में है। जब शुरुआती स्थिति होती है तो हमको आसानी होती है और कम खर्च में हम नियंत्रण कर पाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो रस चूसक कीट हैं जैसे जैसिड है, सफ़ेद मक्खी है, माहू है, तो उसकी पहचान करें कैसे किसान भाई बहन की रस चूसने वाले कीट, और वो पौधे पर होंगे कहाँ?
1: रस चूसक कीट

0: अवस्था में है। जब शुरुआती स्थिति होती है तो हमको आसानी होती है और कम खर्च में हम नियंत्रण कर पाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो रस चूसक कीट हैं, जैसे जैसी ढेर सफ़ेद मक्खी है, माहू है, तो उसकी पहचान करें कैसे किसान भाई बहन की रस चूसने वाले कीट, और वो पौधे पर होंगे कहाँ?
0: रस चूसक कीट अंडे पत्तियों के नीचे और जो कीट होते हैं वो ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्यतः ये शाम के समय ही दिखाई देंगे। किसान भाई शाम के समय पत्तियों को उलट पलट कर देखेंगे और या फिर हिलाएंगे जब पौधों को, तो वो उड़ते हुए प्रतीत होंगे।
1: तो इनका नुकसान का स्तर कैसे पता करें किसान भाई बहन?
0: इनका नुकसान का स्तर पुरानी पत्तियों की संख्या 30% से अधिक अगर कटी हुई है या सूख रही है तो क्षति स्तर का आकलन कर सकते हैं।
1: अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो प्रबंधन कैसे हो?
0: यदि नुकसान का स्तर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर जा रहा है तो प्राकृतिक कुछ दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा रासायनिक दवाओं का उपयोग करेंगे।
1: जैसे
0: प्राकृतिक रूप में नीमाल की 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय छिड़काव कर सकते हैं।
1: और स्टिकर भी मिला लें?
0: स्टिकर मिला लें या शैम्पू भी आप मिला सकते हैं।
1: अगर कोई रसायन का प्रयोग करना है तो?
0: यदि रसायन का प्रयोग करना है तो आसानी से उपलब्ध होने वाले रसायनों में 15 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ 10% SP का भी साथ में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है।
1: यानी 15 लीटर पानी में 10 ml इमिडाक्लोप्रिड
0: जी
1: और 10 ग्राम एस्टामिप्रिड
0: जी
1: मिला दें तो जहां भी रस चूसक कीट हैं उनका प्रबंधन
0: किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, तना और फली छेदक कीट की भी समस्या रहती है जब फल आते हैं और खड़ी फसल में तने में भी लगते हैं?
0: तना और फली ये जब तैयार हो रही होती है फसल उस समय इसका अटैक होता है और ये काफी क्षति पहुंचाती है किसानों को। इसके लिए भी शुरुआती दशा में तो नीम आयल का ही उपयोग करेंगे, 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे, वो 7-7 दिन पर आप कर सकते हैं। अन्यथा साइपरमेथ्रिन का उपयोग भी किया जा सकता है। इसमें
1: कितनी मात्रा? कितनी
0: साइपरमेथ्रिन 25 EC 200 ग्राम सक्रिय तत्व का उपयोग प्रति हेक्टेयर में कर सकते हैं,
1: यानी 80 ग्राम प्रति एकड़
0: जी,
1: लगभग 150-200 लीटर पानी में मिलाकर
0: पानी में करेंगे।
1: और अगर पर लीटर बात करें तो?
0: प्रति लीटर 2 ग्राम का उपयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैविक उपायों की भी चर्चा हो जाए, क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसका उपयोग उपभोक्ता करते हैं, तो कम से कम रसायनों का प्रयोग करें, तो इसके लिए और कौन कौन से? नीम का तेल तो है ही है जैविक उपाय, कुछ ट्रैप्स भी हो सकते हैं क्या?
0: जैविक एवं प्राकृतिक उपायों में भिंडी के लिए सबसे अच्छा है कि उसमें येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, साथ ही साथ जो इल्लियां तैयार होती हैं उनके लिए चिड़िया बैठने की जगह भी बनाते हैं, टी लगा देते हैं, इस तरीके से उनका आवास देंगे,
1: बर्ड पर्चर
0: लगा देंगे तो उससे भी नियंत्रण आसान हो जाता है।
1: तो फसल की ऊंचाई से कितनी ऊंचाई पे टी आकार का डंडा गाड़ें किसान भाई बहन?
0: फसल से 4 फीट के आसपास पे टी आकार का डंडा गाड़ते हैं, 1 से 2 फीट ऊपर होनी चाहिए
1: ताकि वहां से कीड़े दिखाई,
0: ज्यादा दूरी वो देख सकें और कीड़े को पकड़ के वो अपना आहार में तब्दील करें।
1: और जो पीला चिपचिपा प्रपंच, उसको क्या घर पर भी बना सकते हैं क्या?
0: हाँ, अगर किसान भाई घर पे बनाना चाहें तो पीला पेपर लेकर उस पे ग्रीस या चिपचिपा पदार्थ लगाकर उसको तैयार कर सकते हैं, उसको हर 7 से 8 दिन पर बदलना होगा और वो आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: तो एकड़ में कितना पीला चिपचिपा वाला कार्ड लगाएं पूरे खेत में?
0: 10 से 15 चिपचिपा कार्ड लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बीमारियों की बात करें तो पीला सिरा मोजैक रोग की समस्या आती है ज्यादातर?
0: सबसे ज्यादा प्रभावित फसल जो होती है वो पीला सिरा मोजैक से ही होती है और इसके आने के उपरांत इसका नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है
1: जी।
0: और इसका जो लक्षण है वो शुरुआत में पत्तियों की नसों में पीलापन दिखाई देता है, धीरे धीरे पूरी पत्ती पर आता है, पौधे पर आता है और फली के साथ साथ पूरा पौधा प्रभावित हो जाता है, फिर उसमें ना फूल ठीक से लगते हैं और ना ही फली आती है।
1: तो इसका वाहक कीट है कौन?
0: इसका वाहक कीट सफ़ेद मक्खी है जो कि शाम के समय अगर ध्यान से देखा जाए तो दिखाई देती है और वाहक कीट का ही नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है।
1: और है विषाणु जनित?
0: हाँ, वो जो है वो वायरस है और वायरस एक बार अगर आ गया फसल में, जिस पौधे में आ जाएगा, तो उसको उखाड़कर अलग कर देना, जला देना ही उसका फिर समाधान रह जाता है
1: शुरुआती दौर में। लेकिन अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो प्रबंधन हो कैसे?
0: नुकसान का स्तर अगर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए फिर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं वायरस में, क्योंकि शुरुआत में, इसीलिए किसानों को सलाह

0: दी जाती है कि वो अपने खेत का लगातार अवलोकन करते रहें।
1: यानी सफेद मक्खी और रस चूसक कीटों का प्रबंधन ही पीला सिरा मोज़ेक रोग का प्रबंधन है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसके लिए करें क्या?
0: जब आपकी भिंडी में फूल आने शुरू हो जाए
1: जी,
0: उसके बाद से ही आपको इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव
1: कितने दिन के अंतराल पर?
0: हर 15 दिन के अंतराल पर इमिडाक्लोप्रिड की 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जहां सब्जियों की खेती लगातार हो रही है वहां सूत्रकृमि की समस्या खासकर के भिंडी में भी आ रही है।
0: जी बिल्कुल, सूत्रकृमि पर्याप्त मात्रा में भिंडी में दिखाई देता है, जिसके लक्षण हैं कि उनकी जड़ों में गांठें बनने लगती हैं।
1: हाँ।
0: और पौधे की बढ़वार और उसकी जो उपज है वो प्रभावित होती है। यदि किसान को पहले से पता है कि इसमें सूत्रकृमि का पिछले वर्ष हुआ है अटैक, तो भिंडी उसमें ना बो, उसमें फसल चक्र का उपयोग करें जिसमें मक्का और गेंदे की फसल लें। गेंदे की फसल से उनमें जहरीला प्रभाव जाता है। अगर बुआई कर दी है या करने जा रहे हैं तो सोलराइजेशन भी एक अच्छी प्रक्रिया है जो सूत्रकृमि को,
1: यानी गर्मी में गहरी जुताई और
0: हाँ
1: तापीकरण
0: कर
1: सौरीकरण
0: सौरीकरण एक पॉलीथीन शीट चढ़ा देते हैं मई जून के महीने में, और उससे इनके जो जनरेशन है वो चेक हो जाती है।
1: क्या नीम की खली का उपयोग भी फायदेमंद होगा?
0: नीम की खली का उपयोग बहुत ही अच्छा रहता है, इनकी पॉपुलेशन को वो कम करता है। 500 kg आपकी नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से,
1: यानी एकड़ में 2 क्विंटल नीम की खली मिला दें तो सूत्रकृमि का प्रबंधन हो जाएगा,
0: पॉपुलेशन कम हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे भिंडी की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 9450 70 17 03, 9450 70 17 03, 9450 70 17 03।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का भिंडी की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाई जब भी भिंडी की खेती करें तो उसके अंदर गेंदे की खेती जरूर करें। मध्य गेंदा अगर लगाते हैं तो वायरस जनित रोगों से, कीटों से और खासकर नेमेटोड से सुरक्षा मिलती है, तो गेंदे की फसल अंतःसस्यन के रूप में जरूर लें।
1: डॉक्टर आशीष कुमार पांडे साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और भिंडी की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम विज्ञान और किसान में आज आपने डॉक्टर आशीष कुमार पांडे से भिंडी की फसल में कीट रोग प्रबंधन पर जानकारी प्राप्त की। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कार्यक्रम विज्ञान और किसान अब यहीं समाप्त होता है।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTU-UP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। अजय कश्यप, थाना नाका हिंदोला, जनपद लखनऊ से हमें सूचित करते हैं कि रिचा उर्फ बबली दिनांक 24 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। रिचा की आयु 35 वर्ष

लंबाई लगभग 5 फीट, चेहरा गोल और रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9319120663। कृपया नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9319120663।

0: तस्नीम निवासी मौला बख्श कॉलोनी थाना सलोन रायबरेली से हमें सूचित करती हैं कि नूरे अरम, जिनकी आयु 24 वर्ष है, ऊंचाई 5 फुट, चेहरा गोल और आंखें काली हैं, वो दिनांक 20 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। घटना के समय नूरे अरम ने कत्थई रंग का सूट, सफ़ेद सलवार, सफ़ेद जूता पहना हुआ था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8874730917। कृपया नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8874730917। इनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप इस पते पर भी सूचित कर सकते हैं। पता है राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश महानगर लखनऊ। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब यहीं समाप्त होती हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी, जिसके तहत लीजिए सुनिए अवधी लोकगीत। हमारी आज की कलाकार हैं रेनू शर्मा। पहले लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये खेमटा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के तीन बज रहे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में पहला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से अदनान सामी की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं संदीप श्रीवास्तव ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

प्रोग्राम में ये अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चलते चलते से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम में अगला गाना लीजिए, सुनिए फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत जतिन ललित का है।

0: इस आखिरी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं संपन्न होता है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:15 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संस्कृत कार्यक्रम, जिसमें आज की वार्ता का विषय है रामायण आयुर्वेदा। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रेरणा माथुर।
2: मम नाम डॉक्टर प्रेरणा माथुर, अध्यक्षा प्राच्य संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। अद्य मम वार्तायाः विषयः रामायणे आयुर्वेदः। वाल्मीकि रामायणं भारतीय संस्कृतेः एकः महत्वपूर्णः ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे आयुर्वेदस्य विविधः पक्षः वर्णितः। आयुर्वेदः एका प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतिः, यः स्वास्थ्यं कल्याणाय च एकं समग्रं दृष्टिकोणं प्रददाति। वाल्मीकि रामायणे आयुर्वेदस्य विविधः पक्षः वर्णितः। आयुर्वेदः एकः पुण्यतमः वेदः। चरकसंहितानुसारेण तस्य आयुषो पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्षते यन मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम्। सुश्रुत, चरक, काश्यप, वाग्भट प्रवतयः आचार्यानुसारेण आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदः। ते कथयन्ति सुश्रुत संहितानुसारेण इहि खल्वायुर्वेद मष्टांगमुपांग मथर्ववेदस्य। अष्टांग संग्रहानुसारेण आयुषः पालनम् वेदमुपेद मथर्वणः। आयुर्वेदस्य विषये कथनमस्ति आयुर्वेदः पञ्चमो वेदः, आयुर्वेदः पूर्णतमः वेदः, आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदः, आयुर्वेदः स्वतः

0: अभी आपने संस्कृत कार्यक्रम में रामायणे आयुर्वेदः विषय पर डॉक्टर प्रेरणा माथुर की वार्ता सुनी। इसी के साथ संस्कृत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय है कैसा हो हमारा आहार और कैसी हो हमारी थाली। विशेषज्ञ हैं KGMU लखनऊ की वरिष्ठ डाइटिशियन सुश्री मृदुल विभा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुभाष खन्ना।

0: अब सुनिए हमारा आज का ये कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों, हम शायद एक अवधारणा बनाते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा भोजन कर लिया, हमने बहुत तला भुना खा लिया, अच्छी पौष्टिक सब्जियां खा ली, हमें लगता है कि शायद हमारा जो आहार है वो संतुलित है। पर बहुत बार वो संतुलित नहीं होता और उससे फैट बढ़ने लगता है हमारा, या हमारा कार्बोहाइड्रेट बढ़ने लगता है, या हम अस्वस्थ होने की श्रेणी में जाने लगते हैं। अब हम कैसे जाने कि हमारा जो भोजन है वो संतुलित है, या हम कैसे जाने कि हमारा भोजन किस प्रकार संतुलित होना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, उम्र के अनुरूप भी क्या आहार में परिवर्तन होते हैं, हमारे काम के अनुरूप भी क्या हमारे आहार में परिवर्तन होते हैं, ढेर सारी ऐसी बातें हैं। और कई बार तो कई ऐसे भ्रम भी हैं जिनकी वजह से जो हमारी डाइट है वो ठीक नहीं होती, हम स्वस्थ होने का दावा करते हैं पर होते नहीं है। अब ये ढेर

0: ये बातें हम जानेंगे किससे, इसके लिए जरूरी है कि हम किसी ऐसे विशेषज्ञ से बात करें। और आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं KGMU की सीनियर डाइटिशियन मृदुल विभा, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: हम सर्वप्रथम ये अवधारणा पाली रहते हैं कि शायद हमने बहुत अच्छा, बहुत तला भुना खा लिया है या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा लिया है, शायद वो संतुलित है।
1: देखिए क्या होता है, भोजन संतुलित तभी होता है जब उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं।
0: जी,
1: पोषक तत्व का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, यहाँ तक कि वाटर।

0: संतुलित तभी होता है जब उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं।
1: जी
0: पोषक तत्व का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, यहाँ तक कि वाटर। और अगर ये अवधारणा है कि हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है,
1: जी
0: तो ऐसा वो संतुलित आहार में नहीं आता है। क्योंकि संतुलित का मतलब ही ये है कि संतुलन, मतलब सारे पोषक तत्वों का समावेश उसमें होना चाहिए।
1: जी
0: तो एक संतुलित आहार आप ऐसे, एक तो एज के अकॉर्डिंग हर आहार अलग अलग होता है, यंग में अलग है, हार्ड वर्क जो कर रहे हैं उनका अलग है, प्रेग्नेंट वुमेन का अलग है, तो आहार भी अलग अलग तरीके से लिया जाना चाहिए। और जो सेडेंट्री वर्कर्स हैं, बैठ के काम करते हैं, उनका आहार बिल्कुल अलग होता है। तो अगर हम शुरुआत करें कि एक अच्छा ब्रेकफास्ट कैसा होता है,
1: जी
0: तो एनर्जी से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर ऐसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सुबह पराठा सब्जी या फिर कुछ तला हुआ खा लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको दिन भर एनर्जी दे। तो कोशिश करिए कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे कि मिलेट्स शामिल कर सकते हैं, सीड्स शामिल कर सकते हैं,
1: जी
0: और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ हैं जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सभी चीज़ें रहती हैं। तो लेकिन हाँ, आपको एज के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई डिजीज़ है, अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक ब्रेकफास्ट लेना होगा।
1: ब्रेकफास्ट के जिक्र में ही हम, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 5 से 12 साल का है, या वो कोई युवावस्था में है, या वो वृद्धावस्था में, या एबव 40 है, तो नाश्ते का प्रकार क्या होगा और क्या क्या लेना चाहिए?
0: देखिए, अगर आप 40 की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन उसकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन में आप क्या, मिलेट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, मिलेट्स शामिल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो
1: जी
0: एग ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर है, टोफू है, इस तरह की चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि हर चीज़ एक संतुलित मात्रा में हो, कि जैसे आपने मिलेट्स लिया, साथ में एक एग ले लिया, कुछ
1: जी
0: फ्रूट्स ले लिए, तो ये एक संतुलित नाश्ते में आ जाएगा।
1: बच्चे का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि उस बच्चे का
0: बच्चे
1: क्या
0: के
1: होना
0: लिए अगर आप
1: चाहिए?
0: मॉर्निंग में बना रहे हैं तो मीठा दलिया ले सकते हैं, या सूजी का उपमा बना सकते हैं, या एक हेल्दी सैंडविच बना सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों को खिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप अगर आप सैंडविच बना रहे हैं तो उसमें आप पनीर यूज़ कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ जिस तरह की खीरा है या फिर गाजर है, इस तरह का बनाएं जिससे कि वो लोग भी इंटरेस्ट लेके खाएं और उनको सारे पोषक तत्व मिलें।
1: दोपहर के भोजन का जो सबसे संक्रमणकालीन समय होता है, कि जब बहुत बार हम ऑफिस जाते हैं या कोई श्रमिक कहीं बाहर काम कर रहा होता है, कई बार वो जो भोजन का अनुरूप है कि दाल चावल रोटी सब्जी सब नहीं खा पाता, क्या भोजन का अनुरूपण क्या होना चाहिए, और अगर हम कम ले रहे हैं तो उसे कैसे संतुलित करें?
0: देखिए, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको प्री प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है कि अगर आपने नहीं खाया, लेकिन अगर जब डेली आप जा रहे हैं तो
1: जी
0: आपको पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा। आपका लंच इस तरह हो, आप दाल चावल नहीं शामिल कर सकते, लेकिन प्रोटीन के और भी बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, या फिर कोई सैलड बना के ले जा सकते हैं अपने साथ में। मट्ठा गर्मियों का अमृत है, मट्ठे में अच्छा खासा आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपको कूलिंग इफेक्ट भी देगा। और सत्तू, सत्तू के बारे में तो सभी जानते हैं कि सत्तू आप शामिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दाल चावल रोटी सब्जी ही ले जाएं, कई बार ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं होता या फिर हमें टाइम नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ रखें कि जो आप इजिली ले जा सकें।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप सत्तू भरा पराठा ले सकते हैं, या सत्तू भरी रोटी ले सकते हैं, कोई अच्छी सी सब्जी ले सकते हैं, सैलड बना के ले सकते हैं, तब भी आपको एक संतुलित लंच मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा।
1: बहुत बार हम स्किप कर देते हैं, हम सुबह का नाश्ता बहुत जोरदार कर लेते हैं या अच्छी प्रकार कर लेते हैं, और शायद हम दिन का जो भोजन है वो स्किप कर देते हैं, हम शाम को खाते हैं, क्या ये शरीर के लिए नुकसानदायक है?
0: देखिए, वैसे तो लंच स्किप होना नहीं चाहिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप काम कर पाएंगे।
1: जी
0: लेकिन मान लीजिए अगर लंच स्किप हो जाता है, तो आप कुछ ऐसे ऑप्शन अपने पास रखिए जिसमें टाइम नहीं लगता है। तो एक अच्छा सा प्रोटीन ड्रिंक बना सकते हैं कि आप मट्ठा लेंगे और उसमें 2 चम्मच सत्तू डाल सकते हैं, और एक बहुत बढ़िया हल्का सा नमक डालिए, एक अच्छा सा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आपका लंच स्किप हो गया है,
1: जी
0: तो कोशिश करिए कि इवनिंग स्नैक्स ज़रूर ले, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर आप डिनर हल्का करेंगे।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अगर आप पूरे दिन में कुछ भी स्किप कर रहे हैं, तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि फिर हम रात में बहुत अच्छे से
1: जी जी
0: खाते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: प्रॉब्लम करता है।
1: श्रोताओं, अभी हम डिनर की बात कर ही रहे हैं, पर आगे हम अपने

0: दोस्तों एक बार पुनः कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत है। और अभी हम डॉक्टर साहब से रात के डिनर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए। जी मृदुल जी, कैसा होना चाहिए डिनर?
1: बहुत हल्का, जिस तरह ब्रेकफास्ट कहते हैं ना कि बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, उसी तरह डिनर बहुत हल्का होना चाहिए और सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं। कोशिश करें 8 बजे तक अपना खाना फिनिश कर दें। रात में अगर भूख लगती है तो 1 ग्लास दूध पी सकते हैं, लेकिन अगर आप 10-11 बजे खाना खाते हैं तो यही प्रॉब्लम ओबेसिटी डायबिटीज हाइपरटेंसिव का कारण ही
0: होता है। क्या उम्र के अनुरूप भी डिनर होना चाहिए कि जो वृद्ध हैं उनका डिनर कुछ और हो? और
1: हाँ, अगर देखिए उम्र के अनुरूप तो भोजन करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर वृद्ध लोग हैं तो खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए और उनको प्रॉब्लम ना हो। और जो यंग लोग हैं वो अपना खाना पूरा ले सकते हैं, लेकिन बस यही है कि टाइम और पोर्शन साइज बहुत मायने रखता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना हल्का होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए।
0: श्रोताओं, जैसा आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम में आप हमें फोन भी करते हैं, तो अपने फोन उठाइए और हमें फोन कॉल करिए। डॉक्टर साहब, कई हमारे श्रोता हमें संदेश भी भेजते हैं और उनके कुछ संदेश मैं आपको संदर्भित कर रहा हूँ। एक हमारे श्रोता है, उन्होंने हमसे पूछा कि कार्बोहाइड्रेट या जो आपने कहा वसा, उसका निर्धारण कैसे हो, हम कितने मानक रखें या क्या मानक रखें कि जिससे हमारे शरीर को नुकसान भी ना पहुंचे और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे।
1: देखिए, हर एज में अलग अलग मात्रा में खाना खाना चाहिए, ये हम लोग तय करते हैं अकॉर्डिंग टू RDA। तो अगर कोई हमारे पास आता है कि हमारी एज ये है और इस हिसाब से हमें कितना खाना खाना चाहिए, तो हम बकायदा उसका हाइट वेट लेके उसका BMI वगैरह निकाल के और फिर उसको बताते हैं कि किस पोर्शन साइज में आप क्या ले सकते हैं, कितना प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये एज के अनुरूप
0: एज के अनुरूप होगा। बहुत बार हम तला भुना भी खाते हैं और शायद हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा खा लिया, जैसे हम पूड़ी पकवान खाते हैं, कुछ और ऐसे तले भुने खाने खाते, क्या वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ ठीक है, कुछ हद तक लिया जा सकता है?
1: देखिए, अगर आप कभी कभार तला भुना खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डेली ही अपनी डाइट में तला भुना या स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, क्योंकि वो इस तरह का खाना खा रहे हैं जो फ्राइड है, तो आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उस वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम और कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें, जरूर खाएं तला भुना, ऐसा मना नहीं है, लेकिन निर्धारित करें कि महीने में 1 बार लेना है या 15 दिन में 1 बार लेना है, लेकिन डेली खाना ठीक नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, एक और हमारे श्रोता लाइन पर हैं। जी, अपना सवाल पूछें।
2: डॉक्टर साहब नमस्ते, बाजार में आने वाले जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं ये इनमें शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर आपको कोई ड्रिंक लेनी है तो वो लोग शरबत बनाते थे, और अगर आप इस तरीके की जैसे सौंफ का शरबत है, मिश्री डाल सकते हैं, इस तरह के अगर ड्रिंक ले रहे हैं तब तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाहर की कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या जूसेस, क्योंकि जूसेस में भी शुगर ऐड होती है, तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। कोशिश करें कि घर की बनी हुई चीजें ड्रिंक, और सबसे अच्छा ऑप्शन है मुझे लगता है ड्रिंक का, एक तो मट्ठा बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लस्सी है, इस तरीके की चीजें अगर आप शामिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: मैम, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। जी, अपना सवाल पूछें।
3: नमस्ते मैम, एक सवाल भी मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे फास्ट फूड को लेकर के आजकल बहुत कहा जाता है कि फास्ट फूड बहुत नुकसान करता है, और अब तो ये देखा जा रहा है कि घरों में भी फास्ट फूड बन रहा है, तो ये कितना नुकसान करता है और बच्चे खास करके इसके लिए बहुत जिद करते हैं?
1: देखिए, फास्ट फूड को रोकना तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि

0: क्या है, इतना ज्यादा किचन में आ चुका है कि, लेकिन हाँ हम निर्धारित कर सकते हैं उसको
1: जी, जी, जी.
0: कि अगर हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी बना रहे हैं जो वो कह रहे हैं या नूडल्स है तो उसमें नूडल्स कम डालें और वेजिटेबल्स ज्यादा डालें, क्योंकि हम इसी तरह से अपने बच्चों को एक हेल्दी डाइट दे सकते हैं। आप मना करेंगे तो वो बाहर खाएंगे, तो उससे अच्छा है कि आप ऑप्शंस अच्छे चूज करें। अगर आप सैंडविच बना रहे हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स डालें उसमें, तो बच्चे भी खुश रहेंगे और उनको भी लगेगा जंक फूड है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हेल्दी फूड में भी आ जाता है। लेकिन हाँ, जो आप स्ट्रीट फूड ले रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो एक ही ऑयल में बार बार चीजों को तलते हैं और जिससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और कार्डिक प्रॉब्लम भी।
1: एक हमारे श्रोता है, उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, हम हरी सब्जियां और जो फल हैं और खास करके जो ग्रीन हैं, हम उसको अवॉइड करते रहते हैं। कई बार हम उसे स्पेशल ओकेजन पर खाते हैं, सामान्यतः हम केवल भोजन करते रहते हैं। हमारे जो हरी सब्जियां हैं और जो फल हैं, हम उन्हें कितना शामिल करें और क्या ये आवश्यक है हमारे भोजन में?
0: बिल्कुल, देखिए ये जैसे कभी पूछती हूँ किसी से कि आप फ्रूट्स लेते हैं, तो वो कहते हैं हाँ सप्ताह में एक आध बार। फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट या फिर सब्जियों की रिक्वायरमेंट बॉडी को डेली की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब रोटी है, राइस है, उसी तरह सब्जी और फल भी आपको, क्योंकि उनमें विटामिंस है
1: जी,
0: और आपको विटामिंस की जरूरत है, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर में काम आता है। तो इस तरह के आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कौन सा फल लेना चाहिए, लेकिन मैं अगर कहूंगी तो सीजनल फल, सीजनल सब्जियां सबसे ज्यादा लाभदायक है, जिनको डेली डाइट में शामिल करना
1: जी,
0: चाहिए।
1: जी, एक हमारे श्रोता है, उनका संदेश है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। बहुत बार हम बाजार को देखते हुए हम जो फल है अच्छे और बुरे का निर्धारण करते हैं कि जो बहुत महंगा है वो बहुत अच्छा होगा, जो बहुत सस्ता है वो खराब होगा। तो इसके संदर्भ में फल और सब्जियों के संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे?
0: देखिए फल और सब्जियों को ऐसे आप देखिए, जो मौसमी फल और सब्जियां कॉस्टली और सस्ते से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सीजन की सब्जियां खा रहे हैं, जैसे कि हम लोग प्रमोट करते हैं ना लोकल एंड सीजनल, आपके आसपास जो भी फल हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सस्ता है या महंगा है, आपको फ्रेश मिलेगा और वो आपको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर कॉस्टली फल आप ढूंढ रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो चीज महंगी है वही आपको फायदा पहुंचाएगी। आप अगर फलों के नाम पर अगर आप गाजर या टमाटर भी लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे विटामिन मिल जाएंगे।
1: मतलब इस मनोविज्ञान पर नहीं जाना है कि जो महंगा है या जो बहुत अच्छा दिख रहा है वो अच्छा है, आपको मौसमी फल और मौसमी सब्जियां लेनी है। चलते चलते अगर हम अपने श्रोताओं को एक आदर्श थाली के बारे में बताना चाहें या उनसे बताना चाहें कि हाँ ये आदर्श थाली ये हो सकती है और आप इससे अपना जो स्वास्थ्य है वो ठीक रख सकते हैं, या स्वास्थ्य परक थाली यही हो सकती है?
0: देखिए एक आदर्श थाली वही होगी जिसमें सारे पोषक तत्व हों और पोर्शन साइज में हो
1: जी,
0: सही मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल्स और यहाँ तक कि आपका पानी भी, कि आपको दिन भर में कितना पानी पीना है जिससे आप डिहाइड्रेट ना हो। तो अगर एक सही थाली बताया जाए तो जिसमें इंडियन थाली
1: जी,
0: तो जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, इन सबका समावेश होगा, तो वो एक हेल्दी संतुलित आहार है।
1: बहुत बार हमारे श्रोता या हम स्वयं भी परिवार में वो जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं करते, या वो जो खाने का जो आपने कहा कि वसा भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी शामिल होने चाहिए, हम बहुत बार अवॉइड करते रहते हैं, हमारे श्रोताओं को इसके संदर्भ में क्या संदेश देंगे?
0: देखिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा
1: जी।
0: फलों को जरूर शामिल करिए, लेकिन सीजनल, लोकल एंड सीजनल पे ध्यान रखिएगा। जो आपके आसपास अनाज हैं, जो फल हो रहे हैं, उनको अपनी डाइट में जरूर शामिल, लेकिन पोर्शन साइज का भी ध्यान रखिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत अच्छी है और उसको आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो आपको फायदा पहुंचाएगी। सबकी सही मात्रा होनी चाहिए। दूसरी बात है आपकी डाइट में फल होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे सीड्स भी हैं, जैसे हमारे पुराने लोग लेते थे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, अब टाइम है कि उनको भी लेना चाहिए रोस्टेड फॉर्म में या ओवरनाइट सोक करके, मतलब ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी हों
1: जी।
0: अगर आप इस सब चीजों को लेते हैं तो आप एक संतुलित आहार ले रहे हैं।
1: तो श्रोताओं, आपने मृदुल जी को सुना ही और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बातों को समझ गए होंगे और संतुलित आहार या संतुलित थाली की जो परिभाषा है वो समझ गए होंगे। साथ ही साथ हम फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में जो अपना मनोविज्ञान रख रहे थे, जो हम बाजार आधारित अपना मनोविज्ञान समझ रहे थे, आप उसके बारे में भी समझ गए होंगे, आपके भ्रम दूर हो गए होंगे और उम्मीद है कि आप बेहतर भोजन अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। नाश्ता, लंच, डिनर, जो आपकी उम्र है, जो आपकी हाइट है, जो आपका वेट है, उसके अनुरूप निर्धारित करके अनुशासित रूप में लेंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी बेहतरीन हमें

0: जानकारी दी हमारे श्रोताओं के जो भ्रम है उन्हें दूर किया, और साथ ही साथ आपने आदर्श थाली के बारे में भी इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो हमें यूं ही सुनते रहिए, हमें लगातार फोन करते रहिए। हमारे अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो है लीवर यानी यकृत संबंधी विभिन्न व्याधियां, कारण और बचाव। हमारे श्रोता हमें बुधवार को अपराह्न 2:30 से 3:30 के बीच में फोन कर सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। हम आपके संदेश और फोन कॉल अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, डॉक्टर साहब को संदर्भित करेंगे और आपकी समस्याओं और आपके भ्रमों को वो दूर करेंगे, उससे संबंधित सलाह देंगे। हमें यूं ही सुनते रहें, फोन करते रहें। नमस्कार।

0: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आज आपने वरिष्ठ डाइटिशियन सुश्री मृदुल विभा से कैसा हो हमारा आहार और कैसी हो हमारी थाली विषय पर चर्चा सुनी। संचालन किया सुभाष खन्ना ने।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 4 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम संकल्प।
2: संकल्प सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनीष का नमस्कार। प्रत्येक अंक में हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं और इस बार बात करेंगे हीमोफीलिया पर, जिसे अदृश्य दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, जो कि KGMU लखनऊ में हेमेटोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और हेड हैं और हीमोफीलिया सेंटर के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा जी, आपका आकाशवाणी लखनऊ की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: आकाशवाणी लखनऊ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि हीमोफीलिया क्या है।
3: जी देखिए, हीमोफीलिया एक जेनेटिक या आनुवंशिक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि शरीर में खून का थक्का बनाने वाले तत्व जो होते हैं, कई सारे तत्व होते हैं, लेकिन उनमें से जब हीमोफीलिया की बात हम लोग करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन है वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9। ये दो फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं शरीर में खून का थक्का बनने के लिए। इनमें से किसी एक तत्व का न बनना शरीर के अंदर या बहुत कम मात्रा में बनना, उसी को हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। इससे मरीजों में ब्लीडिंग की टेंडेंसी काफी ज्यादा रहती है।
2: जैसे इसे दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है और इसे अदृश्य दिव्यांगता भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है इसे?
3: जी देखिए, जैसे आप दूसरी दिव्यांगताओं को अगर देखें, जैसे कि आंख की दिव्यांगता है या कान की है या जैसे कि डिफॉर्मिटी वाली है जो कि जोड़ों की होती है या चलने में दिक्कत है, इसी तरीके से रक्त के कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो दिव्यांगता में रखे गए हैं, जिसमें कि हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो हीमोफीलिया को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बार बार जोड़ों और मसल्स के अंदर ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, जिससे कि समय के साथ जोड़ जो है वो नष्ट हो जाते हैं और उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती हैं। इस कारण से भी रखा गया है, और इस कारण से भी रखा गया है क्योंकि हीमोफीलिया के मरीज ताउम्र जो है वो ब्लीडिंग के रिस्क पे हमेशा रहते हैं। भले उनमें ज्वाइंट ब्लीड बाहर से न दिखे, फिर भी उनका फैक्टर लेवल इतना कम होता है कि कभी भी स्पॉन्टेनियस स्वतः ही जोड़ों के अंदर या ब्रेन के अंदर कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड भी हो सकती है। इसलिए इसको एक अदृश्य दिव्यांगता के

0: रूप में हम लोग देखते हैं।
1: जैसे ये रक्त के जो थक्के बनने की प्रक्रिया है, ये हीमोफीलिया से किस प्रकार प्रभावित हो जाती है?
0: जैसे कि फैक्टर 8 मैंने बताया है, फैक्टर 9, तो फैक्टर 8 जो होता है वो हीमोफीलिया ए कहलाता है। अगर फैक्टर 8 की कमी है तो उसको हम हीमोफीलिया ए कहते हैं, फैक्टर 9 की अगर कमी है तो उसको हीमोफीलिया बी कहते हैं। मोस्टली यही होता है, और भी हीमोफीलिया हीमोफीलिया सी होता है, पर ये दो कॉमन है। तो इसमें क्या होता है कि जो रक्त का थक्का बनना है वो नहीं बन पाता इस फैक्टर के कारण, जो हमारे रक्त का थक्का बनने में ये तत्व जो है बहुत जरूरी है, तो इस कारण से वो नहीं बन पाता। और इसकी अलग अलग तरह की श्रेणियां होती हैं कि हमारे शरीर में वह तत्व फैक्टर 8 जो है वो कितने अमाउंट में बन रहा है। अगर वह 1% से कम बन रहा है तो हम उसको कहते हैं सीवियर हीमोफीलिया, अगर 1-5% के बीच में बन रहा है तो हम उसको कहते हैं मॉडरेट हीमोफीलिया, और अगर 5% से ज्यादा बन रहा है, 40% तक बन रहा है, 5-50% के बीच में बन रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं माइल्ड हीमोफीलिया। 50% से लेके 150% तक नॉर्मल लेवल कहलाता है। तो नॉर्मल इंसान में जहां पे 50-150% फैक्टर लेवल होता है, हीमोफीलिया में 50% से नीचे होता है, सीवियर हीमोफीलिया में 1% से नीचे होता है।
1: जी, तो जैसे हीमोफीलिया को अनुवांशिक बीमारी कहा जाता है,
0: जी,
1: तो क्या यह पूरी तरह से अनुवांशिक है कि और किन्हीं कारणों से यह बीमारी हो सकती है?
0: देखिए, अनुवांशिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है।
1: जी,
0: हम लोग इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि महिलाएं जो है वो हीमोफीलिया की कैरियर होती हैं, लेकिन जो मेल्स हैं वो मरीज होते हैं। और इसमें मैटरनल साइड में, मतलब मदर की साइड में, मामा, मामा के बच्चे, नाना, उन लोगों में ब्लीडिंग की हिस्ट्री मिलती है।
1: तो हीमोफीलिया चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे हमको पता चल सके कि हमें हीमोफीलिया है, और क्या जन्म से पहले भी पता किया जा सकता है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है उस पर हीमोफीलिया का कोई प्रभाव है या नहीं?
0: पहले तो मैं ये कहूंगा कि हीमोफीलिया को सबसे पहले हमें पहचानने की जरूरत है लक्षणों के बेसिस पे, क्योंकि जब हम पहचानेंगे तभी हम टेस्ट के लिए रेफर करेंगे और तभी टेस्ट हो पाएंगे। तो ये देखा जाए तो इंडिया में अभी ये हालत है कि हीमोफीलिया सिर्फ 20% डायग्नोज केसेस हैं, 80% अभी भी हमारे अनडायग्नोज केसेस हैं, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जैसे ही किसी भी मरीज में स्वतः जोड़ों में बार बार ब्लीडिंग हो रही है, मसल्स में ब्लीडिंग हो रही है, अगर कहीं से कट पिट जाता है और ब्लड नहीं रुक रहा है, एक एक दो दिन तक ब्लड नहीं रुकता है, मेडिकल सलाह उसमें आपको लेनी पड़ रही है लोकली, तो इस तरह के केसेस को जरूर ही ऐसे सेंटर्स पे रेफर किया जाए जहां पे हीमोफीलिया के जांच की सुविधा हो। हीमोफीलिया के जांच की सुविधा अगर मैं अभी लखनऊ में बात करूं तो हमारे जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े सेंटर जैसे कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, SGPGI, RML इंस्टीट्यूट, नोएडा में नोएडा इंस्टीट्यूट है, तो ये 4-5 बड़े सेंटर जहां पे हीमोफीलिया की जांच की सुविधा उपलब्ध है।
1: तो यानी अगर किसी को लक्षणों के आधार पर पता चल जाए कि उसे हीमोफीलिया है, तो वो अपने आने वाली संतानों में ये इसका प्रभाव न हो, उसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए?
0: तो अब यही बात है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर मदर कैरियर है, हमें पता है, और फैमिली हिस्ट्री पहले से है, तो अब मदर कैरियर है लेडी, उसका हो सकता है कि पहले से एक बच्चा हीमोफीलिया से ग्रसित हो, पहले ना पता चल पाया हो, और दूसरा उसकी प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में विशेष जांचों के थ्रू जब बच्चा होता है गर्भाशय में, शुरू के 3-4 महीनों के अंदर हम लोग विशेष टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा अफेक्टेड है कि नहीं है। अगर वो बच्चा अफेक्टेड है और मेल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स जनरली कैरियर होती हैं, उनको कोई सिम्टम्स खास नहीं होते हैं, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, तो अगर वो बच्चा मेल है तो फैमिली से बात करके, काउंसलिंग करके टर्मिनेशन के लिए, प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए बात किया जा सकता है।
1: जो हीमोफीलिया के मरीज होते हैं उनमें किस प्रकार की ब्लीडिंग देखने को अधिक मिलती है?
0: जैसे कि मैंने बताया कि 80% लोगों में जो ब्लीडिंग होती है वो मेनली या तो जॉइंट्स और मसल्स के अंदर होती है। जॉइंट्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, और जो हमारे शरीर के जो भी बड़े जॉइंट्स हैं, जैसे कि एंकल जॉइंट टखने का है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एल्बो है, रिस्ट जॉइंट, तो ये जॉइंट्स जो होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा कभी कभी अंदरूनी ब्लीडिंग भी हो सकती है, जैसे हमारे एब्डोमेन में पेट के अंदर श्वास मसल होती है, उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, जो कि एक सीरियस ब्लीडिंग माना जाता है। कभी कभी ब्रेन के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रेन ब्लीडिंग भी हो सकता है। और ज्यादातर पेशेंट्स में इसके अलावा जो छोटी मोटी जो ब्लीडिंग के होते हैं, जैसे कि दांत उखड़वाया तो दांत से ब्लीडिंग हो रही है, या नाक से ब्लीडिंग होगी, कहीं कट गया तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उस तरह की ब्लीडिंग तो है ही, उसके अलावा जो कॉमन ब्लीडिंग है वो जॉइंट और मसल्स की ब्लीडिंग।
1: तो जैसे हीमोफीलिया से कोई ग्रसित मरीज है, उसकी जो ब्लीडिंग है लगातार हो रही है, तो उससे क्या प्रभाव ज्यादा पड़ता है?
0: देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमारे जोड़ हैं, जोड़ों के अंदर बार बार अगर ब्लड का स्राव होगा तो वो ब्लड क्या होता है कि वो उसको निकाला नहीं जा सकता है, वो ब्लड वहीं पे रहता है और वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, मतलब इरिटेट करता है जॉइंट्स को, तो हमारे जॉइंट्स के ऊपर जो झिल्ली है, कार्टिलेज है, वो धीरे धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो पहले कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद उसके नीचे की जो बोन होती है वो भी डिस्ट्रक्शन होने लगता है। इस कारण से क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस जिसको हम लोग दर्द कहते हैं, जोड़ों में दर्द बहुत रहता है, इस तरीके से पेशेंट धीरे धीरे धीरे धीरे डिसेबल्ड होता जाता है।
1: यानी कहने का तात्पर्य यह कि हीमोफीलिया से

0: बहुत सारे लोग ग्रसित हैं पर उनको पता ही नहीं चलता कि वो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, इसके लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार की हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग प्रायः देखते हैं कि हीमोफीलिया है तो बचपन से उसको, बच्चे को सिम्टम 2-3 साल से हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं माता पिता हैं वो अनभिज्ञ हैं, और इवन अगर वो कहीं कंसल्टेशन भी लेते हैं तो शायद प्राइमरी फिजिशियन उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इस तरह से उसको बार बार जोड़ों में ब्लीडिंग होती है, जिसको लोग ये समझ लेते हैं कि शायद चोट लग जाए या बच्चा बार बार गिर जाता है, बताता नहीं है, कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। हालांकि वो स्वेलिंग जो है धीरे धीरे कुछ दिनों में समाप्त होती है, पर क्या है कि हर ब्लीडिंग ज्वाइंट को कुछ ना कुछ डैमेज दे के जाती है।
0: तो क्या हीमोफीलिया का उपचार संभव है? अगर संभव है तो उसको कहाँ जाना चाहिए?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो अभी इसका क्योर जो है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल जड़ से बीमारी खत्म हो जाए, वो तो बहुत पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जीन थेरेपी के लेवल पे काम चल रहा है, पर हम देखें कि एक बच्चा है जिसको हीमोफीलिया डायग्नोसिस बन चुकी है, उसको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन है? तो उसमें हमारे पास ट्रीटमेंट का जो पहला ऑप्शन है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे मैंने बताया कि फैक्टर 8 या 9 की कमी होती है, तो इसके प्यूरिफाइड फैक्टर्स कंसेंट्रेट दवा के रूप में अवेलेबल है, जो कि सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो फंड्स देता है, जिससे वो फैक्टर्स खरीदे जाते हैं, और वो फैक्टर अभी हमारे यूपी के मरीजों में ऑन डिमांड बेसिस पे देते हैं। जैसे कि मरीज को ब्लीडिंग हो गई, वो हमारे पास आया, हमने उसको फैक्टर लगाया जिससे ब्लीडिंग समय से रुक जाए और ज्यादा डैमेज ना होने पाए, तो उसको हम लोग ऑन डिमांड ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ऐसे इंजेक्शन भी आ रहे हैं जो स्किन में लगाए जा सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन है, और वो हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लगाया जा सकता है, और वो ब्लीडिंग को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है प्रोफाइलेक्सिस क्या है कि जैसे बार बार ब्लीडिंग के बाद अगर हमारे पास मरीज आया तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, हम सिर्फ ब्लीडिंग को रोक रहे हैं लेकिन डैमेज तो हो चुका है। ऐसे मान लीजिए 5-10 बार होगा उसको जॉइंट डैमेज हो जाएगा, तो आइडियल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? आइडियल ट्रीटमेंट ये होना चाहिए कि मरीज को हफ्ते में 2 या 3 बार वो फैक्टर बिना ब्लीडिंग के ही लगाया जाए, जिससे उसका लेवल एक मेंटेन रहे।
0: तो जैसे हीमोफीलिया से कोई ग्रसित होता है तो आपने बताया कि लखनऊ में जो प्रमुख संस्थान है वहाँ पर इसकी सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ पर इनका इलाज किया जा सकता है, तो जैसे अगर KGMU कोई आना चाहे तो वहाँ पर कहाँ संपर्क करना चाहिए उसको?
1: जी देखिए, ऐसा है कि जो ये पूरा हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसका जो नोडल सेंटर है वो SGPGI है। SGPGI में नोडल ऑफिसर है और जो फंड्स आते हैं वो उस सेंटर से आते हैं, उसी से ही फैक्टर्स का प्रोक्योरमेंट किया जाता है और फिर वो सारे जो हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 28 हीमोफीलिया सेंटर्स हैं और उसमें से कुछ जो सेंटर्स हैं वो टर्सरी केयर सेंटर, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि KGMC है, SGPGI है, इस तरह से और सेंटर्स भी हैं जहां पे फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, तो मरीज वहां पे पहुंचकर हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स पे पहुंचकर फैक्टर्स अवेल कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्लीडिंग। बट कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर मतलब वहां फिजियोथेरेपी की भी सुविधा है, वहां पे अगर सर्जरी की जरूरत है तो इन मरीजों की सर्जरी भी हो सकती है, काउंसलिंग की सुविधा है और ट्रीटमेंट तो है ही, 24 आवर्स ट्रीटमेंट अवेलेबल है, 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल है।
0: जैसे आपने बताया जीन थेरेपी से इसका इलाज किया जा रहा है या इसका मूल रूप से इसके समाधान की खोज की जा रही है, तो इससे कहां तक संभव है कि इससे पूरी तरह से इसको खत्म किया जा सकता है या कितना समय लगेगा लगभग?
1: देखिए, जीन थेरेपी पिछले एक दशक से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जीन थेरेपी हीमोफीलिया में ट्रायल्स हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट इसमें अप्रूव भी हुए हैं, लेकिन जीन थेरेपी के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि ये सभी मरीजों के लिए योग्य नहीं है। जीन थेरेपी के लिए बहुत सेलेक्टेड पेशेंट्स को ही लिया जाता है जिनमें जीन थेरेपी के फायदा होने के उम्मीद ज्यादा होती है। दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसका जो कॉस्ट है US में या जहाँ भी अभी अवेलेबल है वो करोड़ों में है, तो वो हमारी जनता के लिए वो नियर फ्यूचर में भी अवेलेबल होना मुश्किल है। और ये भी देखा गया है कि कुछ जीन थेरेपी शुरू में तो कारगर दिखी लेकिन समय के साथ जाकर उनकी इफिकेसी जो है वो फेल हो गई। तो कुछ ऐसी भी जीन थेरेपीज हैं जो मार्केट से विड्रॉ हो गई क्योंकि वो इतनी कॉस्टली थी कि आम जनता के लिए वो यूज नहीं हो पाई।
0: तो जैसे कोई व्यक्ति है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसको अपनी जीवन शैली में किन किन गतिविधियों से बचना चाहिए और क्या क्या बदलाव करना चाहिए जिससे जो उसका स्वास्थ्य है वो सही रहे?
1: जी, एक चीज तो यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं जिसको कांटेक्ट स्पोर्ट्स कहते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया
0: जी,
1: और दूसरे हॉकी हो गया या ऐसे चीज जहां पे एक दूसरे से लड़ने का या चोट लगने का रिस्क ज्यादा है, तो उस तरह की एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी जो रूटीन एक्टिविटीज है, जैसे कि कैरम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, उस तरह की चीज जिसमें चोट लगने का रिस्क नहीं है, उस तरह के जो गेम्स जो हीमोफीलिया के जो भाई लोग हैं वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक सेहतमंद जीवन शैली को अपनाना जरूरी है, तो योगा या कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, इस तरह की चीजें जो है वो करना बहुत जरूरी है।
0: अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है और अचानक उसका रक्तस्राव अधिक होने लगता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर हीमोफीलिया से ग्रसित है और मान लीजिए कि उसको

0: जोड़ में ब्लीडिंग हो रही है
1: जी।
0: ऐसा होता है कि हीमोफीलिया के पेशेंट्स में जनरली उनको ये आइडिया लग जाता है कि हमको ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि कुछ इस तरह की सेंसेशंस जॉइंट के अंदर होती है जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि जो है ब्लीडिंग हो रही है या होने वाली है। पेशेंट जो है अगर वो कोई हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर के बगल में रहते हैं जहां जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, तो वहां जाके फैक्टर लगवाएं। सबसे पहले 2 घंटे के अंदर अगर फैक्टर लग जाए ब्लीडिंग शुरू होने के, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट होता है।
1: तो क्या स्कूल्स और जो ऑफिस हैं इसके लिए जहां पर हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं होनी चाहिए?
0: पहली बात तो अवेयरनेस होनी चाहिए स्कूल स्टाफ को या जो टीचर्स हैं उनको कि भाई ये बच्चा जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है या इसको हीमोफीलिया है तो इसको ब्लीडिंग की टेंडेंसी है, ठीक है ना। लेकिन उसके बेसिस पे कोई भी इस तरह का वो व्यवहार नहीं होना चाहिए कि भाई उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया या उस टीचर उसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
1: क्या गवर्नमेंट कोई हीमोफीलिया के अवेयरनेस रिलेटेड कोई प्रोग्राम भी चलाती है?
0: देखिए जो हीमोफीलिया के अवेयरनेस का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, जो कि हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी 17 अप्रैल को इस वर्ष भी मनाया है। तो इस बार का जो थीम था वो था कि डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पे हम लोग हर वर्ष प्रोग्राम करते हैं जिसमें हीमोफीलिया के पेशेंट्स को हम लोग बुलाते हैं, साथ में हमारा पूरा स्टाफ और कॉलेज के लोग, और कोई एक हम लोग वॉकाथन करते हैं जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और कुछ रेडियो प्रोग्राम्स इस तरह के भी हम लोग करते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस फैल सके।
1: जैसे जो हीमोफीलिया से ग्रसित मरीज होते हैं उन्हें कुछ मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है,
0: ना ही सिर्फ मरीजों को बल्कि अभी जो परिवार है उनके परिवार को भी मानसिक एक पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। तो मरीजों में डिप्रेशन होने के, अवसाद होने के चांसेस रहते हैं, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और चीजों में ध्यान न लगना, इस तरह की चीजें रहती हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेन में रहते हैं या डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, और चूंकि पेरेंट्स भी उनके केयर में लगे हुए हैं, बार बार हॉस्पिटल्स में जाना आना उस तरह का, और अब बच्चे को वो देखते हैं अपने सामने इस तरह के दर्द में, तो उनको भी तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन और इस तरह की चीजें होती हैं।
1: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो इस बीमारी से बचे रहें?
0: उसका तरीका एक जो हमने बताया कि जिस भी परिवार में हीमोफीलिया की हिस्ट्री है तो उसकी जेनेटिक काउंसलिंग होना और प्रीनेटल डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जरूर जो है डॉक्टर से मिलकर उसके लिए सलाह लें। दूसरी चीज ये है कि समाज में किसी को भी अगर इस तरह की दिक्कत है जहां पे जोड़ों में बार बार ब्लीडिंग हो रही है, जोड़ों में सूजन आ रही है, मसल्स में सूजन आ रही है, तो तुरंत उसको ऐसे सेंटर पे जरूर रेफर करें जहां पे उसकी डायग्नोसिस हो सके।
1: डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: संकल्प के इस अंक में इतना ही, अगले अंक में एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: कार्यक्रम संकल्प में आज आपने डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा से क्या है अदृश्य दिव्यांगता हीमोफीलिया विषय पर बातचीत सुनी। भेंटकर्ता थे मनीष कुमार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में पहला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म द डर्टी पिक्चर से। गाया है कमाल खान ने, म्यूजिक दिया है विशाल डाडलानी और शेखर रवजियानी ने, बोल लिखे हैं रजत अरोड़ा ने।

प्रोग्राम में अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दिल तो बच्चा है जी से, मोहित चौहान की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत प्रीतम का है।

प्रोग्राम में अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से राहत फ़तेह अली ख़ान और तुलसी कुमार की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक झनकार। आज प्रस्तुत है राजेश कुमार गौतम व साथी के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। पहले लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये सोराठी।

0: और अब लीजिए सुनिए राजेश कुमार, गौतम वासाथी के स्वर में ये लोकगीत। ये लोक भजन
1: अरे कबहू बन के श्याम, अरे कबहू बन

प्रोग्राम चल रहा है लोक झनकार। हमारे आज के कलाकार हैं राजेश कुमार गौतम व साथी। अब आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये विकास गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोक झनकार में आज आपने आनंद लिया राजेश कुमार गौतम व साथी के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत गीतों का। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा

0: पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्यमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला MV होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब सुनिए आज के शेष व कल के विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय होगा आज रात 10 बजे से, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में शाम 5:10 पर। वहीं कार्यक्रम नई उड़ान होगा शाम 5:45 पर। आज शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ, जिसका शीर्षक है कहूं कम कहूं ज्यादा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी के अंतर्गत सुनिएगा मेंथा उत्पादन विषय के बारे में हरक चंद्र वर्मा से, और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। प्रस्तुति होगी सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर की। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 बजे आप सुनेंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार से हास्य काव्य पाठ। अवतार सिंह से गुरवानी आप सुन सकेंगे आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में। कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको बता दें आज रात 8:10। आपके पसंद कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे आज रात 9:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 6:05 पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जानिएगा ग्वार की उन्नत खेती के बारे में। सवेरे 7 बजे स्वास्थ्य चर्चा में नीना सुनकर चर्चा करेंगी पौष्टिक तत्वों से भरपूर खुबानी इसके बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सवेरे 7:31 पर और रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन। जिले की हलचल का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:15। वहीं उर्दू प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे सवेरे 9:30 पर। कल दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन। विज्ञान और किसान कार्यक्रम होगा कल दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम में कल मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजय कुमार, और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

युवा तरंग कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे कल शाम 5:10 पर। कल शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में सरोकार के अंतर्गत डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव से जानिएगा अस्पताल अपशिष्ट पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां और इसका वैज्ञानिक प्रबंधन विषय के बारे में। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे उल्टी दस्त कारण और निवारण, इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर प्रियंका भट्ट और इनसे बातचीत करेंगे रामजीत मौर्य। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर आप सुनेंगे डॉक्टर प्रतिभा सचान से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत, विषय होगा पशुओं में लंपी चर्म रोग कारण और निवारण। कल शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपीज विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ आर्या से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता। साथ ही आप जान सकेंगे स्पाइन की देखभाल कैसे करें, इस विषय के बारे में डॉक्टर शाह वली उल्ला से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता। डॉक्टर शरद सिंह की कहानी सच्चा तीर्थ आप सुनेंगे कल रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम में। प्यारे मैसी की गई गजलों का आनंद श्रोता ले सकेंगे कल के सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर। रात 10:00 आप सुन सकेंगे रूपक जिसका विषय है अवध वाणी लखनऊ आकाशवाणी। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 5:10 हुए हैं। अब सुनिए नई सोच और नई उमंग के साथ कार्यक्रम युवा तरंग।

माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो एहसास है जो हमारी पूरी दुनिया को थामे रखता है। जब हम पहली बार इस दुनिया में आते हैं, तो सबसे पहले जिस आवाज़ को सुनते हैं, वो माँ की होती है। और शायद यही वजह है कि ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, माँ की आवाज़ सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग और मैं हूँ आपके साथ अनुष्ठा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है मदर्स डे, वो दिन जो समर्पित है उस इंसान को जो खुद थक जाती है लेकिन हमें कभी थकने नहीं देती, जो खुद रो लेती है चुपके से लेकिन हमारी आंखों से आंसू भी नहीं गिरने देती। माँ जो हमारी पहली दोस्त भी होती है, पहली टीचर भी और सबसे बड़ी ताकत भी। दोस्तों, हम बड़े हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन माँ का इंतज़ार कभी छोटा नहीं होता। उन्हें आज भी वही खुशी मिलती है जब हम खाना समय से खा लेते हैं या बस एक बार प्यार से कह देते हैं कि माँ अपना ध्यान रखा करो। तो आज के इस खास मौके पर अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उन्हें गले लगाइए, और अगर दूर है तो एक फ़ोन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार आई लव यू माँ सुनने के लिए उनका दिल बरसों से इंतज़ार करता है। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की विशेष प्रस्तुति युवा तरंग का मदर्स डे स्पेशल इस गीत के साथ।

0: दोस्तों, मदर्स डे के इस खास मौके पर अब हम सुनने जा रहे हैं एक बेहद प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसे हमारे साथी अभिषेक ने खास आज के कार्यक्रम के लिए लिखा है। इस कहानी में माँ के प्यार, त्याग और उन अनकही एहसासों की झलक है जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों से कह नहीं पाते। तो आइए सुनते हैं हमारे साथी अभिषेक की ये खूबसूरत प्रस्तुति।
1: माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले तो आप सबको मातृदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मातृदिवस यानी मदर्स डे, ये सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन मदर्स डे है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम इस संसार में हैं। उन्हीं की ममता से हम हर हार जीत में बदल देते हैं, और तो और वही पापा की मार से बचा लेती हैं भले हम गलती कर बैठते हैं, और फिर वो अपने तरीके से सही राह दिखाती हैं क्योंकि माँ ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, आज मदर्स डे पर एक माँ के प्यार की जीत की कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। आरव के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हर सपने के साथ उसके मन में एक डर भी रहता था कि क्या वो सच में जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा। स्कूल में बाकी बच्चों के पास अच्छे कपड़े, महंगे बैग और ट्यूशन

0: सुविधा थी, जबकि उसके पास सिर्फ मेहनत और उसकी माँ का भरोसा था। उसकी माँ हर सुबह उसे यही कहती थी कि गरीब होना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर बनने की बात कही, किसी ने इंजीनियर बनने की, और जब आरव की बारी आई तो उसने धीरे से कहा कि वो अफसर बनना चाहता है। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिस घर में ठीक से बिजली तक नहीं आती, वो अफसर कैसे बनेगा। उन बातों ने आरव का दिल तोड़ दिया। उदास होकर घर लौटा और अपनी माँ से बोला कि शायद बड़े सपने उसके जैसे लोगों के लिए नहीं बने। उसकी माँ ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और फिर अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकालकर उसके सामने रखा। उस डिब्बे में कुछ सिक्के और मुड़े तुड़े नोट थे। माँ ने कहा, ये उनके सपने हैं जो उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए बचाकर रखे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी खुशियां इसलिए छोड़ दी ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़ सके। फिर उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर कहा कि दुनिया इंसान की हालत देखती है, लेकिन माँ उसकी हिम्मत देखती है। उन शब्दों ने आरव के अंदर नई उम्मीद जगा दी। उसने मेहनत शुरू कर दी। दिन में स्कूल जाता, शाम को एक दुकान पर काम करता और रात में देर तक पढ़ाई करता। कई बार वो थक जाता, कई बार भूख और नींद उसे परेशान करती, लेकिन उसकी माँ हर रात उसके पास बैठकर उसे हिम्मत देती और कहती कि मेहनत करने वालों का साथ किस्मत भी देती है। समय बीतता गया और बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, लेकिन आरव फेल हो गया। आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। वो रोते हुए घर पहुंचा और माँ से कहा कि वो हार गया है। उसकी माँ ने रिजल्ट देखा, कुछ पल चुप रही और फिर सामान्य तरीके से खाना परोसने लगी। जब आरव ने गुस्से में पूछा कि उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, तब माँ मुस्कुराकर बोली कि उन्हें उसके रिजल्ट से ज्यादा उसकी कोशिश पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि फेल होना जिंदगी खत्म होना नहीं होता। और माँ की बातों ने आरव को फिर से खड़ा कर दिया। उसने तय किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो हार नहीं मानेगा। उसने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। जब बाकी लोग घूमते थे तब वो पढ़ाई करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अब चुप रहता था क्योंकि उसे अपनी माँ के भरोसे को जीतना था। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब सरकारी नौकरी के रिजल्ट में उसका चयन हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसके घर बधाई देने आने लगे, लेकिन आरव सीधे अपनी माँ के पास गया जो आंगन में बैठकर सिलाई कर रही थी। वो उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ा और बोला कि आज उनकी मेहनत जीत गई। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि उनका बेटा हार नहीं सकता। कुछ समय बाद एक कार्यक्रम में आरव को सम्मानित किया गया। स्टेज पर उसे पूछा गया कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि जब पूरी दुनिया उसकी हार देख रही थी, तब सिर्फ एक औरत उसकी कोशिश देख रही थी और वो उसकी माँ थी। और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, सच तो यही है कि माँ वो इंसान होती जो हमारे अंदर वो ताकत देख लेती है जो शायद हमें खुद में दिखाई नहीं देती। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब माँ का भरोसा इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। यही है माँ का प्यार और विश्वास, ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, मदर्स डे सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये हर दिन है। हमारी जिंदगी का हर एक दिन हमारी माँ से जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और बस इतना कहना चाहूँगा कि अपनी माँ से प्यार करें, उनके सपनों के लिए मेहनत करें और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते रहें, और ऐसे ही आप भी एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। धन्यवाद।
1: दोस्तों, इस विशेष प्रस्तुति के बाद आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और फिर मिलते हैं आपसे इस गीत के बाद।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, आज की ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। सुबह की भाग दौड़, कॉलेज, करियर, मोबाइल, सोशल मीडिया, टारगेट्स और सपनों के बीच युवा लगातार दौड़ रहा है। हर किसी को जल्दी है आगे बढ़ने की, कुछ बनने की, खुद को साबित करने की। लेकिन इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अगर कोई चुपचाप हमारे साथ चलता है तो वो है माँ। माँ जो शायद आज भी हमारे कमरे की बिखरी चीज़ें

ये समेटते हुए ये सोचती है कि बच्चा बहुत थक जाता होगा, जो हमारे मैं ठीक हूँ कह देने भर से भी संतुष्ट होने की कोशिश करती, जबकि उसे हमारी आवाज़ से पता चल जाता है कि हम सच में ठीक हैं या नहीं। आज का युवा अपने सपनों के लिए घर से दूर जा रहा है। किसी का बेटा दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है, कोई बेटी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ पीछे छूट जाती है वो है माँ के साथ बिताया गया समय। पहले जहाँ शाम की चाय पर बातें होती थी, अब वहाँ सिर्फ हाँ माँ बाद में करता हूँ यही रह गया है। पहले माँ का हाथ पकड़कर बाजार जाना अच्छा लगता था, अब उनके फ़ोन कभी कभी डिस्टर्ब भी करने लगते हैं। लेकिन सच कहें तो इस दुनिया में अगर कोई बिना शर्त हमारे लिए हर दिन दुआ करता है तो वो माँ ही है। उसे ना हमारे बड़े पैकेज से फ़र्क पड़ता है, ना बड़ी गाड़ी से। उसे बस ये चाहिए कि उसका बच्चा खुश रहे, स्वस्थ रहे और कभी खुद को अकेला ना महसूस करे। दोस्तों, आधुनिकता और सपनों के इस दौर में रिश्तों के साथ बनाए गए रखना भी बहुत ज़रूरी है। करियर बनाइए, आगे बढ़िए, बड़े सपने देखिए, लेकिन उस माँ को मत भूलिए जिसने अपनी छोटी छोटी खुशियाँ छोड़कर आपके बड़े सपनों को कभी पूरा किया। कभी समय निकाल कर माँ के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, हो सकता है उन्हें सिर्फ आपकी मौजूदगी ही चाहिए हो। तो आइए आज युवा तरंग के इस मन से हम ये वादा करें कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो जाए, माँ के लिए हमारे पास हमेशा थोड़ा समय और प्यार ज़रूर होना चाहिए और बहुत सारी इज्जत भी होनी चाहिए। इसी के साथ आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, हम सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं क्योंकि माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हर मुश्किल में हमारा साथ निभाती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी एक और माँ भी है जो बिना कुछ कहे हर दिन हमें जीवन दे रही है? वो है प्रकृति माँ। ये धरती, ये पेड़, नदियाँ, पहाड़, हवा और बारिश, ये सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे जीवन की सांस है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देती है, उसी तरह प्रकृति भी हमें हर दिन बहुत कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी देती है, अन्न देती है और जीने के लिए खूबसूरत दुनिया देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, आज वही इंसान की लापरवाही से घायल हो रही है। कटते जंगल, बढ़ता प्रदूषण, सूखती नदियाँ और लगातार बदलता मौसम, ये सब कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि प्रकृति अब थकने लगी है। दोस्तों, अगर हम सच में प्रकृति को माँ मानते हैं तो सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन उसका सम्मान करना होगा। एक पेड़ लगाकर, पानी बचाकर, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके हम प्रकृति माँ के प्रति अपना प्यार और जिम्मेदारी दिखा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जब प्रकृति मुस्कुराती है तब जीवन खूबसूरत लगता है और जब प्रकृति नाराज होती है तो पूरी दुनिया उसका असर महसूस करती है। तो आइए, आज युवा तरंग के माध्यम से हम सब एक छोटा सा संकल्प लें कि प्रकृति को सिर्फ संसाधन नहीं, अपनी माँ भी समझेंगे और उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। आइए, इसी के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

दोस्तों, आज मदर्स डे के अवसर पर कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। माँ की गोद में आज भी वो बचपन कहीं सोता है। दुनिया चाहे जितना रुलाए, एक वही है जो बिना कहे सब कुछ समझ लेती है। मेरी हर टूटती हिम्मत को जिसने चुपके से संभाला है, मैं गिर भी जाऊँ अगर कभी तो माँ ने ही फिर से उठाया है। खुद की नींदें बेच कर जिसने मेरे सपनों को सजाया था, मैं खुश रहूँ बस इसलिए हर दर्द हंस कर छुपाया था। आइए दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

माँ की ममता का कोई मूल नहीं होता, उसके प्यार जैसा दुनिया में कोई और नहीं होता। थक जाए चाहे पूरी दुनिया साथ चलते चलते, माँ का हाथ कभी कमज़ोर नहीं होता। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे यानी अपने दोस्त रेडियो अनुष्ठा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मेजर साहब फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। और इसी के साथ ही अब वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

0: नई उड़ान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, डिजिटल डिफरेंस यह शब्द आमतौर पर तकनीक, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटर या ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंच में फर्क को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा आज का ये विषय है और इस विषय में ढेर सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे आप तक साझा कर रही हैं हमारी रेडियो साथी आरती यादव।
1: एक तरफ दुनिया AI, 5G और डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार से दौड़ रही है, पर दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मोबाइल पर बात तक नहीं की।
2: क्या नाम है आपका?
3: सरमे।
2: आपके गांव में नेटवर्क आता है? मोबाइल जैसे चलाते हैं लोग तो फोन पे बात होती है, तो कभी कटती तो नहीं?
3: उसे हम लोग कैसे मालूम हुआ?
2: कभी बात नहीं किया फोन पे?
3: नहीं।
2: 2026 चल रहा है आज, आपने अपने पूरे जीवन में जितना उम्र है आपकी कभी फोन पे बात नहीं किया किसी से? सच में?
3: नहीं, नहीं, नहीं। दूर से देखे अभी बगलों से नहीं।
2: कभी आया मन में कि ये क्या करते हैं, ये इसमें क्या करते हैं? कभी आया जिज्ञासा हुई कभी?
3: नहीं, हम लोग ऐसा नहीं तो क्या बोलेंगे?
2: जानकारी नहीं है तो फिर उधर मन भी नहीं जाता।
1: हंसकर बात को टालने का प्रयास।

0: संस्कृति ये हमारे अपने देश का ही हिस्सा है, लेकिन जानकारी का अभाव और परिस्थितियाँ इन्हें तकनीक से दूरी बनाने पर मजबूर करती हैं, डिवाइड करती हैं। और ये बंटवारा एक तक सीमित नहीं है, अनेक लोगों की है और अनेक प्रकार से।
1: क्या नाम आपका?
2: विवेक कुमार।
1: विवेक, स्मार्टफोन यूज करते हो?
2: जी।
1: क्या करते हो स्मार्टफोन
2: में? वही नेट वगैरह चलाता हूँ, फेसबुक,
1: सोशल मीडिया चलाते हैं।
2: जी जी।
1: कुछ उसमें से सीखते भी है?
2: सीखते
1: मतलब सिर्फ गाने वगैरह सुनने में ही उसका यूज होता है या उसका और किसी चीज में यूज करते हैं?
2: नहीं, खाली गाना वाना और फोन वोन यूज करते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं।
1: पैसा डाल लेते हैं?
2: जी, पैसा वैसा डालते हैं बस।
1: अगर कोई सरकारी योजना का लाभ लेना होता है तो कैसे लेते हैं, किसके पास?
2: आधार कार्ड है, आधार कार्ड से काम चल जाता है, बस आधार कार्ड है, दूसरा कुछ नहीं।
3: सरकारी लाभ नहीं मिलता है?
1: क्या
3: नहीं मिल रहा है हमको?
1: आपका आपका नाम?
3: राजेश प्रसाद।
1: तो राजेश जी, जो आपके साथी हैं और आप हैं, तो अगर आपको खुद फॉर्म भरना आता होता
3: जी,
1: तो कैसा रहता?
3: तो भर लेते ना, सब सरकारी लाभ पूरा पाते, लेकिन अभी कुछ करना नहीं आता इसलिए नहीं कर पाते हैं।
1: क्या कारण देखते हैं राजेश जी? नेटवर्क की कमी है या जानकारी की कमी है या साधन की कमी है, किस वजह से?
3: मैम ऐसा कोई कमी नहीं है, बस पढ़े लिखे नहीं है इसलिए ये कमी है। अब पढ़े लिखे लोग हैं तो सबको उनको सरकारी जो भी लाभ है उसके बारे में पता चलता है, तो वो लोग लेते हैं, हम लोग नहीं पता इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं।
1: क्या नाम है आपका?
4: सुनीता। क्या करते हो सुनीता?
5: काम कर रहा हूँ।
1: फोन है आपके पास?
5: मेरा पास नहीं है, मेरा पति के पास है।
1: मन होता है कभी हमारे पास हो, हम भी चलाएं, हम भी देखें इसमें क्या होता है, तो मन तो कहते हैं, तो मेरा पति है ना, हमको मोबाइल नहीं देता, इसलिए हमको मोबाइल चलाना नहीं आता। सिखाना अगर आप कोई चाहे तो आप सीखना चाहोगे?
5: चाहेंगे।
1: अगर आपको फोन गिफ्ट किया जाए तो आप लेना चाहोगे?
5: ले लेंगे।
1: इस्तेमाल करना आएगा?
5: आएगा।
1: तो अगर आपको सिखाया जाए तो आप तकनीकी सीखना चाहते हो?
5: ठीक, सीख लेंगे।
1: इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं?
3: जी जानते हैं।
1: क्या क्या करते हैं उससे?
3: इंटरनेट में तो बहुत कुछ ऐसे सीखने के लिए।
1: जैसे आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं?
3: जैसे कोई मोबाइल में कोई गड़बड़ी हो गया तो उससे ही देख के मतलब मोबाइल भी ठीक कर लेते हैं। जी,
1: अपडेट वर्जन है आप इन लोगों में, कहीं ना कहीं थोड़ी जानकारी रख रहे हैं, तो उन जानकारी में ये अंतर देख पाते हैं कि जब थोड़ी जानकारी आपको है तो इनकी जिंदगी से शायद थोड़ी आसान है?
3: जी बिल्कुल।
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, कैसा भविष्य देख?
3: जी मैम, कैसे भी मेहनत करके हम लोग को पढ़ा लिखा के बस कुछ लायक बनाना है, ऐसा ही है।
1: अभी जहाँ पर आपके बच्चे और आप रहते हैं वहाँ पर इंटरनेट की पहुँच कैसी है और या उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?
3: जी जी, वहाँ पर बढ़िया चलता है, 5G चलता है, 4G चलता है, बढ़िया इंटरनेट चलता है, दिक्कत नहीं है वहाँ।
1: मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस अगर समझ और जानकारियाँ अवेयरनेस आ जाए तो चीजें सुधर जाएंगी।
3: जी जी बिल्कुल।
1: आपका क्या नाम है?
6: राहुल कुमार।
1: राहुल, इंटरनेट की दुनिया के बारे में कितना जानते हो?
6: इतना जानता हूँ कि चला लेता हूँ।
1: तो क्या देखते हो उसमें आप सोशल मीडिया पे? क्या देखते हो?
6: रील वगैरह देखते हैं।
1: मतलब जब काम से थक के जाते हो तो आराम का और मनोरंजन का एक जरिया आपके पास ये है?
6: यही है बस।
1: कभी सोचा है इसका कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मनोरंजन के अलावा भी कुछ और किया जा सकता है, ऐसा कुछ सोचा?
6: नहीं है तो क्या जानेंगे, पढ़े लिख रहे थे तभी तो, जितना पढ़े इतना पढ़े थोड़ा बहुत कमा लेते हैं बस।
1: आपके घर पे और कोई छोटा बच्चा या कोई है?
6: मेरा भाई है।
1: वो क्या करते हैं?
6: पढ़ाई करता है।
1: आपको अभी तकनीकी जानकारियाँ नहीं है तो आप क्या सोचते हो आपका भाई क्या करे?
6: तो क्या करेगा वही जानता है ना, पढ़ाई करेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा।
1: अच्छा।
6: पढ़ेगा तो इतना पढ़ेगा।
1: उसको समझाएंगे नहीं कि देखो अगर
6: समझाने पर समझाएंगे ना, बंदे को हाथ पकड़ खुद ना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ेगा उतना पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर काम करेगा।
1: मतलब कोशिशें खुद जब करोगे तभी भाई माता पिता सब सहयोग कर पाते हैं, यानी आगे बढ़ना है राहुल का ये कहना है, अगर आगे बढ़ना है तो पहले कदम खुद बढ़ाने पड़ेगा,
6: पहले कदम खुद बढ़ना पड़ेगा,
1: फिर कोई सिखा सकता है। आपको कभी किसी ने प्रयास किया कि कोई चीज अगर नहीं आ रही है, कंप्यूटर में कितना कुछ आता है या मोबाइल में क्या कुछ चला लेते?
7: इनको कुछ नहीं पता है, इनको पढ़े लिखे हैं।
1: फोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं कि नहीं?
7: फोन तो करते हैं छोटा, अब है नहीं।
1: जब फोन इस्तेमाल करते थे और नहीं करते हैं अभी में कुछ जीवन में अंतर लगता है?
7: अंतर तो बहुत है।
1: घर कहाँ है आपका?
7: घर बिहार।
1: घर की याद आती है? मिलने जाते हैं?
7: जाते हैं।
1: कितने टाइम
7: तक? 6 महीना साल भर।
1: 6 महीना जब आप अपने परिवार से दूर होते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तो कभी मन करता है कि वो बड़ा वाला फोन होता तो सामने कैमरे पे बात कर लेते?
7: ऐसे तो बात कर लेते हैं किसी के मोबाइल से,
1: दूसरे के। अपना हो और अपना अपने को चलाना आता हो तो कैसा रहेगा?
7: ठीक रहेगा, हमको तो चलाने आता नहीं।
1: कोई सिखाए तो सीखना चाहेंगे?
7: हाँ सीख लेंगे।
2: मोबाइल सीखेंगे तो काम कौन करेगा? जब मोबाइल ही सीखेंगे तो काम कौन करेगा, फिर पैसा कौन कमाएगा, फिर दुनिया कौन देखेगा, यही बात है ना।
1: यानी कहीं ना कहीं अगर जीविका बेहतर हो जाए तो फिर इन सब चीजों बारे में सोचा जा सकता है?
2: सोचा जा सकता है, जब पैसा वैसा हो।
1: आपका क्या नाम?
2: मनीष।
1: तो मनीष, आप क्या चाहते हो अगर आपको कोई संस्था कोई सरकार की तरफ से

0: मदद मिले, जिससे आपको ये मौका मिले कि हमको तकनीकी जानकारी में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या करना चाहोगे, क्या सीखना चाहोगे? अगर आपके पैसे की समस्या, घर की समस्या ना हो, तो आप क्या कर और क्या आगे बढ़ना चाहोगे?
1: हम तो बस पैसा कमाना चाहेंगे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आजकल का दुनिया। बस पैसा कमाओ
2: तो
1: और कुछ
2: सरकार
1: नहीं।
2: अगर तुमको दे रहा है
1: हाँ,
2: तो
1: तो
2: फिर
1: लेना चाहेंगे ना खुशी से। हम तो पढ़ाई
0: पढ़ाई कितनी करी, कारण
1: नहीं की है।
0: क्या रहा पढ़ाई नहीं की?
1: ये पिताजी जो है ना, वो थोड़ा दारू वारू पीते हैं, शराब पीते हैं, इसलिए थोड़ा घर खराब हो गया, इसी वजह से कमाना पड़ गया ना।
0: सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिलता है वहाँ?
1: हाँ हाँ मिलती है, मिलती रहती है।
0: और अगर आपके घर के आसपास, जिस तरह से उज्ज्वला के तहत घर घर गैस चूल्हा बनाया गया है, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा कंप्यूटर का सेंटर खोल दिया जाए और कहा जाए 15 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा डेली फ्री में सिखाया जाएगा, तो आप या आपके आसपास के लोग सीखना चाहेंगे?
1: हाँ क्यों नहीं, आदमी सिखाना चाहेगा तो आदमी क्यों नहीं चाहेगा सीखने के लिए।
0: तो अगर जीविका की समस्या खत्म हो तो फिर तकनीकी समझ के बारे में सोचा जा सकता है, ये आप सबका कहना है?
3: ये आवाजें जो हमने सुनी उनमें एक बात समझ में आती है, डिजिटल नेटवर्क शहरी क्षेत्रों में नई उड़ान तो दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है, लेकिन लोगों तक उसकी पहुंच नहीं हो पा रही है। अब कारण शिक्षा भी है, जानकारियों का अभाव भी है और आजीविका भी, और एक घर में मौजूद दो लोगों का एक ही डिवाइस का एक दूसरे के साथ शेयर ना करना भी। ऐसे में अब मैं जुड़ रही हूँ विवेक नैयर जी के साथ में, जो 2 दशकों से ज्यादा डिजिटल फील्ड में ही अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। विवेक जी, आपका अनुभव क्या कहता है, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड एक तेजी से उभरती हुई समस्या दिखाई दे रहा है, और कैसे इसको रिजोल्व किया जा सकता है, आप कैसे देखते हैं इसे?
4: देखिए आरती जी, मेरे ख्याल से 80 करोड़ से ज्यादा लोग अभी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं,
3: जी
4: क्योंकि एजुकेशन का लैक है, एजुकेशन की कमी है थोड़ी सी लोगों में, लोग इतने अवेयर नहीं है चीजों को लेकर के, और एज गैप की वजह से डिजिटल डिवाइड हो रहा है, डिजिटल डिस्टेंसेस आ रहे हैं लोगों के बीच में।
3: जैसे
4: जैसे कि हम बात करें, हमारे घर में ही कोई बुजुर्ग होते हैं, उनको नहीं पता होता है कुछ चीजें यूज करना, और वो नहीं भी करना करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है उस चीज से। वो पूछते भी नहीं है कि आप अपने छोटे बच्चों से क्या पूछें, एक तो ये भी हेजिटेशन होता है, एक झिझक होती है उनके अंदर। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास एक तो ये है, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये है कि जितनी भी एप्स हैं या जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको यूज करना हर एक को नहीं आता है, और बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आता होगा। तो जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि मेरे हिसाब से कि वहां पर कुछ ट्रेनिंग वीडियोस डाल दिए जाए उनकी सर्विसेज को यूज करने के लिए। अगर ट्रेनिंग वीडियोस होंगी, जैसे बैंकिंग एप्स में तो होते हैं, कुछ गेम्स में भी होते हैं, लेकिन ये इतने यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि बैंकिंग एप्स भी तभी यूज कर पाएंगे जब उनको इंटरनेट बेसिक नॉलेज होगा, उनको स्मार्टफोन यूज करने का तरीका पता होगा। तो कम से कम उसका एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग वीडियो जरूर होना चाहिए, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को तो ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि अगर कोई सर्विस नई लॉन्च हो रही है या एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो भी हैं, उन सबके लिए ट्रेनिंग वीडियो मैंडेटरी हो जाना चाहिए। दूसरी चीज एक और भी है, जो वीडियो बन रहे हों वो मल्टीलिंगुअल हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हर एक को बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी या हर एक को बहुत अच्छी हिंदी आती होगी।
3: और अगर किसी रीजन बेस्ड सर्विस है तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा हो जाए,
4: रीजनल लैंग्वेज में हो जाए, या इनफैक्ट जैसे कुछ एप्स में आपने देखा होगा पूरी लिस्ट होती है कि आप कौन सी भाषा में सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो उससे आपका यूनिवर्सल ट्रेनिंग वीडियो हो जाएगा, एक ही वीडियो होगा, बस वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। तो दैट कैन बी अ गुड सॉल्यूशन फॉर एवरीबॉडी, फॉर द एंटायर नेशन।
3: बिल्कुल, आई थिंक आपने जो सजेशन दिया है विवेक नैयर जी, ये एक फ्रूटफुल सजेशन हो सकता है, अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये डिजिटल डिस्टेंस या ये जो डिजिटल डिवाइड है, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी के समक्ष जो संकट है, इसे तेजी के साथ रिजोल्व किया जा सकता है। वैसे इस डिजिटल डिवाइड को, इस गैप को भरने के लिए तमाम लोग इंडिविजुअल प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा ही एक प्रयास पिछले 1 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े एक शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर सत्यदेव सेंगर जी भी कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अभ्युदय योजना के तहत स्टूडेंट्स की तैयारी में भी मदद करके साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर भी डिजिटल लिटरेसी को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यदेव जी, आपका स्वागत करते हुए आपसे ये समझना चाहूंगी कि किस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं, ताकि आपसे प्रेरणा लेते हुए और भी तमाम लोग इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ा सकें और इस डिजिटल डिस्टेंस को कम कर सकें।
5: देखिए, सरकार अपने स्तर पे बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ही बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार भी एक अभ्युदय योजना करके UPSC के बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो उनके लिए एक योजना लेकर आई। पहले ऑफलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते थे, और अब ये ऑनलाइन में भी बड़े अच्छे स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो एक तो ये माध्यम है कि सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक डिफेंस फैक्ट्री क्रिएट कर रहा हूं, लगभग 1 लाख बच्चा मेरे साथ में ग्रामीण क्षेत्रों का, वो

0: से जुड़ा हुआ है जो ऑफलाइन में पैसा नहीं होता है जाने के लिए किसी भी संस्थान में, और वो अवेयर भी नहीं होता है। तो उन बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाना यूट्यूब के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी जहाँ पर लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनको पढ़ाई के संसाधनों को प्रोवाइड कराना, इस दिशा में मैं और मेरी पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पर बच्चे डिजिटली जुड़कर चाहे वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना हो या फिर उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके। साथ ही साथ हम ऑफलाइन माध्यम से भी स्कूल और कॉलेज में जाकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये बताते हैं कि आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके भी अपने शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं।
1: आपके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीदेव जी। दोस्तों, इस डिजिटल डिस्टेंस को खत्म करने के लिए बड़े प्रयासों की जरूरत तो है ही, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं को समझ करके उनमें सहयोग दे पाना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, और इन्हीं प्रयासों से हम डिजिटल डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स के डिजिटल डिस्टेंस, डिजिटल डिवाइड के दर्द को समझने वाली एक शिक्षिका भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। पिछले 7 सालों से शिक्षण क्षेत्र में ये कार्य कर रही है शालिनी भदौरिया जी ने अपने तरफ से जो प्रयास किए हैं वो सुनते हैं।
2: जिस तरह से अगर मैं बात करूँ अभी की, इस टाइम मौसम ऐसा है ना कि कभी आंधी आ जाता है, कभी बारिश आ जाता है, तो गांव में ना नेटवर्क इशू हो जाता है, तो बच्चों को ना इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं दालीडा डिफेंस सेफ्टी की एक टीम मेंबर हूँ, तो हमारे यहाँ से बच्चे ने एक ना लाइव एक कोर्स किया। हमारे यहाँ कोर्स भी जैसे कि बच्चे को कोर्स देते हैं कि परचेज वे में होता है, फ्री वे में होता है, सभी तरह से होता है, जैसा बच्चा अफोर्ड कर पाए। तो बच्चे का इशू ये था, उसने वो बैच तो ले लिया तो, लेकिन उसको जो वो जिस गांव में रहता था ना वहाँ पर नेटवर्क इशू हुआ था, तो उसको ना वीडियो डाउनलोड करने के लिए लगभग 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वो भी बाई साइकिल से जाता था। तो उस चीज को हमें मतलब उसने टीम मेंबर को बताया कि ऐसा सही इशू आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ ना प्राइवेसी होती है कि आप वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते, फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो टीम मेंबर का कॉल आया, फिर हमने उस चीज को ना उस प्राइवेसी को उस बच्चे के लिए हटा दिया। मैंने कहा कि भाई अगर बच्चा डेली इतना अगर 15 किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर अगर जाके वो डाउनलोड करेगा, इसके बाद भी अगर उसको वो चीज नहीं मिलेगी तो ये तो बहुत गलत चीज हो जाएगी। तो उस बच्चे के लिए हमने वो प्राइवेसी भी हटाई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो प्राइवेसी ज्यादा मायने नहीं रखती, बच्चे का भविष्य ज्यादा मायने रखता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, और छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी समस्याओं का हल निकल सकता है। शालिनी भदौरिया जी से प्रेरणा लेते हुए और तमाम लोग अपने अपने स्थान पर इस डिजिटल डिस्टेंस को कम करने का यदि प्रयास करें तो हम इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी के समक्ष बने संकट को तेजी से खत्म कर सकते हैं। पर जरूरी है कि इस पर हम सभी को विमर्श करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आज के विशेष अंक विमर्श में आरती के साथ इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और भरते रहिए अपने हिस्से की नई उड़ान।

तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल डिफरेंस यानी तकनीक तक पहुंच में अंतर भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ज़रूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा, इंटरनेट और तकनीकी सुविधाएं बराबरी से पहुंचे, ताकि कोई भी विकास की इस दौड़ में पीछे न रह जाए।

साथियों, कार्यक्रम में आइए अब बात कर लेते हैं थोड़े हमारे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन देता है, ताकि प्रदूषित पर्यावरण कई बीमारियों और समस्याओं का कारण बनता है, जबकि प्रदूषित पर्यावरण कई बीमारियों और समस्याओं का कारण बनता है। आज बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, पानी बचाने, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करने और स्वच्छता को बनाए रखने की ज़रूरत है।

साथियों एक छोटे से संदेश के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। वो संदेश ये है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही हमारे सुरक्षित भविष्य की पहचान है। इसी संदेश के साथ ही कार्यक्रम नई उड़ान को समाप्त करने का अब वक्त यहीं हो चला है। साथियों जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान मीडियम वेव के मीटर पर ही आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति से संबंधित कुछ सूचनाएं। थाना बौंडी जिला बहराइच से किरण दिनांक 1 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फीट, चेहरा गोल और इकहरा शरीर है। इनके बारे में कोई भी सूचना होने या मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता है प्रभारी निरीक्षक थाना बौंडी जिला बहराइच। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9129830226। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुने 9129830226। थाना नवाबगंज जिला बहराइच से सफीना पुत्री नूर मोहम्मद दिनांक 31 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। सफीना की ऊंचाई है 5 फीट 2 इंच और इकहरा शरीर है। इनके बारे में कोई भी सूचना होने या मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता है फुलारे उर्फ नूर मोहम्मद निवासी थाना नवाबगंज जिला बहराइच। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7800947933। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुने 7800947933। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं अब समाप्त हुई।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस

0: डरने से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: गच्छति तेन पश्चिम एशिया देशेषु वर्तमानस्य संघर्षस्य अपि शीघ्र समाधानस्य आशा प्रकटिता तेन उक्तं यत् यदि विवादः अधिकं वर्तते तर्हि महदहानि भविष्यति यूरोपीय नेतृभिः सह वार्तालाप विषये पृष्टे सति राष्ट्रपति पुतिनः अवदत् यत् तादृश्यः चर्चायाः कृते जर्मनी देशस्य पूर्व चान्सलर गेरहार्ड श्रोडर तस्य प्रिया नेता अस्ति पुतिनः एतदपि उक्तवान् यत् स्थायी शांति प्रस्तावस्य अंतिम रूपस्य निर्णयानन्तरमेव सः यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना व्लोदिमीर जेलेंस्की इत्यनेन सह मिलिष्यति शंघाई नगरे आयोजिते धनुष क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम् आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य लखनऊ सुपर जॉयंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरोति प्रप्रथमं क्रीडयता लखनऊ सुपर जॉयंट्स दलं अष्टक्रीडकानां हानिपुरस्सरं 3,200 धावनांकाः विनिर्मिताः सम्प्रति उभयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति मुख्यवार्ता पुनरेकवारम् अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्राय 94 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान् उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान् इति वार्ताः
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र शाम के 6:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी

0: पंचो जय हिंद।
1: पुनीता दीदी,
0: हाँ विवेक भैया,
1: देखो अपने गांव में यहाँ इतना अब नीक लागत है
0: हाँ।
1: कि अपन गांव छोड़ कहूँ जग मना ही नहीं करत है।
0: अरे भैया काहे जाओ, है ना,
1: बिल्कुल। अब देखो तमाम तन के अपन परिवार के बीच में रहो
0: हाँ।
1: अपने जो गांव वालिन के बीच में
0: हाँ।
1: रहो, जहाँ अपन काम काज जहाँ होए
0: हुए हाँ।
1: हुए जो ने बसेरा हो ही जाते
0: हैं,
1: लेकिन अब जौन है पहले रहा है कि
0: हाँ।
1: अपन काम काज करे के लिए बहुत दूर जाए पड़त रहे, मूल अपने आप गांवन में इतनी व्यवस्था हो गई है कि अब कमाए खातिर जरिया जौन है गावे में हुई गा है।
0: बिल्कुल भैया, अब भाई पहले रहा है तो छोट छोट हमारे सबके गांव होते रहे, गांव में कोई विकास नहीं होते रहे, सड़कें नहीं होती रहे, पक्की नाली नहीं होते रहे, तो कि
1: बिल्कुल
0: कोई अगर कोई उत्पाद बनाओ या कोई उतनका काम रोजगार करो तो एक लेके जावा कैसे जाए, साधन नहीं रहे उनका दूर तक ले जाए के, यानी कि बाजार जो उन रहा है वो हमारे गांव से नहीं हमारे घर से बहुत
1: बहुत
0: दूर
1: दूर
0: रहे
1: है।
0: हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल पड़ जात रहा है। तो कमाए खाए खातिर भैया, जब दो चार पैसा कमाए खातिर उनका जरूरत तो पड़ते हैं, तो हमका सबका घर से बाहर निकल जाए पड़त रहा है। लेकिन अब देखो जो है कहा था ना कि घर में यहाँ रोजगार है, अपने
1: बिल्कुल
0: गाँव में यहाँ रोजगार है, और जौन अपन उत्पाद होते उनका ले जाए के खातिर सब बढ़िया बढ़िया सब सड़कें बन गई हैं,
1: बिल्कुल।
0: जिनका अपन दूर तक बाजार तक आप अच्छे से ले जा सकते हो।
1: और जतनी देखो चीजें रहें, पहले दूर दराज जाए पड़त रहा लेख ली है, अब अपन गांव में यहाँ जाने सब मिले लाग है। तमाम जतने मनाई हैं सब काम काज पर लग चुके हैं, हमारा जो भारत सरकार है यो हम लोगों के साथ साथ में यहाँ खड़ी है। यह तहत जो ने तमाम तन की जो योजना निकाला करत है, तो वही में हम लोगों के यहाँ भैया आत्मनिर्भर भारत जो ने बनावे खातिर बढ़ावा दे रहा है।
0: बिल्कुल जो है विवेक भैया, भाई अपने सरकार क्या कहा था ना, अगुआ है हमारे मुखिया है, तो उनकी कोशिश यह होते है कि अपने देश के कोनों न कोनों तरह से तरक्की होए। उनके
1: बिल्कुल
0: खातिर न जाने कितनी योजनाएं, न जाने कितनी तरकीबें जैसे करी जाती हैं। अब जैसे हमें पंच कही कि कोनों काम करी, कोनों उद्यम करी, ठीक है, तो अकेले तो कहीं ना पीबे,
1: बिल्कुल
0: जहाँ उद्यम माने लोग
1: लोग
0: उनकी ताकत है ना, तो जब एक आदमी करी, दो आदमी करी है, चार आदमी करी है, तो वो चार आदमी करे, एक आदमी करे साथ है साथ चार आदमी इनके जो है आमदनी का जरिया खुल जाए। यह
1: बिल्कुल
0: हमारे अपन सरकार चाहते हैं कि जो नी चीज़ें हैं, जैसे जब काम वाली चीज़ें हैं, चाहे वो खेती किसानी खातिर हों, चाहे वो कंप्यूटर खातिर हों, चाहे वो गाड़ी मोटर खातिर हों, अगर उनमें लागे वाले कल पुर्जा हों, चाहे और कोनो जरूरत के सामान, कपड़े के बात कह लो, कहो के बात कह लो, तो वो अपने देश में यहाँ अगर उनका निर्माण हो लागे
1: बिल्कुल
0: हाँ, अगर अब वह जो हमारे गांव के बगल में यहाँ कोनो फैक्ट्री खुल जाए, तो उमा गांव के आदमी को रोजगार मिली कि ना मिली
1: सही कहो, बिल्कुल
0: हाँ,
1: मिली और कर
0: बिल्कुल मिली कि ना मिली
1: बिल्कुल
0: भैया।

0: मजदूर बिल्कुल नहीं जाए की जरूरत है अगर यहूद उनका कुछ काम करे है तो यह इतना अगर अपने देश में यह निर्माण हो लगी है तो और लोगन के यहाँ काम मिली और जब लोगन का काम मिली तो उनका आमदनी का जरिया बनी और घर परिवार स्थिति उनकी जो है वह सुदृढ़ हुई अच्छी हुई। तो अगर हम बात करी मेक इन इंडिया के तो वो मेक इन इंडिया जब मेड इन इंडिया हो जाए है ना जब अपने यहाँ जब चीजें बने लगी है तो की बात भैया बिल्कुल
1: और जब अपने यहाँ चीजें बने लगी तो अपन देश के अपने भारत के नाम रोशन हुई है और वह तन की चीजें जौन हम दूसर लोगन से खरीदी थे अपने देश बने लगे
0: और बेची हम
1: हाँ बेची तो अपने ही लोगन के यहाँ जौन है रोजगारों मिली है और साथ साथ में कहूँ जाग पड़बो ना करी और सब जौन है जुड़े रही हैं अपन गांव परिवार से रहे।
0: बिल्कुल विवेक भैया और तो ये जना है कि अगर हमारे की कोशिश होए अगर हम अपने देश के यार अपने राज्य के यार अपने जिले के यार अपने गाँव के इस वातावरण सृजित करी और वो हम सबसे हो थे भाई अगर हुआ से नहीं कोई योजना चली तो वह हम हर व्यक्ति के यहाँ सुधरक परी अपने आस पास के वातावरण के सुधारे खातिर वहां के चीजें सुधारे खातिर कि वहां के

0: जब अपने यहाँ जब चीजें बने लगी है तो की बात भैया बिल्कुल,
1: और जब अपने यहाँ चीजें बने लगी तो अपन देश के अपने भारत के नाम रोशन हुई है, और वह तन की चीजें जौन हम दूसरे लोगों से खरीदी थे अपने ही देश में बने लगे
0: और बेची है,
1: हाँ बेची तो अपने ही लोगों के यहाँ जौन है रोजगारों मिली है, और साथ साथ में कहूँ जाग पड़बो न करी और सब जौन है जुड़े रही है अपन गाँव परिवार से।
0: बिल्कुल विवेक भैया, और तो ये इतना है कि अगर हम की कोशिश हो, अगर हम अपने देश के यार, अपने राज्य के यार, अपने जिले के यार, अपने गांव के इस वातावरण सृजित करी और वो हम सबसे हो थे भाई, अगर हुआ से नहीं कोई योजना चली तो वह हम हर व्यक्ति के यहाँ सुधरे परी, अपने आसपास के वातावरण के यहाँ सुधारे खातिर, हुआ के चीजें सुधारे खातिर, कि हुआ करी परिस्थितियां ऐसी हो कि कोई आदमी हुआ से आकृष्ट होकर आवे और यहाँ कोई उद्यम और रोजगार शुरू करे, तब है ने भैया कुछ अच्छा ना हो तो आदमी हुआ खड़े ना हुआ चाहिए कि हम काहे यहाँ तक काम करी। तो ये हर व्यक्ति के हैं सब सोचे के अपने अंदर एक अच्छे नागरिक के यार वो पैदा करे के यहाँ है कि अगर हम अपने देश में रह रहे हैं तो अगर हम सड़क पर गाड़ियों चला रहे हैं तो हमका वह के तौर तरीका आवे चाहिए, हम कोई से व्यवहार कर रहे हैं तो हमका वह से नहीं अच्छे तौर तरीका आवे चाहिए,
1: हाँ या कोनो उद्योग चालू कर रहे हैं करना चाहिए थे तो उनकी भैया जो है पूरी जानकारी
0: चाहिए
1: अच्छे से
0: ईमानदारी चाहिए, तब है कोई चीज कहूँ जो है अच्छे से पनप पावत है। और भैया देखो कि अब आगे वाले दिन में अभी तो जो बरखा हुई गए वो तो हुई गए हैं, वो तो वैसे कुछ दबाव कहूँ इधर उधर मौसम में बरत है तब बरस जाते तो खैर बिन मौसम हो गया रहा है मुला। अब जब अपन मानसून आई अपने के यहाँ बरखा हुई, उससे पहले यह बिरिया आई है कि हमका सबका जो है सतर्क हो जाए है कि जब पानी बरसे, जब वो अमृत बरसे तो हमका उका कहूँ और नहीं जाए देख है, उका संरक्षित करे है अपने खेतवन में, यहाँ खेतवन में यहाँ तो भाई नहीं हो सकत फसल होते, उसके साथ जैसे तालाब हैं उनका उद्धार पुनरुद्धार कर लिया जाए, और जो कुछ जहाँ भी हम कर सके थे जैसे पानी गिरा बही के चला गया वो के यहाँ
1: कहें, मतलब यू है कि जल का संरक्षित करे,
0: हाँ उका अभय से हमका सबका सोचे के यहाँ है कि जो पानी बरसे वो कहूँ और ना जा पावे
1: और पानी के जोन बर्बादी ना होए और ना करी।
0: बिल्कुल भैया
1: हैं, तो आज देखो है इतवार,
0: हाँ है
1: आज अपन जोन है बैठकी में ही है लोक भाषा कवि गोष्ठी या कविता पाठ या कहानी पाठ कुछ ना कुछ लेके आवा जाते
0: हैं। आज है कहानी है ना जिसका शीर्षक है कहूँ कम कहूँ ज्यादा। भैया देखो यहूं में गांव के विकास के बात है कि अपन सब गांव तरक्की कर चुके हैं, बोल कहूँ कम भाई कहूँ ज्यादा है, तो भैया सुनी जाए यह कहानी लायक राम मानो भैया से।
2: मनोज के बदली जब लखनऊ भय तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गए। लखनऊ ते उनका गांव छनरौली बहुत नज़दीक पड़त रहा है, बस 60 कोस दूर। बस पर बैठो और 2 घंटा में पहुंच जाओ, रेलों के सुविधा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब लखनऊ में विनोद के यार साथ फिरते मिल जाई। विनोद और मनोज लखनऊ में एक साथ एक कॉलेज में पढ़त रहे हैं, एक ही जगह कमरा लेके रहत रहे हैं, साथ है बनावत खात रहे, इंटर बीए एमए पास कैके साथ है साथ 2 साल नौकरी के तैयारी की हिन। फिर जब नौकरी लागी तो एक साथ एक विभाग में लागी, मूल तैनाती भय अलग अलग, विनोद के मुरादाबाद और मनोज के बनारस। तब ते 15 साल बीत गए, दोनों जने अलगे अलग रहे। अब की बार 6 महीना पहले विनोद बदली होके लखनऊ आए, संजोग ते अब मनोजो लखनऊ पहुंच गए, दोनों जने फिरते साथ हो गए। कुछ दिन बाद एक दिन मनोज बोले, यार विनोद तुम अपने घरे कब ते नहीं गए हो, का बताए यार बहुत दिन हो गए, लागत है अब क्यों बार होलियों में यहाँ न जा पाइबे, सारी सीटें फूल हैं, बड़ी मारा मारी है। तो एक काम करो, अब की हमारे साथ हमारे गाँव चलो, होली हमारे साथ मनाओ, मजा आ जाई। यो सुनकर विनोद उछर के खड़े हो गए, बोले नाही भैया तुम्हारे साथ तो बिल्कुल न जइबे, हमका माफ करो, हम हिये परे रहिबे, मूल जइबे न तुम्हारे साथ। 25 साल पहले तुम्हारे गांव जाए के भुगत लिहन। विनोद के हालत देख के मनोज बोले, अच्छा का भुगत ली लो बताओ जरा। विनोद कहें, अच्छा जैसे तुमका कुछ पता ही नहीं, बारिश के दिन रहें गांव के बाहर रास्ता में पानी भरा रहा है, पैंट उतार के जांघिया पहने पहने वही का कौनी तरह पार किए, आगे गए तो एक जगह बिछुल

नरिया में गिर पड़े, हाथ मुंह कपड़ा सब चाहला कीचड़ में सान गे। गांव के लड़का ताड़ी बजाय बजाय हंसे लागी। और गजब तो तब होइगा जब हमार होलिया देख के चार पांच ठें कुकुर दौड़ाएलिन। जब भागत भागत कौनी तरह घर पहुँचन तो तुम्हू खूब हंसे रहो। सब कुछ याद के मनोज आपन हंसी नहीं रोक पाइन, मुंह फार के हंस पड़े। उनका हंसत देख विनोद और बिदक गए। तुमका हंसी सूझ रही है, हम हुआ गर्मी के मारे पूरी रात सोए नहीं पाएन। मच्छर नोच नोच का पूरा खून पी गए। सवेरे उठ के भाग नाई तो बीमार पड़ जाई थी। मनोज बड़ी मुश्किल से आपन हंसी रोकिन और विनोद के कंधा पकड़ के तखत पर बैठाइन। कहिन गुस्सा शांत करो यार, 25 साल पहले के बात हुई गए, अब चल के देखो कितना मजा आवत है। विनोद हाथ जोड़ दिहिन, आपन मजा अपने पास रखो भैया, हम कतई न जेबे तुम्हारे साथे। मनोज बड़ी मान मनोवल किहिन, दोस्ती का वास्ता दिहिन, कहिन तुम चलो जरूर हमारे साथ। हुआ ना नीक लागी तो तुरंत दूसरी बत्ते लौट आयो। तब विनोद कहिन चलो ठीक है, तुम्हारी दोस्ती के खातिर चल रहे न है, मूल हमका ठीक न लागी तो जबरदस्ती न रोक्यो। फिर का दोनों जने तैयारी किहिन और बस पकड़ के चल पड़े। 2 घंटा बाद जब बस्ते उतरे तो हुआ का नज़ारा देख कर विनोद भौचक रह गए। उनका देख के हुआ खड़े ई रिक्शा वाले बुलावे लाग, आओ छनरौली, लसवा, भवनियापुर, मनिकापुर, आओ कहाँ जी हो। विनोद का लेके मनोज एक ई रिक्शा पर बैठ गए। पक्की रोड पर ई रिक्शा वाला फरफर फरफर 10 मिनट में छंदरौली पहुँचाए दीस। विनोद नीचे उतरे तो भौचक्के होके गांव का घूर घूर देखे लागे। मनोज कहिन का भाई विनोद, कौने सोच में पड़ गयो। विनोद कहे लाग यार मनोज, विश्वास नहीं होत कि यो वह गांव आए जहां हम 25 साल पहले आए रहन। गांव तक पक्की रोड, आवे जाए के साधन, कच्चे टूटे घर की जगह पक्के घर, गांव के अंदर बढ़िया खड़ंजा, पक्की नाली। अबे का देखे हो विनोद बाबू, जरा सबर करो, धीरे धीरे सब पता चल जाई, गांवन के बारे में तुम्हार सोच बदल जाई। चलो अब घर चलो। दोनों जने घर पहुँचे तो खूब जोरदार स्वागत भवा। मनोज के अम्मा बाबू उनके खूब आओ भगत किहिन। 25 साल पहले जब आए रहें तो टूट फूट कच्चा घर रहा है, आगे छपरा रखा रहा है। मनोज की अम्मा खाए के लिए नमकीन सेव और पिए के लिए राप का शरबत बनाए के लाई रहें। मूल अब देखो, कच्चे घर की जगह पक्का दुमंजिला घर, बैठे के लिए बढ़िया सोफा, ऊपर छत वाला पंखा। विनोद यूसुफ सोचते रहें कि तबहिन मनोज के अम्मा पानी पत्ता लेके आए गई। स्टील के गिलास में पानी, कपमा चाय, गुजिया, पापड़, नमकीन और गर्मा गर्म पकौड़ी। वाह मज़ा आएगा वाह। रात में जब खाना पीना खाए के लेटे चले तो मनोज मच्छर वाली मशीन लाए के लगाए दिहिन। कहिन लो विनोद भाई, अब ना मच्छर नोची हैं न गर्मी लागी, आराम से सुआओ। मूल तबहिने बिजली चली गए। विनोद कहिन लो भला, अब का हुई। मनोज बोले चिंता के कौनी बात नहीं, इन्वर्टर है ना, तब तक उसे काम चली, घंटा खान में बत्ती आ जाई, अब सो जाओ। इस तरह रात खूब आराम से कटी। दूसरे दिन खूब रंग खेलिन, पूरी कचौरी गुजिया पापड़ उड़ाइन। शाम हुवत हुवत पूरा गांव उमड़ पड़ा होली मिले। विनोद गांव के होरी पहली बार देखिन रहे, सब कुछ अजूबा जैस लागत रहा। इतना अपनापन, इतनी आओ भगत कि कुछ पूछो नहीं, कौनो देखावा नहीं, कौनो बनावटीपन नहीं, भाई वाह। विनोद यह सब देख देख के मगन रहें तबहिन फाग मंडली आए पहुँची। ढोल मंजीरा झांझ के साथ मनोज के द्वारे मंडली बैठ के फाग गावे लाग। फाग की मस्ती में भरोसे काका अपने आप को रोक नहीं पाइन और उठ के नाचे लाग। ई उम्र में उनके ठुमका और जोश देख के सबके हाथ पांव फड़के लाग। मूल पता नहीं का भवा कि थोड़ी देर बाद काका धड़ाम से गिर पड़े और बेहोश हो गए। अचानक रंग में भंग होइगा, ढोल मंजीरा फाग सब बंद होइगा। सब लोग दौड़ पड़े। प्रधान जी तुरंत एम्बुलेंस का फोन कर दिन।

0: तब तक विनोद दौड़ के गिलास में पानी ले आए और काका के मुंह पर छींटा मारे लागी। थोड़ी देर में काका का होश आ गया, वे उठ के बैठ गए। कहे लाग, चिंता न करो, हम ठीक हन, बस ऐसे तनुक चक्कर आ गवा रहा है और कुछ नहीं, चलो फाक शुरू करो। तबहिन सायरन बजावत एम्बुलेंस पहुंच गया है। काका बोले, अरे वाह, तुम लोग तो हमका अस्पताल पहुँचावे का इंतजाम कर दीन हो, इके जरूरत नहीं है, हम अब ठीक हन। जब सबका इत्मीनान होएगा कि काका बिल्कुल ठीक हैं तो ढोल मंजीरा फाक फिरते शुरू होएगा। दूसरे दिन नाश्ता पानी के बाद मनोज कहिन, कहो विनोद भाई, 25 साल बाद कई लाग हमार गांव, का बताई मनोज भाई, हमका तो सब सपना जैस लागत है। बिना गांव देखे सुने कोई सोच भी नहीं सकत है कि गांवन का कितना विकास होएगा है, कितना बदलाव आए गवा है। बिजली, पंखा, इन्वर्टर, पक्की सड़कें, पक्के घर, अरे का नहीं है, हर घर में टोंटी वाले नल लगे हैं, शौचालय बने हैं, गैस सिलेंडर में खाना बन रहा है, यहाँ तक कि सबके पास मोबाइल फोनों है, लोग इंटरनेट और फेसबुक चलाए रहे हैं, भाई वाह, मन खुश होएगा। मनोज कहिन, इतने नहीं विनोद बाबू, अबे तो तुम खाली गाँव देखे हो, खेत खलिहान तो देखबे नहीं कि हो, जोताई बोआई कटाई मड़ाई के जौन काम 2-3 दिन में पूरे होत रहे, वे अब 2-3 घंटा में हो जात हैं, अब सारा काम मशीनन से होए लाग है। अच्छा एक बात बताओ मनोज भाई, इतना सब विकास सब जगह भवा है कि खाली कुछ है गाँवन में? मनोज कहिन, विकास तो भैया सब जगह भवा है, बस यो है कि कहूँ कम कहूँ ज़्यादा, अब पहले जैस गांव कहूँ नहीं है, कहूँ सब तरह के सुविधा पहुँच गई है और कहूँ पहुँच रही है, अब सब जगह एक साथ तो नहीं हो सकत है ना। सही कहो यार, हम बहुत डराइत रहन गांव आवे माँ, मूल अब तो मन करत है कि हिये रह जाई। तबही मनोज की अम्मा आए परी, बोली, कौनी बात नहीं बेटा, तुम्हारे घर है, जब चाहो तब आ जाओ और जितने दिन चाहो उतने दिन रहो। वही के बाद दोनों जने अम्मा बाबू के पांव छुई के आशीर्वाद लिहिन और चल पड़े लखनऊ खातिर बस पकड़े।
1: विवेक भैया,
2: हाँ पुनीता
1: भैया, देखो गांव के रे विकास से भरी या कहानी, कहूँ कम कहूँ ज्यादा, ई कहानी के खातिर लायक राम मानो भैया के हैं बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ब्याह गुण चल रहे हैं,
2: हैं? और सुना जाए द्वारा चार गीत, हाँ। आई आई रे भरतिया जनक नगरी, हाँ। जी का सुनाए रही है वंदना मिश्रा बहनी।
1: बिल्कुल।

0: बड़ी बहू,
1: ये तुम्हारे नाम।
0: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
0: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी, आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पुनीता दीदी।
7: हाँ विवेक भैया।
6: अब चलो खेतवा के रवर।
7: हाँ भैया, खेतवा में बहुत जाते हैं।
6: काहे सिर काम बहुत पड़ा रहा खेतवा में ही है।
7: हाँ।
6: और आजकल तनी मौसम ठीक ठाक रहा है।
7: हाँ।
6: कि अपन जौन बचा कुचा काम है वही का हम लोग जल्दी जल्दी अपन खेतवा से निपटाए सके।
7: हाँ भैया, तनिक से जुड़ रहा ना मौसम।
6: हाँ।
7: के वजह से सब जौन है वो निपटावे में अच्छा लागत रहा।
6: बिल्कुल। अब देखो तमाम तन के जो खेतों में यहाँ काम रहा है कि जो हम अगली हम लोग फसल ले रहे हैं वही को देखे है।
7: हाँ।
6: और साथ साथ में यहाँ जो बची जो हम लोग इनके जो पिछड़ फसल जो रहा है।
7: हाँ।
6: वही के जो अवशेष बचे हैं।
7: हाँ।
6: वही को हम लोग इनका सुरक्षा करे है कि वही की सुरक्षा ऐस करक है कि हम कुछ वही का बनाए सकी जिससे कि हम लोग अगली फसल में कुछ ना कुछ उमा प्रयोग कर सकी।
7: बिल्कुल भैया, तो देखो जैसे अब गेहूं रहा जो मुख्य फसल अगर हमारा तैयार भर रहा है तो उमा तो गेहूं रहा है।
6: बिल्कुल।
7: गेहूं के काम हो तो हम पंच साल भर परेशान हुए थे, हल्ला मचाई थे कि चारा नहीं है, चारा नहीं है।
6: हाँ।
7: चारा नहीं है मूल गेहूं का हो तो एक तो मशीन से जब कटत है तो भैया भूसा मिल नहीं पावत है तो उसकी खातिर हाथ से काटा जाए, फिर थ्रेसर में यहाँ मड़ाई हो तो भूसा मिल जाते, तो हमको सबका भूसा इकट्ठा करे के यहाँ चाहिए, कोशिश करे के चाहिए कि हम अपने भूसा के यहाँ बचा ली क्योंकि साल भर खातिर हमने हरहन करे कामे आवत है। तो एक तो वो हो जाते उसके अवशेष का प्रबंधन ये हो जाते कि हम चारा के रूप में उनका इस्तेमाल कर सके थे। उसके अलावा तमाम औरी फसलें होती हैं जैसे चना होते, चना है, सरसों है, इनकी चीज़ें होती हैं जिनकी जिनका जो अवशेष होते तो वो जंगरा के रूप में है मिलते है, इतना मिलते है, तो तमाम इस हमारी फसलें होती हैं जैसे हमारी क्यारी में है कोनी फसलें हैं बीच में यहाँ हमका जरूरत है तो पानी जो खरपतवार ना हो पावे तो हम मल्चिंग यानी कि उका अगर हम बिछाए दी थे तो हमारे खेतवन में नमी भी बनी रहते और जो है खरपतवार भी नहीं उग पावत है। तो एक देखो यू एक तरीका हो जाते और तमाम भैया झकरा के अगर हम अर्री के बात करी तो जब तैयार हुई तो झकरण के प्रयोग देखो कितना बढ़िया। पहले का होता रहा जब बरिखा होता रहा खेती में हम पंच को काम नहीं कर पाते रहे तो भैया वही नुइया डलैया चंगरिया डलिया जोन खेती करे काम होती रहे और गुरुन के यहाँ चारा देकर काम जो झुआ आवत रहे वो सब बैठ के यहाँ मखना बना के
6: बनावा
7: जात रहा है,
6: बुनाई होत रहा है।
7: हाँ, उनकी बुनाई होत रहा है। तो अब जब जमाना बदल गया है थोड़ा भाई हमारा सब कुछ रेडीमेड बाजार में है मिले लाग है तो हम उनका ले आई थे उठावा धरे में वही हल्के होते हैं तो लेकिन उनका सजावटी सामान में कितना बढ़िया प्रयोग हो लाग है उनका जो है ये जो अपन मूंज है पूंजा है ये तो खैर अगर अवशेष ना है हमारे जो मुड़िया पे यहाँ हो जाते हैं लेकिन इससे कितने बढ़िया बढ़िया सजावटी चीजें बन करके देखो तो मन मोह लेते हैं तो इतना है। और बाकी भैया अगर वो छोट छोट अवशेष कोनो है तो उसे जैविक खाद बनाई जाए।
6: यह है। हाँ बिल्कुल।

0: जैविक खाद के यहाँ प्रयोग हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर
1: हाँ
0: सके थे, कि हम लोगन के यहाँ कुछ जोन है उर्वरक रासायनिक डाले ना पड़त है,
1: हाँ
0: और अपन जोन है फसल जोन है इससे सुरक्षित रहा थे,
1: हाँ
0: वही की स्वास्थ्य में यहाँ कोई ना कोनो दिक्कत होते है, ना ही माटी में यहाँ कोनो तकलीफ होते है।
1: पर्यावरण जो है सुरक्षित रहा थे
0: बिल्कुल, तो
1: यानी
0: सबसे बढ़िया जोन है चीज है कि अपन जैविक खाद के यहाँ जोन है के रूप में तैयार किया जाए और जोन अपन फसल में यहाँ उपयोग कर सके।
1: हाँ जो कुछ इतना बच रहा होए तो वो करेक्ट का नहीं है, जलावेक नहीं है।
0: जलावेक नहीं है।
1: हाँ कि
0: हाँ
1: जलावेक नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: उसके अलावा हम जोन कुछ प्रयोग कर सके थे है तो उनका हमका सबका करेगी यहाँ है और अपनी खेती में यहाँ जो कहा था ना एकदम खेती से नहीं निकले खेती में यहाँ रहा है और भैया वह में यहाँ अगर जो है उनकी
0: बढ़ोतरी हुई रही है।
1: जोताए
0: हाँ
1: दियो अगर वह में
0: हाँ
1: यहाँ जो जो दिन जाते तो सड़ जाते तो भैया अपन जो है माटी कत्ती
0: और
1: बढ़िया।
0: कहे खोते कि जो है यू सड़ जाते तो यू हम लोगों के खातिर बेकार हो जाते, मूल वह हम लोगों खातिर सोना है उठे कि हम लोगों के लिए जो है कितना बढ़िया उपयोग प्रयोग कर सकी थे वही
1: और
0: का।
1: भैया देखो अब जैसे घर घर में यहाँ मशरूम उत्पादन कत्ता बढ़ रहा है, जगह जगह उनकी कत्ती मांग हो गए हैं
0: बिल्कुल।
1: और वो में यहाँ जो है यह सब तो घास फूस भूसा और ये जब सब लागत
0: डारा
1: है
0: जाते हैं।
1: फसल के
0: हाँ
1: अवशेषे तो लागत है
0: बिल्कुल।
1: तो भैया जो कोई अगर हमका नई मशरूम क्या उत्पादन करे है तो जो कोई अड़ोस पड़ोस में कर रहा
0: कर
1: हो
0: रहा।
1: अगर वो
0: हाँ
1: का जरूरत है तो उसे
0: बिल्कुल।
1: संपर्क करके अगर हम ऊका दे दें जाए भैया जलायस तो कोई फायदा नहीं है, जलायस तो हर
0: उससे
1: तरह
0: अपन
1: से।
0: जो है पर्यावरण के नुकसान होते हैं, अपन माटी के नुकसान होते हैं और अपन आसपास के जो फसलन कहीं हैं होते हैं उन्हों नुकसान होते हैं, तो इन सब चीजन से बचे चाहिए और अपन जो है इका जैविक तरीके से प्रयोग करे चाहिए।
1: पर करेक्ट चाहिए बिल्कुल, अगर हमार बच रहा है जैसे
0: हाँ हाँ
1: चारा से बच रहा है सब चीजन से बच रहा है हमारे
0: बिल्कुल।
1: पास अरहा गुरु नहीं है और भाई फसल वशेष तो सबके पास है, हम
0: बिल्कुल।
1: सब जने किसान हैं सबके पास है खेती कुछ ना कुछ जो पैसा भा तो इतना देखा चाहिए कि का कितना हम इसका उपयोग जो है वो कर
0: कर
1: सके थे।
0: सके थे।
1: और भैया ऐसा ही देखो अपने आसपास मतलब लखनऊ के आसपास जो है मेंथा को बढ़िया जो है
0: उत्पादित हो
1: उत्पादित हो
0: रहा
1: रहा
0: है।
1: है।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो
1: तो
0: अपन जौन है बैठकी में यहाँ सफल किसान आए हैं हरक चंद्र वर्मा भैया, तो जौन बताई हैं मेंथा उत्पादन के सफलता के कहानी जिससे बतकही करी ने करी है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो सुना जाए इनकी सफलता के कहानी और अपन अगर वो करना चाहते हैं तो वह कहूँ ना कहूँ ये सीख लेन जाए।
1: बिल्कुल
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो औषधीय फसलों की खेती के लाल हैं, हरक चंद वर्मा भैया। आप सीतापुर जनपद के महमूदाबाद ब्लॉक के बम्भौरा गांव के रहने वाले हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरक चंद भैया, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और औषधीय फसलों की खेती मेंथा उत्पादन से जुड़ाव हुआ कब से?
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, हम इंटरमीडिएट पास किया है और इसके बाद करीब 20 सालों से मेंथा की खेती कर रहे हैं,
2: लगातार।
3: लगातार कर रहे हैं। मेंथा है और गेंदा है, खस है, इसकी खेती कर रहे हैं।
2: ये साफ फसली खेती करते हैं क्या?
3: सही फसली खेती करते हैं, लेकिन इस साल हम मेंथा सिम उन्नति प्रजाति की लाए थे सीमेप के माध्यम से, जो बहुत ही अच्छी वरायटी है, इसमें तेल भी बहुत अच्छा निकलता है, तो हमने लगाए हैं 2 एकड़ में। पिछले साल भी लगाए थे, इस साल भी लगाए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है।
2: जो 2 एकड़ आपका मेंथा है सिम उन्नत प्रजाति का,
3: जी
2: तो मेंथा के साथ और कौन कौन सी सब फसल लिए हैं?
3: मेंथा के साथ में हमने खस लिया है और मेंथा के साथ में हमने लेमन ग्रास भी लिया है, 2 फसलें लिया है मेंथा के साथ
2: अच्छा,
3: में।
2: लगातार आप मेंथा उत्पादन से जुड़े हैं, खस और लेमन ग्रास और अन्य औषधीय फसलों की खेती से जुड़े हैं। मेंथा की रोपाई और उसके पहले खेत की तैयारी से लेकर के रोपाई में कौन सी बारीकी करते हैं?
3: खेत तैयार करने में बढ़िया बराबर खेत हो, भुरभुरी मिट्टी बनने वाला खेत हो, जुताई करके और क्यारीदार बना देते हैं, फिर उसमें पानी छोड़ देते हैं, मेंथा हम पौध लगा देते हैं और मेंथा की पौध हम फरवरी में बना करके तब हम रोपाई करते
2: क्या
3: हैं।
2: पहले नर्सरी बनाते
3: पहले
2: हैं?
3: से पौध बना लेते हैं, 1 एकड़ में लगभग 35 किलो जड़ लग जाती है हमारी।
2: अच्छा,
3: हाँ
2: और
3: तो
2: फिर कितने दिन में नर्सरी तैयार हो
3: लगभग
2: जाती?
3: 25 दिन में हम तैयार करके और रोपाई कर देते हैं।
2: रोपाई में कौन सी बारीकी करते
3: रोपाई
2: हैं?
3: में बारीकी ये होती है कि रोपाई करते समय हम उसमें कोई खरपतवार न होने पाए और पानी सब कहीं समतल खेत में बराबर पहुंचता रहे, मेड़ भी सही ढंग से बनी रहे, पानी भरने से ना गिरने पाए।
2: क्या मेड़ पर बुआई करते
3: जी
2: हैं?
3: हाँ, हम मेड़ पर काम करते हैं, जो पानी औसत के अनुसार जो जितना मेंथा को चाहिए उतना पानी मिल जाता है आसानी से।
2: लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी करते कितना है?
3: लाइन से लाइन की दूरी करीब हम 1.5 फीट रखते हैं, पौध से पौध की 10 इंच।

0: इंच के आसपास रखते हैं।
1: 10 इंच
0: हाँ, 10 इंच
1: यानी
0: के आसपास।
1: लगभग 25 सेंटीमीटर।
0: हाँ, 25 सेंटीमीटर रखते हैं।
1: तो इस समय 2 एकड़ जो मेंथा सिम उन्नत प्रजाति का आपके खेत में है,
0: जी,
1: कैसा चल रहा है?
0: बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ है, बहुत अच्छा चल रहा है
1: और
0: उसमें कोई।
1: आपने कहा कि सफसली खेती भी किए हैं, तो उसका अंतरण कैसे करते हैं?
0: उसका अंतरण फरवरी में खस लगा देते हैं, फिर दूसरे दिन हम मेंथा उसके साथ में लगा देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो खस के साथ में मेंथा, दोनों को पानी बराबर मिल जाता है।
1: कितनी लाइन मेंथा और उसके बाद कितनी लाइन आप खस की लगाते हैं?
0: करीब 1.25 फीट हम खस लगाते हैं लाइन से लाइन, फिर उसके अंदर 3 इंच छोड़कर फिर मेंथा लगाते थे खस से, दोनों लाइनों के बीच में मेंथा 2 लाइनें लगा देते।
1: लेमन ग्रास में
0: लेमन ग्रास के इसी तरह करते हैं कि 1.25 फीट लेमन ग्रास लगा देते हैं फिर मेंथा के
1: फसल की
0: लिए।
1: भूख मिटाने के लिए कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक की मात्रा देते हैं एकड़ पीछे?
0: 1 एकड़ में 1 बोरी DAP डाल देते हैं और करीब 1 बोरी यूरिया डाल देते हैं, और फिर बाद में नैनो यूरिया का हम छिड़काव कर देते हैं,
1: और नैनो DAP?
0: नैनो DAP भी डाल देते हैं, वो छिड़काव
1: क्या
0: कर देते हैं।
1: पौध की जड़ का शोधन भी करते हैं?
0: शोधन नहीं करते हैं, ऐसे केवल रोपाई कर देते हैं जो अच्छा ग्रोथ चलता रहता है।
1: जो आप नैनो DAP और नैनो यूरिया तरल का प्रयोग करते हैं,
0: जी,
1: उसका फसल पर क्या प्रभाव?
0: बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, कम लागत लगती है। डाई यूरिया ज़्यादा लेने से ज़्यादा पैसा लगता है, इसमें कम पैसा लगता है, जो हमारे पौधे को ग्रोथ अच्छा करता है, और 1 एकड़ में लागत भी इसकी कम आती है तरल का।
1: तो फसल की प्यास कितने दिन की अंतर पर मेंथा में मिटाते
0: फसल से
1: हैं?
0: पछुआ हवा जब ज़्यादा तेज चलने लगती है तो 1 हफ्ते बाद पानी लगता है, अगर पछुआ हवा कम चलती है
1: या
0: तो
1: पुरवा है
0: पूर्वा है तो उसमें 15 दिन पर पानी लग जाता है।
1: तो इस
0: और
1: समय फसल रौनक पर है?
0: इसमें फसल रौनक पर है, इसमें खरपतवार निकला था तो उसमें हमने एजिल दवा आती है जो खरपतवार नाशक है, उसमें एजिल डाल देते हैं तो खरपतवार हमारा चला जाता है।
1: तो क्या अलग से निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती?
0: अलग से निराई गुड़ाई की बहुत कम आवश्यकता है, मतलब 20% की आवश्यकता पड़ती है। अगर नागर मोथा हो जाता है तो उसमें हम उसकी दवाई डाल देते हैं नागर मोथा की, और खरपतवार अलग हुआ तो उसकी हम वही एजिल का प्रयोग कर देते हैं। अगर कीड़ा लग जाता है, मान ली मेंथा में कीड़ा लग गया, उसमें हम मिसाइल दवा और रेसर दवा आती है जो हम डाल देते हैं, पौधे का ग्रोथ अच्छा होने लगता है और अच्छा चलती है हमारी पौधे।
1: आगे कौन कौन सी देखभाल आपको मेंथा के साथ सहफसली खेती में करनी?
0: देखभाल हमको यही करनी है कि न खरपतवार होने जाए, समय से उसमें पानी लगना चाहिए, पानी की दिक्कत कोई होनी चाहिए, और कोई कीड़ा और कोई फंगस उसमें न लगने पाए जिससे हमारी फसल पैदा हो
1: क्या
0: और अच्छा।
1: सुरक्षात्मक छिड़काव भी करते रहते हैं?
0: हाँ, छिड़काव करते हैं तो आवश्यकता के अनुसार हम छिड़काव का प्रयोग करते रहते हैं दवा।
1: चूंकि पिछले 20 सालों से आप मेंथा पैदा कर रहे हैं और एक मेंथा के लाल भी हैं,
0: जी हाँ,
1: तो ये बताएं कि एकड़ में कितना लागत गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: 1 एकड़ में हमको सिमुन्नति से करीब 70 किलो तेल, 75 किलो तेल हमको मिल जाता है, और उसमें लागत करीब 20-22 हज़ार के रुपये के आसपास आ जाती है। मुनाफा हमको करीब 45 हज़ार रुपये लगभग मिल जाता है। कभी कभी 45 हज़ार मुनाफा मिला, कभी कभी 50 हज़ार मुनाफा मिला। तो इस
1: जैसा रेट
0: तरह
1: रहा।
0: जैसा रेट रहा, रेट के ऊपर किसान तो केवल रेट के ऊपर निर्भर रहता है, फसल तो अपनी पैदा करता है। जी,
1: ये बताएं कि पहली कटाई कब से चालू करेंगे?
0: पहली कटाई हम लास्ट मई से चालू करेंगे, और जो जून तक हमारी पिराई करके तेल सब निकल आएगा, और इसकी टंकी लगभग 4 घंटे चलती है जो तेल हमको मिल जाता है बढ़िया
1: तो
0: अच्छा।
1: डिस्टिलेशन अपने यहां करते हैं?
0: हाँ, अपने घर पर लगाए हैं प्लांट उसका डिस्टिलेशन का, जो उसमें अपनी है तो उसमें, और अपना तेल निकाल लेते हैं, फिर दूसरे लोगों का के तेल निकाल देते हैं।
1: कौन कौन सी बारीकी करते हैं मेंथा की पेराई में?
0: पेराई में बारीकी करते हैं कि टंकी में जो पानी नीचे रखा जाता है 1 फीट में, वो पानी बराबर समतल बना रहे, पानी उसमें कम ना होने पाए, और स्टीम जो निकलती है उसकी भाप बाहर ना निकलने पाए, उसके अंदर वो जो कॉयल कंडेंसर होता है वो इतना गर्म हो कि बाहर उसका भाप न जाने पाए, अंदर ही भाप बनी रहे, और पानी उसको ठंड करने के लिए बार बार देना होता है। यही सब विशेष बारीकी ज़्यादा होती हैं। और जो झोकाई भट्टी होती है वो बराबर कंटिन्यू 4 घंटे तक चलती रहे जिससे तेल हमको अच्छा प्राप्त हो जाता है।
1: जो आप तेल पैदा करते हैं उसको बेचते कहाँ हैं?
0: उस तेल को हम, महमूदाबाद हमारे पास शहर है 1-5 किलोमीटर दूरी पर, तो वहाँ हम बेच देते हैं।
1: भाव अच्छा मिल जाता है?
0: हाँ, भाव मिल जाता है जब, ये तो भाव पूरा महमूदाबाद का रेट है जो होता है, तो वही मिलता है हमको भाव।
1: जो आपका अब तक का तजुर्बा है मेंथा उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: और किसान भाइयों बहनों को हम यही सलाह देते हैं कि

0: ये 4 महीने की फसल है, और आप जब मेंथा रोपाई शुरू कर देते हैं या मेंथा लगा देते हैं, इसके और मेंथा पेराई तक आपको कुछ पैसा दुकानदार भी दे देते हैं। इसमें विशेष बात है कि हमको 2000 चाहिए, हमको 10000 रुपए चाहिए, तो दुकानदार पैसा भी दे देते हैं इसके लिए, क्योंकि ये सिक्का है फसल का। जैसे फसल पैदा हुई, तेल निकला, तो ऐसे तुरंत बिक जाता है। इसमें कोई बिकने में कोई परेशानी कहीं नहीं है, तेल बिकने में कोई कहीं पर दिक्कत नहीं है, इसलिए किसान को मुनाफा अच्छा मिल जाता है, और इसलिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक फसल है कि बिकने में कोई दिक्कत नहीं कहीं पर। चाहे रात को बिके तेल, चाहे शाम को बिके, चाहे दोपहर में बिके, इसमें कोई दोराय नहीं है तेल बिकने में।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर 6394667225 6394667225
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी बारे में?
0: सफलता की कहानी में हम यही कहना चाहते हैं, जहाँ कम पानी है मेंथा को कम पानी चाहिए, तो इसलिए भाई बहनों से हमको कहना है कि इसकी खेती करें, अच्छी खेती है, 4 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा दे देती है। जो 4 महीने के अंदर और कोई फसल ना होकर यही फसल बहुत ही अच्छी है और लाभदायक है, फसल तैयार होते ही तुरंत पैसा पूरा मिल जाता है हमको, यही बहुत ही अच्छा फसल है।
1: हरकचंद वर्मा भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि लगभग 2 एकड़ में आप मेंथा उत्पादन कर रहे हैं, साथ में खस और लेमन ग्रास की यानी नींबू घास की सहफसली खेती कर रहे हैं, और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विवेक भैया,
3: हाँ पुनीत
2: भैया, देखो हरकचंद वर्मा भैया तो बतेबे कि हिन और हमहू पंचे बात जाने थे कि जो नी अपन मेंथा के फसल है ना, ये तुरंत पैसा दे थे भैया। जैसे भाई तुरंत का मतलब है कि पहले तो उनका लगावक पड़त है और जो है उगावक पड़त है,
3: कहेंगे मतलब जल्दी फसल, हाँ, जल्दी वाली फसल है, हाँ, कि अपन जल्दी उत्पादित हुई के, हाँ, और अपन अच्छा पैसा,
2: हाँ,
3: पैदा
2: जल्दी
3: कर सके
2: जब चाहो तब बेच लो, लेकिन जो भाव हो तो वह भाव से भाई पैसा मिले हैं। और जो है नगदी फसल जिनका कहा जाते हैं वो माए शामिल है। तो ई सफलता की कहानी के खातिर हरकचंद वर्मा भैया के यहाँ और साथ है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के यहाँ, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम पंच जो है
3: मौसम केयर जोन है बात करित रहे, तो मौसम केयर जोन है हाल का है कि अपन जो खेती पाती में कैसे आगे काम काज करा जाए, तो मौसम केयर हाल आपके हाथे में है, तनिक बताए दो हम पंचन का।
2: भैया देखो जैसे आज तो गर्मी रहे है ना, धूप रहे, गर्मी रहे बहुत तेज है, लेकिन आगे आवे वाले दिन में है जो मौसम केयर हाल हमका मिला है, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से नहीं, क्या मौसम क्या हाल आज यानी 10 मई से नहीं लेके 16 मई तक के मौसम क्या हाल ही हमारे हाथ में यहाँ है। तो इमा आज जैसे मौसम शुष्क रहा यह इतना इमा संभावना रहे दोनों जगह, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करी और चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करी। और भैया काल्हू यानी 11 तारीख के यहाँ यह इतना मौसम शुष्क रहा के संभावना है। मुला भैया 12 तारीख और 13 तारीख और 14 तारीख के यहाँ, चाहे बात करी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और चाहे बात करी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ ईमा कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़े के संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ 3 दिन यानी कि 12, 13 और 14 तारीख के यहाँ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ 15 तारीख तक का। और जिस दिन यू मौसम खराब रहे के संभावना है यानी बरसे के संभावना है, उस दिन के जो चेतावनी है वह है कि कहूँ कहूँ मेघ गर्जन वज्रपात के साथ झोंकेदार हवा जिकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हुई इकी संभावना है। तो भैया यू तो रहा मौसम क्या हाल जिमा आगे आवे वाले 2 दिन के बाद का 1 दिन बाद जो है मौसम फिर से बदले के संभावना है।
3: पुनीता दीदी, अपन जो ने मौसम के हाल तो पता चलेगा है, हाँ। तो हम लोगों का बिल्कुल सतर्क हो जाए चाहिए, हाँ। चाहे अपने फसलन के प्रति हो, चाहे अपने हरहा गोरुन के प्रति हो, तो उनको जो है विशेष ध्यान रखे के, तो उनको जो है व्यवस्था हम लोगों के अच्छे से कर ले चाहिए।
2: बिल्कुल। और भैया अब एक साथ है सुना जाए एक विकास गीत राजेश कुमार गौतम व उनके साथ इनके स्वर में, है ना?
3: बिल्कुल सुना जाए।

0: विवेक भैया, भैया देखो, विकास केर बयार जब हर जगह बात है ना, तो हम सब कोई विकास गीत जो है गए थे, और उका विकास का वर्णन जो है अपने गीतन में हाँ हमेशा करा
1: सम्मिलित किए
0: जाते
1: थे।
0: हैं ना। और अब देखो जैसे अबे मौसम के हर हाल हम लोग पढ़ें, जिमा फिर आगे आवे वाले दिनन में यहाँ कुछ वर्षा और हवा के संभावना है, तो तमाम हमें सुके काम पड़े हैं जो उनका तैयारी करे रहे। जैसे
1: बिल्कुल।
0: अपन अब आगे आवे वाली जो खरीफ के फसलें हुई हैं, तो वहाँ हमका यू सोचे है उनका धान कौन लगावे के, कितना लगावे के, कौने खेतवम लगावे के हैं, तो और उनके अलावा जो उन खेत खाली रहें, तो पहले एक यहो काम है कि भाई गहरी जुताई कर दी जाए।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो बरसात हुई गई है तो थोड़ा बहुत गीली है माटी, और फिर जब सूखी तो भी गहरी जुताई के बाद जो है जो कहा जाता है ना कि कीड़े मकोड़े अंडे जितना होते
1: हाँ,
0: हुए मर
1: सब मर
0: जाते,
1: जाते हैं।
0: तो आगे आवे वाली जो हमारी फसल में है ये सब चीज़ें

0: नहीं हो पाती हैं,
1: बिल्कुल
0: मतलब बाकी जो उड़े उड़ाए के यहाँ बह के यहाँ कुछ बीज आ जाते हैं, खरपतवार जो होते हैं, तो एक ये सब जो है काम है। इसके साथ है साथ हमका यू कबहू नहीं भूले के है कि हमका बिरवा लगावे के है
1: बिल्कुल
0: देखो चारों तरफ, चाहे खेत बनावे खातिर, चाहे घर बनावे खातिर, चाहे सड़कें बनावे खातिर, चाहे और कोनो काम करे के खातिर, न जाने कत्ते बिरुवा बिरुख जो है वो काट दिन जा रहे हैं भैया। हैं
1: बिल्कुल
0: एक बृहद स्तर पर देखा जाए तो पेड़ कट रहे हैं, और हम सब कोई पेड़ हर साल लगे थे, एक लक्ष्य होते, एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमका सबका दिन जाते, और वो लक्ष्य के यहाँ लगावे में है तो हम जो है उका प्राप्त कर ले थे, हैं उनके लक्ष्य के पूर्ति हो जाते, कहे में कि हम अत्ते बिरुवा लगा दें। लेकिन हमका तो यू लागत है, हम अपनी तरफ से यू सोचे थे कि हमका यह देखना चाहिए कि बिरुवा बचे करते हैं,
1: बिल्कुल अब लगाए तो दिया गया है, लेकिन वही का सिंचित है कि
0: हाँ
1: ना देख, सिंचित है
0: हाँ
1: कि हमका वही का दे पानी देख देना है कि नहीं देना है, ये सब चीजन के यहाँ बहुत ध्यान देवे है।
0: तो भैया अब गर्मी बहुत ज्यादा अब आगे बढ़ी,
1: बिल्कुल
0: जब ये मौसम बदली तब हमका वो बिरवन के हैं, अब तो खैर वो साल भरे के लगभग होए लागे हैं, तो बचे हुए हैं तो उन बचन के हुई हैं, जो उन
1: बिल्कुल
0: मरे हुए तो उन मर गए हुई हैं। लेकिन अगर इस भवा है कि उमा पेड़ जो हैं बचे नहीं हैं, या हमारे पास इस जगह है, जगह देखो भैया हमेशा रहते
1: जगह
0: हैं,
1: सबके पास पर्याप्त
0: हाँ
1: राहत है।
0: हाँ तो उके की खातिर जो है हमका अभ्यस्त तैयारी शुरू कर दे के,
1: बिल्कुल
0: जैसे गड्ढा खोद के यहाँ है तो गड्ढा खोद के यहाँ जो है अभय गड्ढा खोद दिन जाए, उनके बाद जब बेरिया आई तो वहाँ खाद पास डाल दिन जाई, फिर
1: बिल्कुल
0: जब बेरिया बरिखा आई तो वहाँ लगा दिन जाइए।
1: बिल्कुल
0: देखो कुछ पंच भाई कहा करते हैं, अगर उनके घर में जगह नहीं है, उनके दरवाजे पर जगह नहीं है, उनके खतवा में यहाँ जगह नहीं है, तो भैया राह चलत गली में यहाँ, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, कहूँ जहाँ जाते हुआ जो है अपन मुट्ठी भर भैया ले गए और हुआ डार दिन, और भैया ऐस है अपन पर्यावरण, ऐस है अपन
1: बिल्कुल
0: मौसम, ऐस होते अपन माटी मिली, और जहाँ
1: जहां
0: माटी
1: पानी
0: मिली,
1: माटी मिली
0: पानी
1: वहां,
0: मिली,
1: जहां वहां
0: हवा
1: जाने
0: मिली, धूप मिली, बिरवा भैया हो
1: तैयार
0: जाते।
1: हो जाते हैं। तो ये सब चीजन के यहाँ बहुत ध्यान देखे कि बिरवा अपन लगावे के और कहूँ नो जगह छोड़े के ना है,
0: छोड़क नहीं
1: काहे
0: है
1: से यह सब बिरवा हमार जब गर्मी भयंकर पड़त है तो हम लोगन के यहाँ बहुत छैया दे थे।
0: भैया, वह छाया दे थे, और जो पानी बरस, जो पानी हर जगह, पहले
1: बिल्कुल
0: देखो लबालब तालाब भरे होते रहे, कुवन में यहाँ कहते रहे, मां सबके परीक्षा बतावा थे कि दुई हाथ के रस्सी होते रहे और लोटिया डारी के यहाँ पानी निकाल नहीं जात रहे। अब
1: बिल्कुल
0: उमा झांको तो कहूँ दूर दिखाते ही नहीं
1: सब कुआं
0: है
1: जैसे
0: ना,
1: लगत सूख ही गए हैं।
0: हाँ सूख गए हैं, तो उनका फिर से लागत कि वो समय लौटे, उनकी खातिर बिरवा कहा था ना, दशहरा बाग, हजारा बाग, लखपेड़ा बाग, यानी अत्ते बिरवन के बगिया होती रहे,
1: नाम होत
0: अब
1: रहे।
0: हाँ नाम होते रहे, अब वो सब जो है गायब हो रहे हैं, हमका
1: बिल्कुल
0: सबका फिर से अगर अपनी धरती के यहाँ, अपने पर्यावरण के यहाँ, अपनी फसलन के यहाँ सब कुछ बचावे के यहाँ है, तो हमका उधर लौटे परी, और
1: बिल्कुल
0: फिर भैया बिरवा तैयारी ही इनका हींस करे।
1: अभी शुरुआत से अगर योजना बनाए के तैयारी करबा तब है हम लोग आगे चल के ये सब काम काज जौन है कर पेबा।
0: हाँ बिल्कुल भैया, तो भैया अपने पंच बहन के यहाँ हम बताए दी के साथ है कि पंच भाई अपन काल ही यानी सोमवार के यहाँ अपने बैठक में कहा सुनी है, तो भैया लोकायतन में यहाँ पंच भाई सुनी है भेंट वार्ता उल्टी दस्त कारण और निवारण डॉक्टर प्रियंका भट्ट से, और भैया खेती किसानी में यहाँ सुनी जाए भेंट वार्ता पशुओं में लंपी चर्म रोग कारण और निवारण डॉक्टर प्रतिभा सचान से डॉक्टर सुशील कुमार राय के बतकही। तो भैया ये तो रहे काल के कार्यक्रम, और भैया अपन पंच भाई जोन है हमका सबका चिट्ठी पात्री लिखे, एक एक खाते
1: बिल्कुल
0: अपन पता बता दो।
1: बिल्कुल पता बहुत ज़रूरी है, पंच भाई सब नोट कर लें। पता है अपन लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, और जी का पिन कोड है 226001।
0: तो भैया ये तो रहा अपने कार्यक्रम का पता, पंच भाई पर
1: बिल्कुल
0: चिट्ठी हमका सबका लिख सकते हैं, और उनके सुझाव हमेशा हमका सबका
1: मिला
0: मिलत
1: करत है।
0: रहें, तो अच्छी बात है तो
1: बिल्कुल
0: और इसके
1: अपन
0: साथ
1: कुछ जानना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो अपन जो है चिट्ठी पाती के माध्यम से लिख सकत हैं।
0: बिल्कुल भैया, उनके जो है चिट्ठी पत्रिका हमका सबका हमेशा इंतजार रही, और उनका जो है स्वागत है। और इसके साथ साथ जैसे मौसम जब भी बदलत है, अब गर्मी है, कभी देखो बारिश हो जाते, कुछ हो जाते, तो हर चीज़ का अपन ध्यान रखे के, अपनी फसलें जो लता वाली हैं वो ज़्यादा नाजुक हैं उन्हों को ध्यान रखे के, पानी
1: और
0: अगर लगावे वाला है।
1: हाँ और आय वाली जो फसलें हैं उनको ध्यान रखे के।
0: हाँ बिल्कुल, और यह के साथ समय का भी ध्यान रखा बहुत जरूरी है, समय हमार कह रहा है, तो सब पंच भाई से लीन जाए आज्ञा। जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: So girls, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी

0: के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियुक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर

0: पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:31 हुए और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीना सोनकर का प्यार भरा नमस्कार,
1: और सभी श्रोताओं को मेरा यानी सुमोना पांडे का नमस्कार। और नीना जी आपको भी नमस्कार, और मैं देख रही हूँ कि आपके पास बहुत सारे मेल हैं, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल सुमोना जी, आपको प्यार भरा नमस्कार सभी श्रोताओं को। और ये मेल जो हमारे पास सबसे पहले आया है, इन हमारे श्रोता के 3 मेल है, और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से इन्होंने मेल भेजा है। बहुत दूर से मेल आया है। दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम नागनपुरी, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इसी मेल पर और भी श्रोताओं के नाम का जिक्र है, स्थान अलग हैं। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा।
1: क्या बात है नीना जी, और ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं और जरूर हमें मेल भेजते हैं।
0: जी सुमोना जी, इसी मेल पर अन्य स्थान का भी जिक्र है, रिंग रोड नर्मदा से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। लिखते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 30 अप्रैल 2026 का कार्यक्रम लोक आयतन बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ जिसका शीर्षक था भौजी अम्मा बहुत अच्छी लगी। रचनाकार वेद प्रकाश सिंह की रचना बहुत अच्छी लगी। इनके और भी मेल हैं सुमोना जी, वो तो भी हम पढ़े देते हैं।
1: जी, और नीना जी सबसे पहले मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे कार्यक्रम को इतने प्यार से सुना, इतने ध्यान से सुना और हमें मेल लिखकर भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, 4 मई 2026 के कार्यक्रमों का इन्होंने जिक्र किया है। श्रोता वही है, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश के। लिखते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 4 मई 2026 का कार्यक्रम नई उड़ान बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सरोकार तपती धरती यानी पारिस्थितिकी की अग्नि परीक्षा, इस विषय पर जानकारी बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ एक और मेल है इनका।
1: इन्होंने हर कार्यक्रम के लिए अलग अलग मेल दिया है, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है? नाम तो हमने पहले भी पढ़ लिया।
0: बिल्कुल जी, ये 3 मई 2026 के कार्यक्रमों का मेल है। लिखा है कि आज इतवार है, कार्यक्रम अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में नाटक

0: इगरी या हुनर काफी पसंद आई। प्रस्तुतकर्ता आतिश कुमार श्रीवास्तव जी को दिल से बधाई।
1: और आपने हमें लगातार इस तरह से मेल किया, उसके लिए आपका बहुत आभार। और इसी तरह हमारे साथ प्रेम बनाए रखिए, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी भावनाएं हम तक जरूर पहुंचाते रहिए।
0: जी सुमोना जी, एक और मेल जो कि मध्य प्रदेश के धार से है, ये हैं एके शर्मा जी और अन्य इनके परिवार के सदस्य लिखते हैं कि सुमोना जी नीना जी को प्यार भरा नमस्कार। निवेदन है कि संस्कार गीत पुनः आरंभ किया जाए। लोक माधुरी पहले भी शाम को प्रसारित किया जाता था और तब

0: ये जो ब्रेक वाला समय होता है ये फीका लग रहा है। और आगे लिखते हैं कि जो हेल्थ के कार्यक्रम हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं।
1: अरविंद मिश्रा जी और आपके सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार, और मैंने आपकी बात नोट कर ली है और आपके सुझाव भी हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन हमारे कुछ नियम हैं, हम उन नियम के अंकुश में रहते हैं और हमें उनके अनुसार ही कार्य करना होता है, इसलिए हम उन नियमों के पालन में ही अपने कार्यक्रम आप तक पहुँचाते हैं। उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे और आपने हमें मेल भेजा है, तो इससे जाहिर है कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: जी सुमना जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सभी श्रोताओं की पसंद नापसंद को ध्यान में रखा जाता है, और इसी पसंद और नापसंद के मद्देनजर ये वाला मेल जो है ये भी बहुत दूर से आया है। पुरुषोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से बहुत दूर से मेल आया है। सुमोना पांडे जी और नीना सोनकर जी को नमस्कार कार्यक्रम की महफिल सजाने के लिए। और आगे ये लिखते हैं कि रेडियो के माध्यम से हम सभी श्रोता एक दूसरे से जुड़ पाए हैं और आप सबके सहयोग से ये संभव हुआ है। 22 तारीख को आंगनबाड़ी कार्यक्रम में डॉक्टर सौमित्र मिश्रा जी ने जो जानकारी दी सड़क दुर्घटना के बारे में वो बहुत अच्छी लगी, और उसी दिन इन्होंने हेलो किसान कार्यक्रम सुना। इस कार्यक्रम में विषय था जायद की फसलों में सम्यक प्रबंध। इस विषय पर जानकारी डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी ने दी और इनसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने। ये कार्यक्रम फोन कॉल्स पर आधारित था, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा। 26 तारीख को बाल गोपाल कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जिसमें नन्हे साथी आदित्य कुमार सिंह, शीतल तरंग श्रीवास्तव, इनकी कविताएं बहुत अच्छी लगी। इसी दिन लोकायतन कार्यक्रम में कवि गोष्ठी सुनी, बहुत अच्छी लगी। 27 तारीख को लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में इंदु सरस्वत जी के स्वर में लोकगीत बहुत अच्छे लगे। सभी कार्यक्रमों के लिए दिल से धन्यवाद।
1: पुरुषोत्तम जी, आपने हमें इतना विस्तृत एक पत्र मेल द्वारा भेजा है और इसके लिए आपका बहुत आभार, और आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम ज्ञान और जागरूकता के साथ आपका मनोरंजन भी करें, तो आपने हमारे सभी कार्यक्रम पसंद किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो आपने लिखा है कि इतने दूर से नीना जी इन्होंने लिखा है, तो ये हम कहेंगे कि न्यूज़ ऑन एयर ऐप का जादू है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती है हम उसी तरह से श्रोताओं से दूर दूर तक जुड़ पाते हैं, और इन्होंने उसी बात को पुष्ट किया है।
0: जी सुमोना जी, आगे जो मेल है ये खान परिवार का मेल है। इनके नाम है वारिस अली खान साहब, ऐशबाग संजय नगर लखनऊ के हमारे श्रोता हैं, और ये लिखते हैं कि कार्यक्रम प्रमुख सुमोना जी और नीना सोनकर को खान परिवार का नमस्कार, और 3 मई का आज के मेहमान कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी से सुरेंद्र राजेश्वरी जी की बातचीत मुझे बहुत पसंद आई। 4 मई का 2:30 बजे से प्रसारित लोक माधुरी में सुमिता श्रीवास्तव जी के लोकगीत मुझे बहुत अच्छे लगे। और आगे ये लिखते हैं कि जब मैं सुगंध माटी सुनता हूँ, यानी कि सुगंध माटी की, तो मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पर शनिवार का कार्यक्रम इन्हें बहुत भाता है।
1: तो वारिस अली जी हमेशा हमें मेल भेजते हैं और आपने हमारे कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुना, उसे पसंद किया और आपने हमें लिखकर भेजा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। और नीना जी, हम अपने श्रोताओं को यही बताना चाहेंगे कि हमारे तीनों चैनल के कार्यक्रम में जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं वो बहुत मेहनत से आप तक कार्यक्रम पहुँचाते हैं, आपका मनोरंजन भी करते हैं, साथ ही साथ आपकी जानकारी में भी इजाफा करते हैं। आप लोग कार्यक्रम को पसंद करते हैं, इसी तरह हमें लिखते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन भी होता है।
0: बिल्कुल, इनका कहीं छुपा हुआ मेल था जो अभी प्राप्त हुआ। 19 अप्रैल का वारिस अली खान साहब और उनके परिवार के सभी सदस्यों का आज के मेहमान में सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश राजेंद्र सिंह जी का इंटरव्यू सुभाष खन्ना जी ने लिया। ये इंटरव्यू मेरे दिल में घर कर गया। इस इंटरव्यू की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 22 अप्रैल का GML बहुत अच्छा लगा। और आगे इन्होंने ये लिखा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ का वक्त क्यों कम कर दिया, क्या पहले जैसा समय नहीं हो सकता है, ये बताइए।
1: जहाँ तक गुड मॉर्निंग लखनऊ की बात है, हमारे पास वही, जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं को बताया कि हमें कुछ नियम कायदे हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हमें मानना पड़ता है, इसलिए हम उन्हीं के अनुरूप अपने कार्यक्रम करते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, इसलिए वो शिकायत भी करते हैं, और इस प्यारी सी शिकायत के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और अपनी सलाह जरूर लिखिए, लेकिन हाँ, हमारे जो कुछ अंकुश हैं उनको भी आपको मानना होगा।
0: बिल्कुल सुमोना जी, ये खेती किसानी कार्यक्रम के बारे में मेल आया है। इस प्रोग्राम में एक भेंट वार्ता प्रसारित की गई, उसका विषय था पोषक तत्व प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर काशीनाथ तिवारी जी से डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने बातचीत की, वो इन्हें अच्छी लगी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम को सुना और हमें लिखा, इसके लिए आपका बहुत आभार।

0: और कार्यक्रम जो भी प्रस्तुत करता है हम उन तक आपकी बात जरूर पहुंचा देंगे, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: सुमोना जी, ये राम खिलावन जी हैं कुरसठ से, इनका किसान रेडियो क्लब है और इनके साथ और भी लोगों के नाम इस मेल पर लिखे हुए हैं। ये हैं अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित और सभी मित्रगण। इन्होंने खेती किसानी कार्यक्रम के बारे में अपनी राय लिखी है। 4 मई का ये कार्यक्रम है, इसका विषय था पोषक तत्व प्रबंधन। डॉक्टर काशीनाथ तिवारी जी से डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने जो बातचीत की वो इन्हें अच्छी लगी।
0: जी, तो राम खिलावन जी, आपने हमें अपने मैसेज के द्वारा ये अवगत कराया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, और हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हम आप तक ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम पहुंचाएं, उसमें हम सफल होते हैं। तो नीना जी, इनका भी बहुत बहुत आभार।
1: बिल्कुल, बमना खेड़ा जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के हैं सभी श्रोता। नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम और सभी साथी, 5 मई का कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें बहुत अच्छा लगा, और संडे का इनको विविधा अच्छा लगा। और इन्होंने ये लिखा है कि आपके यहाँ से लोकायतन खेती किसानी कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण जो भी रेडियो से प्रसारित किए जाते हैं वो सुने जाते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। सफलता की कहानी हो या कृषि समाचार हो या फिर प्रादेशिक समाचार या फिर लोक रंग लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम, सभी कुछ बहुत अच्छे लगते हैं।
0: नेहा वर्मा जी और आपके सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आकाशवाणी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, और आपने समाचारों की बात की तो हम कोशिश करते हैं आप तक सही समाचार पहुंचाएं और अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन भी हो और मनोरंजन भी। आपने हमें मेल किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार।
1: सुमोना जी, अब ये किसान रेडियो क्लब के एक और हमारे नियमित श्रोता हैं, हर प्रोग्राम को ध्यान से सुनते हैं, अपने मेल लिखते हैं और पसंदीदा उनके प्रोग्राम्स के बारे में बाद में बात करूंगी। सबसे पहले ये बता दूं उन्होंने कहां से मेल भेजा है। ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि यादव।
0: तो ये हमारे वही नियमित श्रोता हैं।
1: बिल्कुल, हर चैनल पर धूम मचाए रहते हैं, अपने पसंद के प्रोग्राम सुनते हैं। राजेश कुमार और विजय पांडे जी, ये सब जिन्होंने मिलकर मेल भेजा है, लिखते हैं सुमोना जी, नीना जी को प्यार भरा नमस्कार। निवेदन है कि आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम कृषि चर्चा, सुविचार, आराधना, रामचरितमानस, स्वास्थ्य चर्चा, विविधा, आपके पत्र, आपके मेल, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आंगनबाड़ी, घर आंगन, लोक रंग, लोक माधुरी, यानी कि सब कुछ अच्छा लगता है।
0: कुल मिला के उन्हें सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे लगते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: आगे लिखते हैं कि हेलो किसान के माध्यम से हम किसान भाइयों को विषय से संबंधित जानकारी जो देते हैं सुशील कुमार राय जी, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, उनको दिल से धन्यवाद। और आगे इन्होंने एक बात और लिखी है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम में शुगर पर जानकारी जो डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी ने दी वो बहुत उपयोगी लगी। 30 अप्रैल को लोकायतन कार्यक्रम में लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ भौजी अम्मा, जो वेद प्रकाश सिंह जी का काव्य पाठ था, इन्हें बहुत अच्छा लगा। 3 मई को कार्यक्रम अक्षयवट में हंसी से सेहत तक, जीवन में हास्य का महत्व, काव्य पाठ सूर्य कुमार पांडे जी का बहुत अच्छा लगा। 3:30 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में गर्मी का मौसम और स्वास्थ्य रक्षा, इस विषय पर जानकारी डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी ने दी। सुभाष खन्ना जी की इनसे बातचीत ज्ञानवर्धक थी। हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम का इन्होंने जिक्र किया है कि डॉक्टर आर एस कुशवाहा जी ने दमा अस्थमा के बारे में जानकारी दी, वो अच्छी लगी। इसी दिन खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी के अंतर्गत रामदाना उत्पादन पर जानकारी जो विनोद कुमार मिश्रा जी ने दी और उनसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने। इसी दिन का शाम का शाम में अवध कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 4 मई को स्वास्थ्य चर्चा में कोलेजन पर जानकारी बहुत उपयोगी लगी। कुल मिलाकर सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: और हमें ये भी लगता है कि विजय पाल यादव जी और उनके साथी जो है हमारे सभी चैनल को बहुत ध्यान से सुनते हैं और सभी कार्यक्रम को पसंद भी करते हैं, उससे लाभ भी लेते हैं। आप इसी तरह हमारे साथ प्रेम बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए और हमें मेल करते रहिए अपने सुझाव के साथ, अपने सलाहों के साथ। और आपने मेल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और परिवार के सभी सदस्य लिखते हैं कि उर्दू कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 4 मई को उर्दू प्रोग्राम सुना, पसंद आया। इसमें शरीक गुफ्तगु में डॉक्टर अकबर अली बिलग्रामी और मोहम्मद राशिद अली खान की गुफ्तगु काबिले तारीफ रही। आपका जो फरमाइशी कार्यक्रम होता है सुबह में 8:45 पर, उसमें एक मेल पर एक ही गीत सुनाया जाता है।
0: नीना जी, मुझे लगता है इनका तात्पर्य ये है कि एक गीत सुनाने से पहले कई मेल शामिल कर लिए जाए, तो अगर जिस तरह से

0: लाते हैं, हम उनको उसी अनुसार शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। और आपने हमारे कार्यक्रम को पसंद किया, उर्दू कार्यक्रम के जो प्रस्तुतकर्ता हैं हम उन तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे, और आपने हमें मेल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये मेल हमारे पास आया है प्रिंसी सिंह और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का। इन्होंने जहाँ से मेल भेजा है उस जगह का नाम है सांडी जनपद हरदोई। लिखती हैं कि उर्दू प्रोग्राम में खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम में सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। 5 मई का कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम अच्छा लगा। 6 मई का विविधा कार्यक्रम सुना वो भी अच्छा लगा।
0: प्रिंसी सिंह और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, आप हमारे कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुनते हैं और हम उनको पसंद करते हैं, और आपने हमें मेल किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम इसी तरह सुनते रहिए और उससे लाभ भी लेते रहिए और हमें अपनी सलाह भी देते रहिए।
1: सुमोना जी, अब जो हमारे पास मेल आया है ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी का, लिखते हैं कि भैया दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी। भैया आज है नहीं, दीदी दीदी हैं, आपको भी नमस्कार। इंद्रपाल मिश्रा जी लिखते हैं कि घर आंगन में 7 मई को डॉक्टर वंदना जी आईं, बकरी पालन के बारे में लाभ की बात बताई। कार्यक्रम में जब एक लोक गीत सुनवाया, श्रोताओं को गीत बेहद पसंद आया।
0: इंद्रपाल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुना और आपको लगा कि उससे आपको लाभ हुआ, इससे हम भी अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमें अपने मैसेज जरूर भेजते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार।
1: जिला रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर के सभी श्रोता हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, मिर्जा तुराब बेग, पप्पू पासी। लिखते हैं 3 मई को स्वास्थ्य चर्चा में हंसना जरूरी है, 4 मई को स्वास्थ्य चर्चा में त्वचा और हड्डियों के लिए कोलेजन, 5 मई को फालसा के विषय में जो जानकारी दी गई बहुत अच्छी लगी, दिल से धन्यवाद। 6 मई को आंगनबाड़ी भी अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे कार्यक्रम को पसंद किया और हमें लिखा, और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम आप सुनते रहिए।
1: और घड़ी भी धीरे धीरे इशारा कर रही है
0: जी।
1: समय का बहुत मोल होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए जल्दी से हम पता बता दें, जो हमारे नए श्रोता इस समय इस प्रोग्राम को ध्यान से सुन रहे हैं उनके लिए है हमारा मेल आईडी pkldlko@gmail.com, और हमारा पता भी है। हमारा पता है पत्र के लिए धन्यवाद, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन संख्या है 226001
0: जी। तो जो पत्र लिखना चाहते हैं वो इस पते पे लिख सकते हैं, और जो मेल भेजना चाहते हैं जैसा कि आपने बताया उस मेल आईडी पे वो भेज सकते हैं। तो अपने श्रोताओं से अब हम लोग लेते हैं विदा।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शामी अवध।

दोस्तों आज की ये शाम है बेहद खास, क्योंकि आज का दिन समर्पित है उस शख्सियत को जो बिना कहे हमारी हर बात समझ जाती है, जो खुद तकलीफ में होकर भी बच्चों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज है मदर्स डे, माँ के प्यार, त्याग और ममता को सलाम करने का दिन। साथियों, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। उनकी दुआओं में वो ताकत है जो हर मुश्किल आसान बना देती है। तो आइए इस खूबसूरत सी शाम को और खूबसूरत बनाते हैं इस बेहद ही खास गीत के साथ।

दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में सबसे सच्चा प्यार अगर कोई करता है तो वो माँ होती है। बचपन में जब हम गिरते हैं तो सबसे पहले जो हाथ हमें उठाने आता है वो माँ का होता है, और शायद इसीलिए माँ की गोद से ज़्यादा सुकून भी कहीं और नहीं होता। दोस्तों माँ वो होती है जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ हमें प्यार देती है, कभी डांटती है कभी समझाती है, लेकिन हर हाल में हमारे साथ खड़ी रहती है। अगर आज आप अपनी माँ के साथ हैं तो उन्हें ज़रूर गले लगाइए, और अगर दूर हैं तो एक फ़ोन कॉल करके बस इतना कह दीजिए कि माँ आप मेरी दुनिया हो।

शामे अवध कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। और साथियों, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास दिन के बारे में, जो कि है मदर्स डे। साथियों, माँ की ममता का कोई मुकाबला नहीं। वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। उनकी दुआएं हर सफ़र में हमारे साथ चलती हैं। और सच कहें तो माँ सिर्फ घर की जान नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की ताकत होती है। इसी खूबसूरत संदेश और प्यार के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला शानदार गीत।

दोस्तों, माँ का प्यार वैसे तो किसी त्योहार का मोहताज नहीं, लेकिन मदर्स डे हमें एक ऐसा मौका देता है कि हम अपनी माँ को शुक्रिया कहें। तो आज अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उनके चेहरे की मुस्कान बन जाइए, क्योंकि माँ खुश है तो पूरा घर खुश हो जाता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ मुझे यानी मीनू को दीजिए कार्यक्रम समाप्ति की इजाज़त। मिलूंगे फिर एक नई शाम को नए गीतों और नई बातों के साथ। तब तक अपना

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साम्यवध मीडियम वेव के मीटर पर, यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8 बजे है और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के संक में आपको सुनवा रहे हैं एक काव्य पाठ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार।
2: माँ शारदा की वंदना में एक कुंडलियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैहर की माँ शारदे करूं सदा गुणगान, ज्ञान चक्षु वरदान दो अम्ब सदा हो मान। अम्ब सदा हो मान ज्ञान की तुम हो देवी, रचना लिखता माँ तू आपका बनकर सेवी। कहीं प्रेम कविराय सुभिक्षा से मंगल कर, ब्रह्म ज्ञान का दान दीजिए माता मैहर। भगवान राम, सीता और जयंत प्रसंग पर दो कुंडलियां प्रस्तुत हैं। चुन चुन कर श्री राम ने भांति भांति के फूल, श्रृंगारित सिय को किया निज अभिरुचि अनुकूल। निज अभिरुचि अनुकूल रूप का गाधर आया, चोंच मार सिय चरण जयंता रक्त बहाया। किया सीक संधान काग उड़ चला हृदय गुन, मिला न कोई ठौर राम हंते रिपु चुन चुन। नारद मिले जयंत से दीन दुखी अति जान, शरणागत हो राम के राय हमारी मान। राय हमारी मान दया के सागर प्रभु जी, चरण शरण में गए करें रक्षा रघुवर की। दंड दिए प्रभु राम नेत्र कर एक नदारद, रख जयंत का प्राण गए निज गृह मुनि नारद। रख जयंत का प्राण गए निज गृह मुनि नारद। जल प्रदूषण से संबंधित कुछ कुंडलियां समर्पित कर रहा हूं। बंधे में घिरती हुई नालों में तब्दील, सई गोमती घाघरा होती सबको फील। सही होगी यदि नियत करें प्रदूषण दूर यहाँ पर हर एक कीमत। कहीं प्रेम कविराय बंद हो गोरख धंधे, धंधे करके बंद सुरक्षित होंगे बंधे। धंधे करके बंद सुरक्षित होंगे बंधे। गंगा जल के पान से खुले स्वर्ग के द्वार, उल्टी दस्त जुलाब से मिले मोक्ष हर बार। कानपुर हो या पटना, दूषित बहती गंग नित्य होती यह घटना। कहीं प्रेम कविराय सदा सच होता नंगा, करें प्रदूषण दूर विवश रोती माँ गंगा। करें प्रदूषण दूर विवश रोती माँ गंगा। यमुना कल कल बह रही झेल प्रदूषण वार, श्वेत फेन से है भरी दूषित जल की धार। दूषित जल की धार शहर के नाले गिरते, शोधित जल हर बार फेल वह करते फिरते। कहीं प्रेम कविराय किसी को कोई गम ना, हुआ कलंकित काल प्रदूषण।

0: प्रदूषित देखी यमुना, हुआ कलंकित काल प्रदूषित देखी यमुना। मलवा सामुद्रिक भरा दूषित जल संसार, जीव जंतु मरने लगे करते हाहाकार, करते हाहाकार लुप्त होते कुछ प्राणी, संरक्षित हो जीव समय की दुर्लभ वाणी। कहीं प्रेम कविराय कभी मत चाटे तलवा, नीति बने अविराम हटे सागर का मलवा, नीति बने अविराम हटे सागर का मलवा। मित्रों, दान तो सभी लोग करते हैं, पर एक ऐसा दान भी है जो जीवन दान देता है। स्वैच्छिक रक्तदान विषय एक दो कुंडलियां प्रस्तुत कर रहा हूं। होता जो व्यापार यदि रक्तदान का काम, व्यवसायी बन बेचते करें इसे बदनाम, करें इसे बदनाम रक्त से रोग चुनेंगे, पंसारी का काम चिकित्सक शीश धुनेंगे। कहीं प्रेम कविराय अस्मिता मानो खोता, रक्तदान बिन शुद्ध रक्त क्या संभव होता, रक्तदान बिन शुद्ध रक्त क्या संभव होता। अवसर आया है अभी करें रक्त का दान, नेक कार्य पर हित करें जीवन दान महान, जीवन दान महान प्रेम जनहित में भरिए, रक्तचाप नियंत्रित हो मधुमेह से लड़िए। कह प्रवीण कविराय रक्तदानी मिल जमकर, कर लें दान महान आज ही अनुपम अवसर, कर लें दान महान आज ही अनुपम अवसर। मित्रों, हिंदी भाषा के समर्थन के लिए, विकास के लिए एक कुंडलिया प्रस्तुत है। भाषा चुनिए वोट से लोकतंत्र दरबार, डालें मत अपना सभी प्रजातंत्र आधार, प्रजातंत्र आधार अधूरी सबकी आशा, हिंदी भाषा बने राष्ट्र भारत की भाषा। कह प्रवीण कविराय लोक नायक से आशा, हिंदी चुनकर बने आज भारत की भाषा, हिंदी चुनकर बने आज भारत की भाषा। सहमत हों सब राज्य मिल आवश्यक यह कार्य, पूर्ण राष्ट्रभाषा बने हिंदी ही स्वीकार्य, हिंदी ही स्वीकार्य राष्ट्र अपना ये माने, प्रजातंत्र आधार इसी को दिल से जाने। कह प्रवीण कविराय वने संसद में जनमत, हिंदी को दे मान राज्य सारे हूँ सहमत, हिंदी को दे मान राज्य सारे हूँ सहमत। मित्रों, खेलों की सब बातें करते हैं, इसमें ओलंपिक खेल सर्वश्रेष्ठ है। प्रस्तुत है कुंडलियां। प्रतियोगी हो विश्व में ओलंपिक का खेल, सर्वश्रेष्ठ देकर करें स्वर्ण पदक से मेल, स्वर्ण पदक से मेल तेज सबसे कहलाएं, सबसे ऊंचा कूद साहसी जब इतराएं। खेल कराता मेल भावना हो सहयोगी, हिस्सेदारी प्रमुख खेल खेलें प्रतियोगी, हिस्सेदारी प्रमुख खेल खेलें प्रतियोगी।
1: ये काव्य पाठ अभी आपने सुना, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर प्रवीण कुमार। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम मीडियम वेव के मीटर पर, आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान।

0: भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण और प्रस्तुत है सुगम संगीत। दोस्तों, गुरुओं की सीख हमें प्रेम, सेवा और इंसानियत का रास्ता दिखाती है, और जब इन पावन शब्दों को संगीत का साथ मिलता है तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। तो आइए सुनते हैं गुरुवाणी को, जिसे अपनी मधुर आवाज से सजाया है अवतार सिंह ने।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं गुरुवाणी, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी है अवतार सिंह ने।

अवतार सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस खूबसूरत मधुर और आध्यात्मिक एहसास यानी गुरवाणी को, और इसी के साथ ही आज जो सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ है आतिफ असलम की, गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक

0: संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय

0: में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग।

0: This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
1: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
0: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड आल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिस्टर मोदी सेड ही विल लाइक टू अश्योर एवरी फैमिली इन तेलंगाना दैट सेंटर विल कंटिन्यू टू वर्क विद ग्रेटर स्पीड टू रियलाइज योर ड्रीम्स
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
0: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है
0: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlinga

0: नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मौसर तौर पर निपटा जा सके। वज़ीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ़ दरिया के इंतजाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आइन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निज़ाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो आइन मौजूद है, अगर हुकूक़ पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाज़े खुले हैं, और अगर किसी कमज़ोर शख्स की आवाज़ दबाई जाती है तो अदालतें उनकी आवाज़ों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वज़रा को शामिल किया। इसके अलावा दो वज़राए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीने वज़ीर आज़ादाना चार्ज का ओहदा तफ़वीज़ किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जन भवन लखनऊ में आज नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वज़रा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असम्बली में वज़रा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक़े दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में ज़िले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मबलकत बनाया गया है। कानून साज कौंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मबलकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मबलकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, नेज इलाके के गांवों को पानी की मौसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इस्तेमा से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई ज़रूरतों और नौमौलूद बच्चों की ज़रूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खरात से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खरात के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली SIT ने नासिक में वाक़ महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी में आज से तहकीकत का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत, बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत वजीर खारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के दो रोज़ा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम अमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तजदीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत दो तरफा

0: उनको तोसी देने से मुतालिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी एहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की जिसके नतीजे में यह धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। इस शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी एहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दिगर चार दरखास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग ख़त्म करने के मकसद से अमरीका की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुज़ाकरात में खित्ते में तनाज़े को ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जंग ख़त्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अमेरिका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज़्यादा खिलाफ वर्जी की जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाक़ है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वुर किया जाता है। यह अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल दो चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर्रज़मी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। कौंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफ्फुज के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नेहरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़ रुपए है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायज़ा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तोसी की है। उन्होंने 2 काबीना वज़ीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत हिफ़्ज़ान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। रात के 9:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

साथियों, आज हम मना रहे हैं मदर्स डे। तो आज का हमारा ये पूरा प्रोग्राम समर्पित है उस खास शख्सियत को जो बिना किसी शर्त के हमें प्यार करती है। जी हाँ, आज का ये खास अंक है मदर्स डे स्पेशल। साथियों, ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ की आवाज़ सुनते ही हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। माँ के हाथ का खाना, उनकी डांट, उनकी फिक्र, ये सब वक्त के साथ और भी ज़्यादा ख़ास लगने लगती है। साथियों, कई बार बढ़ती उम्र के साथ हम अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स अपनी माँ से शेयर नहीं कर पाते। तो भाई, आज मौका है, दस्तूर है आप सभी के पास, क्योंकि प्रोग्राम है आपकी पसंद और आज का दिन है बेहद खास, यानी मदर्स डे। तो भाई, आप भी अपनी माँ तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई फरमाइशी गीत उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कर दीजिए आपके पत्र आपके मेल gmail.com पर। देखिए, हमारे पास पहुंच चुका है हमारा आज का पहला ईमेल, जो कि हमें लिख भेजा है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट लोहा जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम शिखर, ऋचा यादव, गुड़िया सुरभि, राजेश और विजय पांडे जी ने। और इन्होंने ईमेल में गाने की फरमाइश के साथ साथ एक ख़ास मैसेज भी लिखा है, वो ये है कि माँ की छांव है जो हर दर्द में सुकून देती है। माँ बिना बोले भी दिल की हर बात समझ जाती है। दुनिया साथ छोड़ दे, फिर भी माँ हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। माँ की दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर हमारी माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो भाई हमें दुनिया की कोई भी ताकत पछाड़ नहीं सकती। बिल्कुल सही बात कही विजयपाल जी ने। और ये सुनना चाहते हैं जय विक्रांता फिल्म का गीत, आवाज़ है पंकज उदास की। तो लीजिए, आपकी फरमाइश का गीत आप तक पहुँचा रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला ईमेल हम तक पहुंच चुका है, जो कि हमें लिख भेजा है एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश जी ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। और ये अर्ज करते हैं कि माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका वसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है और माँ की हर दुआ कबूल है। जी बिल्कुल, माँ की कही हर बात, माँ की हर दुआ, माँ का हर आशीर्वाद जो हम तक पहुँचता है वो सब कबूल करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब ईश्वर खुद हर जगह नहीं पहुँच पाता तो उसने अपने रूप में माँ को हम तक पहुँचाया है। तो संजय नगर ऐशबाग से हमारा ये ईमेल हमने शामिल किया, जो कि हमें लिख भेजा था एडवोकेट वारिस अली खान जी ने। तो वारिस अली खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ईमेल भेजने के लिए। आपकी पसंद का ट्रैक आपने सुनना चाहा है दादी माँ फिल्म पे, तो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें ऐसे ही ईमेल करते रहिए और सुनते रहिए अपने फरमाइशी गीत।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से जुड़े होते हैं और माँ का रिश्ता उन्हीं में से एक है। साथियों, माँ वो पहली टीचर भी होती है हमारी, जो पहली दोस्त भी होती है। साथ में हमें चलना सिखाने से लेकर ज़िंदगी जीना सिखाने तक हर कदम पर माँ हमारे साथ खड़ी रहती है। आज के दौर में हम सब अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि कई बार माँ के साथ बैठकर दो बातें भी नहीं कर पाते। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, माँ को सबसे ज़्यादा खुशी हमारे थोड़े से वक्त से ही मिलती है। आज की दुनिया में हर रिश्ता किसी ना किसी मतलब से जुड़ा हो सकता है, लेकिन माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। वो खुद तकलीफ में रहकर भी अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। इसलिए आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं, बल्कि माँ के प्रति सम्मान और प्यार जताने का दिन है। चलिए कार्यक्रम में फिलहाल हम शामिल कर लेते हैं हमारे आज के आखिरी ईमेल को, जो कि हमें लिख भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और ये सुनना चाहती हैं लता मंगेशकर की आवाज़ को फिल्म राजा और रंग में।

0: तो दोस्तों, आज का हमारा ये मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम अब पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव पर। उम्मीद है आपने हमारे आज के सफ़र में ढेर सारी अपनी माँ से जुड़ी यादों को महसूस किया होगा। फिलहाल कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी मीनू को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से थोड़ी ही देर में।
1: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाई विद्वान डी श्रीनिवास। Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein

0: अपनी माँ श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वॉज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top-grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar-style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम

0: किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।